0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से ज्यादा नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्रवाई को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। इन तीनों देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी

0: India Meteorological Department IMD has issued a red color warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Uttarakhand today. Heavy rainfall is also expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand, West Bengal, Odisha and parts of Northeast India during the next 2 days. Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to become FIFA World Cup 2026 champions. Spain's substitute Ferran Torres scored in the 106th minute to give his team a 1-0 win over Argentina in the final at New York, New Jersey Stadium last night. The victory secured Spain's second men's FIFA World Cup title and their first since lifting the trophy in 2010. In men's cricket, England beat India by 27 runs in the third ODI and seal a 2-1 series win at Lord's in London last night. England set a target of 388 runs for India. Chasing the target, visitors could score 360 runs for 7 in 50 overs. Jacob Bethell was declared player of the match and Joe Root was adjudged player of the series. And that is the end of this news bulletin.
1: सभी ने अपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव 268 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:10 हो चुके हैं, वक्त हो चला है लाइव मॉर्निंग शो पयामे सुबह का। आइए समाप्त करते हैं मुख्तसर वक्फे के फौरन बाद।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: बदलो बदलो आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी lead.

0: सब खैरियत से और अपने सामीन की दुआ हमारे साथ है, तो उनकी दुआ हमारे साथ हमेशा रहती है और हम उम्मीद करेंगे कि उनकी नेक तमन्नाएं, उनकी नेक दुआएं आगे भी हमारे साथ रहेंगी।
1: इंशाल्लाह, बिल्कुल सही कहा आपने। हिलाल हर नई सुबह अपने साथ नए इम्कानात, नए ख्वाब और नई सोच लाती है। अगर दिन का आगाज अच्छी गुफ्तगु, मुफीद मालूमात और मस्बत ख्यालात से हो तो पूरा दिन खुशगवार बन जाता है।
0: बेशक
1: इसी मकसद के साथ हम रोज अपने सामीन की खिदमत में हाजिर होते हैं ताकि ऐसे मौजूआत पर बात की जाए जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी, मुआशरे और मुस्तकबिल से गहरा ताल्लुक रखते हैं।
0: बिल्कुल सही।
1: आज भी कुछ ऐसे ही मौजूआत पर बात करेंगे, लेकिन हिलाल हम चाहेंगे कि पहले अपने सामीन तक एक मौसीकी हो।
0: जी बिल्कुल,
1: कश्मीरी नगमा।
0: हाँ बिल्कुल, कश्मीरी नगमा हम चलाएंगे अपने सामीन के लिए, उसके बाद मजीद जो गुफ्तगू है इस नशरियात की वो भी बाद में अपने सामीन तक पहुँचा देंगे
1: इंशाल्लाह।

0: आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 103.5 MHz पर, मीडियम 268.1 मीटर। इसके अलावा आप हमें DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। ये लाइव मॉर्निंग शो है पयाम सुबह। मैं हूँ आपकी मेजबान रिफत आरा और मेरे साथ हैं
1: शौकीन हिलाल जी। रिफत, जरा एक लम्हे के लिए सोचे, क्या आज का इंसान सुबह आंख खोलने के बाद सबसे पहले अपने गिर्द के लोगों को देखता है या अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को? क्या हम वाकई एक दूसरे से जुड़ रहे हैं या आहिस्ता आहिस्ता हकीकी रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं? ये वो सवालात हैं जिन पर गौर करना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हिलाल। देखिए, सोशल मीडिया ने फासले तो समेट दिए हैं। आज दुनिया के किसी भी कोने में होने वाला वाकया चंद सेकेंड में हमारे सामने होता है। तालीम, तहकीक, तिजारत, सेहत, रोजगार, समाजी खिदमत और अवामी आगाही जैसे बेशुमार शोबों में सोशल मीडिया ने नई राहें खोली हैं। एक तालिब इल्म घर बैठे दुनिया की बेहतरीन जामियात के लेक्चर सुन सकता है, एक नौजवान अपना कारोबार शुरू कर सकता है और एक आम शहरी अपनी आवाज लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है।
1: बिल्कुल बजा फरमाया आपने रिफत जी, लेकिन हर ताकत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी वाबस्ता होती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जहां सोशल मीडिया ने हमें बेशुमार सहूलतें दी हैं, वहीं झूठी खबरों, नफरत अंगेज मवाद, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी और वक्त के बेजा इस्तेमाल जैसे मसाइल ने भी जन्म लिया है। एक गैर मुसद्दिका खबर चंद लम्हों में पूरे माशरे में बेचैनी फैला सकती है, जबकि एक गैर जिम्मेदाराना पोस्ट किसी फर्द की इज्जत, ज़हनी सुकून और मुस्तकबिल को मुतासिर कर सकती है।
1: बिल्कुल सही, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम सोशल मीडिया को सिर्फ तफरीह का जरिया न समझें, बल्कि इसे इल्म, शऊर, इखलाक और मुस्बत तब्दीली का वसीला बनाएं।
0: बिल्कुल,
1: हर खबर को शेयर करने से पहले इसकी तस्दीक करें, दूसरों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखें, अपनी जाती मालूमात को महफूज रखें और इख्तिलाफ राय को शाइस्तगी और एहतराम के साथ पेश करें।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सोशल मीडिया सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, इसका अच्छा या बुरा होना हमारे रवैयों

0: समीन आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वे 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर, और इस वक्त आप लाइव नशरियात समाप्त कर सकते हैं पयाम सुबह। और मैं हूं आपका मेजबान शौकीन हिलाल, मेरे साथ आज
1: मैं रिफत आरा आपके साथ इस लाइव मॉर्निंग शो में। और आज अगर हम थीम की बात करें तो आज माहौल के हवाले से बात होती है। आज का दिन, हर एक दिन का अपना एक थीम होता है और आज मंडे हैं। आज हम एनवायरनमेंट के हवाले से बात करते हैं और जहां तक एनवायरनमेंट की

0: समीन आप समाप्त कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह, और फिलहाल वक्त हो चुका है कश्मीरी खबरों का। आइए खबरें समाप्त करते हैं।
1: ये छे आकाशवाणी। सुबह 7 बजे 5:30 सपद खबरन हूं बुलेटिन हूस बह तजम्मुल अहमद गोड अख नजर खास खास खबरन हजन सुर्खियन पे। पार्लियामेंट वहरस हूं इजलास गजक पे शुरू, हुकूमतन कार्रवाई शुद साफ पे चलाने बाप सारे पार्टियन अथवास मोहमत। वजीर अजम नरेंद्र मोदी अरविंद जहमिस इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाडस मज सोन सिंह चोर मेडल जेन बाप टीम इंडिया मुबारक कर्मुत। जम्मू कश्मीर मे पूस राजौरी जिले अंदर बार रूद पेन पत जमीन रूड ग सैलाब इन सह नफर मार गौसमियात महकमन हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर तो उत्तराखंड मज बार रूद पेन बाप रेड अलर्ट जारी कर। पार्लियामेंट वहरस इजलास गजक पे शुरू, तो यह रोज 13 अगस्त तक जारी। वहरस इजलास दौरान इन कह अहम बिल बासु मुबैस तो पास करने बाप तुलने। इजलास शुरू सपदन ब्रो दो बुलव रात सरकार नई दिल मज कुल जमायती मीटिंग ये बचा वजीर राजनाथ सिंह सदारत कर। मीटिंग मज पार्लियामेंट मामलन मरकजी वजीर किरण रिजिजू, बे राज्यसभा हिंद चेयरमैन जगत प्रकाश नड्डा, वजराई ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल तो डॉक्टर एल मुर्गन मौजूद। मीटिंग मज करीब 40 सियासी जमातन हंद अल पल 500 लीडरों शिरकत। मीटिंग शुरू सपदन के कह कल पते कोर अपोजिशन जमातों अलामती वॉकआउट तिकाज तिम वनान जे एन सी पी आई क्याज आई मीटिंग में शिरकत करने दावत दिन। एन सी पी आई छे अख रजिस्टर्ड सियासी जमात यम हाल ही मगरबी बंगाल असेंबली चुनावन में हिस्सा नियो, तो कह कल ब्रोह गई कह बागी तृणमूल कांग्रेस लीडर तो पार्लियामेंट मेंबर ते अत में शामिल। पनुन एहतजाज दर्ज करने पत कर अपोजिशन मेंबरों बे मीटिंग में शिरकत। मीटिंग पत वो नाम निगार सत कत कर किरण रिजिजून ज सारे जमातन पजि कैचन अहम मसलन पे बहस कर कह अहम फैसले निनस मुतलिक हुकूमत पन अथवास आयतन थावन।
2: मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफी चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: तृणमूल कांग्रेस लीडर तो मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोहित्रन व नाम निगार सत कत कर अपोजिशन जमातों कोर मीटिंग मज वॉकआउट तिकाज एन सी पी आई छन अख रजिस्टर्ड पार्लियामेंटी पार्टी। यपर वो एन सी पी आई लीडर सुदीप बंदोपाध्यायन मुखालिफ दर दस वॉकआउट कर तिज कट कड़ान जन डी एस मे एन सी पी आई दोम सारे खुद बड शराकत दार जमात। लोकसभा हिंद स्पीकर ओम बिरलान कर पार्लियामेंट वहरस हूं इजलास आज शुरू सपदन ब्रो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हिंस अख मीटिंग तलब। मीटिंग दौरान कर सरकार नुमाइंदगी करन वालों तो बाकी सियासी जमातन सत ताल्लुक थवन वालों मेंबरों मुख्तलिफ बिरन ताइवान की बाकी कार्रवाई पर ख्याल बाबत मेंबरों को रखते अवैमी मफादिक बे कौमी मफादिक तिथि मसल तेश पे इजलास दौरान।

0: शब्द नुक तजवीज थावनाव मीटिंग खिताब करानून ओम बिरला हन से तमाम मेम्बरन पजी पार्टी वाबस्तगी निश बालातर शब्दित अवैमी अहमियत कन अहम मसलन पे तमीर बहस करून तो अत दौरान गसन पार्लिमानी कदर मद्देनजर थावने यिने तिमो कर सारनी सियासी जमातन अपील से पार्लिमेंट कार्रवाई जबर पर चलावन बापत दियन तिम सरकार पन पूरी पूर अथवास तिमो बव उमेद जे सही मेम्बर करन एकवट रलित काम युत अख असरदार तो बावकार पार्लिमानी सेशन मुमकिन बने तो अवामी मफादस में सब्द तमीरी काम वजीर अजम नरेंद्र मोदी अरवन जहमिस इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाडस में स्वर्ण सिंह चोर मेडल जेन पे भारतीय टीम मुबारक कर्मुत अके सोशल मीडिया पोस्ट में वो नरेंद्र मोदी जे यस अत बावकार आलमी मुकाबलस में वनिस तामच भारतीय सारी खुद बेहतर कारकर्दगी तमो वन से टीम सलाहियत चुख तो जज्बन सारे कौम कल फख्र सोद तुलमुत वजीर अजम कीम चौशवन नंबर मेडल जेन बापत मुबारक यपर सत्रहमिस इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाडस मज स्वर्ण सिंधिस अकिस मेडल सान चोर मेडल जेन पे भारतीय टीम मुबारक करना आमुत जम्मू कश्मीर मे पूस राजौरी हंद सरहदी जिलन अंदर वाना रूद पेन पत कन मेच लम वसित बे सलाब किन कह नफर मार गमुत जन कह वन लापता वन आकाशवाणी हिंद जमिक नुमाइंदन खबर दिजम जे सारी खुद ज्यादा तबाही छे पूंच जिले के सुरनकूट इलाकस में सपजम तो ज्यादा हलाकस अति सपजम दोशवें जिलन अंदर पुलिस फौज एनडीआरएफ तो एसडीआरएफ बे सिविल इंतजामिया बचाव तो राहत रसानी हिजे कार्रवाई मज लगित तो लापता नफर छाड़न कोशिश जारी अथ दौरान कर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रात सूरत हाल सामहन बापत अक बहरी पाई मीटिंग हिंद सदारत यह दौरान तमो हकमन हदायत दि मुतासर लूकन थावन तम फौरी इमदाद आयतन यपर जम्मू कश्मीर वजीर आला उमर अब्दुल्लान दिल्ली हूं दौर महदूद तो तम तूरत हाल सामहन बापत वापस जम्मू कश्मीर तमो रात शाम जमे बहली पाई अहदेदार सक मीटिंग यह दौरान तमो बचाव तो राहत रसानी हजन कार्रवाइन मज वस अन बापत मुतलिक अफसर हदायत दि तमो वन से मुतासर लूकन राहत वात मज ग कह तर्गी थावन ये खबर आकाशवाणी पे बोजान नागालैंड मे कहान जिलन अंदर बार रूद पेन तो मेच लम वसित हिंद किन जान माल नुकसान सपदन खबर वाचम मून जिलस मे अचानक सलाब यन तो मेच लम वसित हिंद किन नौ नफर मार गमत जन वारिया मकान रुड गमत अति हकमो वोनम त्रेन जनान सान चोरन नफर हज लाश बरामद कर आम जन बाकिन हज तलाश जारी छे खराब मौसमी सूरत हाल नजर तल थे सालान श्री अमरनाथ जी यात्रा दोशवी रवायती वतो यानि पहलगाम तो बालतल किन आज दोम दोह तुअल जमिक सूबाई कमिश्नर रमेश कुमार वोनमुत यह फैसल यात्रा च वत पे खराब मौसमी सूरत हाल नजर तल थ यात्रन हज हिफाजत यकीनी बनान बाप तुलनामुत यात्रन वन आम जम कर जम उधमपुर तो रामबनस मज मुकर कर आमत कयाम गहन पे ठहराव तो कर हकमो दस मजीद हदायतन हूं इंतजार तुह पाव चेतस जोत शाम तम करीब दून चोर लश यात्रो अमरनाथ गुफा मज दर्शन कर्मुत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वोन सन रूहानी रवायत जबान इलाक जात पात रस्म रवाज की तफरीक निश बाला तर तो भारत छ तिथि सरजमीन अलामत ये तमाम मजहब वतवाशर प्रावान छे इमन कथन बाबत कर तमो रात वर्मल मुनद महायज्ञ धर्म सम्मेलन मज शिरकत कर दौरान तमो वन जम्मू कश्मीर मज ये तमाम मजहबन एहतराम कर तत त्रावि ये यज्ञ सनिस रूहानी वरासत अंदर अख नौ जू जत पेश अत सिलसिलस मज आकाशवाणी हिंदिस नुमाइंद सुंद ये रिपोर्ट
1: अत मौकस पे खताब करान वोन लेफ्टिनेंट गवर्नरन जी सम्मेलन रूहनी बेदारी हुंद अक आम जरिए तो वर्मल पे दूरस मुल्कस तो जम्मू कश्मीरस मिलचार भाई बंतुक तो कौमी यकजहती हुंद पैगाम दिवान तमो वोन मजीद जी वर्मल सदियों पे सकाफत रूहनी इल्म तो मुख्तलिफ तहजीबन हुंदे संगमुक अक अहम मरकज रूदमुत मनोज सिन्हा वोन जी ये सम्मेलन सत वर्मल के तारीखी तो रूहनी वर्ज दोबारा जिंद कर अत मौकस पे दुत तमो नौजवान पे जोर जम बन सब इंसान।

हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समीन सुबह के 7:55 हो चुके हैं। आपको जानकारी देते हैं आज हमारे यहां से नष्ट होने वाले प्रोग्रामों की। रात 9:30 पर निसार सिगड अफ्रीका तहरीर करदा कश्मीरी ड्रामा नष्ट होगा, बिट लज नौकरी। 10:00 पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन की कार्रवाई का अहवाल नष्ट होगा, जो कि आज यानी 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। 12:45 पर आयुष का स्पॉन्सर प्रोग्राम पेश होगा सेहत बदन। मकामी रोजनामों से तरतीब दी हुई सुर्खियां नष्ट होती है 9:00। कश्मीरी मौसीकी आप समाप्त कर सकते हैं 9:30 पर। सूफी बुजुर्गों की जिंदगी और उनकी सूफी वरिशी कारनामों से तरतीब दिया हुआ प्रोग्राम सूफी सदा नष्ट होता है 10:00। प्रोग्राम में सूफी शायर फकीर अहमद भट्ट से मुतलिक गुफ्तगू नष्ट हो गई। लाइव इंटरेक्टिव शो समाप्त करें 10:30 पर। मेहमान हैं पीरजादा फैयाज अहमद, जो कि टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री प्रोफेशनल हैं। इनसे हम कलाम हैं प्रोग्राम की मेजबान रिफत आरा। सुहेल फयाज शेलवती और उनके साथी छक्री और पेश करेंगे 11:30 पर। दोपहर 2:30 और सपर 4:30 पर इनसे आप सिलसिलावार कलाम शम्स फकीर, कलाम जरगर और कलाम रमजान फूफ समाप्त करेंगे। फिल्मी नगमे समाप्त करें दिन में 12:10 पर और 2:15 पर। ख्वातीन के लिए फोन इन प्रोग्राम हेलो महफिल हेलो बजमिनिस्वा आप समाप्त कर सकते हैं दिन में 12:40 पर। इस प्रोग्राम की मेजबान है शाहीना ऋषि। NCERT का स्पॉन्सर तालीमी प्रोग्राम आपके लिए पेश होगा दिन में 1:10 पर, जिसके फौरन बाद चंद फिल्मी नगमे भी पेश होंगे। फिल्म संगीत से तरतीब दिया हुआ प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए नष्ट होगा 3:00। पहाड़ी प्रोग्राम पेश होता है 4:00। गोजरी प्रोग्राम का वक्त रहता है 5:00। शाम 6:05 पर प्रोग्राम पेश होता है गनी भाई नहदी खतर। प्रोग्राम में मामूल की नशरियात के अलावा डॉक्टर माजिद अब्बास ख्वाजा और सलीम फारूक के माबेन सेहत से मुतलिक गुफ्तगू नष्ट होगी। मौजू है फैटी लिवर। हालात

पर हम अपनी प्रोग्राम शहर बीन आप तक पहुंचेगा शाम 7 बजे। प्रोग्राम वादी की आवाज ब्रॉडकास्ट होता है 8 बजे। रात 8:30 पर खेल शायकीन के लिए खेलों से मुतलिक प्रोग्राम नष्ट होता है स्पोर्ट्स टाइम। प्रोग्राम में खेल खबरें पेश करेंगे सुहेल निसार और रात 9 बजे चंद कश्मीरी गजलें समाप्त करें। तो सामने ये थी तफसील आज हमारे यहाँ से नष्ट होने वाले प्रोग्रामों की।

0: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है मीडियम वे 268.81 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं डीटीएच और आकाशवाणी की लाइव मोबाइल ऐप पर। समय सुबह के 8 बज रहे हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो, जहां से अब ठीक 8 बजे हिंदी खबरों का बुलेटिन समाप्त करेंगे।
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
3: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
4: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग

0: करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
1: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा

0: क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
1: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
2: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
1: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गाँव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
2: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार 8वीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
3: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू,

0: शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले 5वें ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली PV सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, PV सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, PV सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्ता ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं, हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने

0: संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमरीका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज मीडियम वे 268.8 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा हमारी नशरियात आप समाप्त कर सकते हैं DTH और आकाशवाणी की लाइव मोबाइल ऐप पर। समीन लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह जारी है और मैं हूं आपका मेजबान शौकीन हिलाल और मेरे साथ है
3: रिफत आरा। हिलाल, अभी अभी हमें ये खबर आई है बाहर से कि बारिश बहुत तेज हो रही है। आज का जो हमारा दिन है, हमारे दिन का जो थीम है वो हम माहौलियात के हवाले से बात करते हैं।
2: जी बिल्कुल।
3: और अभी हम इस सेगमेंट से पहले हम माहौलियात के हवाले से ही बात कर रहे थे, एनवायरनमेंट की बात हो रही थी और एनवायरनमेंट में बारिश का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अश्वाना पेज पठन जो खुदा सन रहमत हम सतन रोज पैवान और ये रूद पैन खतर माहौल बचावन खतर छ असपान ते वारिया सही करें अत मज गिस इंसान ये सोचन कि आज ये सवन इथ रूद छ पांच वना रहमत आई
2: रहमत है। बिल्कुल
3: है ना। हम कहते कि रहमत बरस रही है तो इस रहमत को बरसने में हमें भी कुछ सही खैर आज अगर हम तारीख की बात करें, आज 20 जुलाई है और तारीख के हवाले से अगर बात हो तो बहुत कुछ हुआ है आज के दिन में। वो भी हम बात करेंगे कि क्या क्या हुआ है आज के दिन के हवाले से अगर बात हो तो। सबसे पहले जो है, आज 20 जुलाई है और आज गीता दत्त जो बरसगीर की मौसीकी की तारीख की उन चंद अजीम गुलकाराओं में शुमार होती हैं जिनकी दिलकश और पुरसोस आवाज़ आज भी सामीन के दिलों में जिंदा है। उनकी आवाज़ में ऐसी मिठास, जज्बात की गहराई और सादगी थी कि हर गीत एक अलग ही कैफियत पैदा कर देता था।
2: जी, गीता दत्त 23 नवंबर 1930 को फरीदपुर मौजूदा बांग्लादेश में पैदा हुई। तकसीम हिंद के बाद इनका ख़ानदान भारत मुंतकल हो गया जहां उन्होंने मौसीकी की बाकायदा तरबियत हासिल की। कम उम्र ही में इनकी गैर मामूली सलाहियतों को पहचान लिया गया और फिल्मी दुनिया में इनका सफ़र शुरू हुआ।

0: तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, ये गीता दत्त की आवाज में आपने नगमा सुना। और अभी बात हम कर रहे हैं गीता दत्त की ही। 1950 ईस्वी और 1960 की दहाई में गीता दत्त ने बेशुमार लाजवाल नगमे गाए। रोमानवी गीत हों, गजलें, कवालियां, भजन या उदास धुनें, हर अंदाज में उनकी आवाज ने सामीन को अपना गिरवीता बना लिया। उनके गाए हुए गीत बाबूजी धीरे चलना, वक्त ने किया क्या हसी सितम, जाने क्या तूने कही और मेरा नाम चुन चुन चू, आज भी मौसीकी के शाहकार समझे जाते हैं।
1: गीता दत्त की शादी जो है मारूफ फिल्म साज गुरुदत्त से हुई, अगरचे उनकी जाती जिंदगी कई मुश्किलात से गुजरी, लेकिन उन्होंने अपनी गायकी के मयार पर कभी समझौता नहीं किया। इनकी आवाज में जिंदगी के मुख्तलिफ जज्बात की ऐसी अक्कासी मिलती है कि जो आज भी सामीन को मुतासिर करती है।

0: बात कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में जो कि पयाम सुबह प्रोग्राम चल रहा है, और आज हम इस सेगमेंट में बात कर रहे हैं गीता दत्त के हवाले से। यानी 20 जुलाई यानी कि आज 1972 को सिर्फ 41 साल की उम्र में गीता दत्त इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन इनकी आवाज़ आज भी जिंदा है। इनके गीत रेडियो, टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर यकसा मकबूल हैं और नई नस्ल भी इन्हें इसी मोहब्बत से सुनती है।
1: जी हाँ, 20 जुलाई हमें बरसगीर की अजीम गुलकारा गीता दत्त की याद दिलाता है, जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज से मौसीकी की दुनिया को लाजवाल नगमों का अनमोल खजाना दिया। आज उनकी बरसी के मौके पर हम उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि उनकी फनी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी।

सुन के मत वाले काले बादलों का शोर।

0: रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में नगमा आपने सुना काला बाजार फिल्म से। और इस वक्त बरसात भी हो रही है। खैर, कुछ वक्त पहले हमें ये इतला मौसूल हुई थी कि बाहर तेज बारिशें हो रही हैं हिलाल, लेकिन इस वक्त क्या मौसम का हाल है ये हमसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि हम अंदर स्टूडियो में बैठे हैं और बाहर का अभी कुछ ज्यादा इल्म नहीं है।
1: नहीं,
0: लेकिन जब हम ऐसे नगमे बरसात में सुनते हैं तो यकीनन यादें ताजा हो जाती हैं, अच्छा लगता है। इतने सालों के बाद भी इनकी आवाजें, जो जैसे गीता दत्त हुई, लता जी हुई या रफी साहब हुए, उनकी आवाज दिल को मोह लेती है।
1: जी बिल्कुल, और ये वो अनमोल खजाना है गीतों का या मौसीकी का, जो कितना भी हम कितनी भी सदियां गुजर जाएं, इनकी जो अहमियत है, इनकी जो इफादियत है, वो बराबर कायम रहेगी, बल्कि यूं कह सकते हैं वक्त के साथ बढ़ती जाएगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। बरसात के मौसम में जब हम ड्राइव करते हैं तो ऐसे नगमे गाड़ी में चलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और सफर आसान हो जाता है। खैर, हमें हर एक चीज का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इन नेमतों के लिए जिन्होंने हमें इन नेमतों से नवाजा है। जैसे बरसात एक बहुत बड़ी नेमत है, हम चाहते थे कि गर्मी बहुत ज्यादा है कि बरसात हो, तो बरसात हुई। अल्लाह बेहतर जानता है हमारी

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। हुकूमत ने सभी सियासी पार्टियों से कहा है कि वो पार्लियामेंट के कामकाज को खुशसलूबी से जारी रखने के लिए तआवुन करें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाऊ में मोल्दोवा की अपनी हम मनसब माई सांदू से वफद की सतह की बातचीत करेंगी। मध्य प्रदेश काबीना कमेटी ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है। कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरेकार से बाहर रखा गया है। जम्मू और कश्मीर के रजौरी और पुंछ जिलों में ताजा सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने से 11 अफराद हलाक हो गए, 8 अफराद अब भी लापता हैं। अमेरिका ने ईरान पर फजाई हमले किए हैं। हमलों की ये नवी रात है जिसकी वजह से आबनाए हुरमुज से मुतालिक कशीदगी में मजीद शिद्दत आ गई है। और स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को इजाफी वक्त में 1-0 से हरा कर 2026 का फीफा आलमी कप जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। 25 दिन के इस इजलास में 19 नशिस्तें होंगी। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: उम्मीद है कि इजलास के दौरान बहुत से अहम बिल बहस व मुबाहिसे और मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। आज लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुताबिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया जाएगा। उधर राज्यसभा में कौमी एहतराम को नजरअंदाज करने की रोकथाम से मुताबिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया जाएगा। इन बिलों के अलावा पैदाइश और मौत के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक तरमीमी बिल, इनकम टैक्स के तरमीमी बिल, बहुत छोटे छोटे और औसत दर्जे के कारोबार को तरक्की देने से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2026 पेश किए जाने की भी उम्मीद है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: मानसून इजलास के मौके पर हुकूमत ने कल पार्लियामेंट हाउस में एक कुल पार्टी मीटिंग बुलाई थी जिसकी सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। 40 सियासी पार्टियों के 50 से ज्यादा रहनुमाओं ने मीटिंग में शिरकत की। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने मीटिंग के बाद नामानिगारों से खिताब करते हुए सभी सियासी पार्टियों से जोर देकर कहा कि वो पार्लियामेंट का कामकाज खुशसलूबी से जारी रहने को यकीनी बनाएं और बुनियादी मामलों पर तामीरी बहस मुबाहिसा करें।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे।
0: लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कल लोकसभा की मुशावरती कमेटी के कामकाज से मुतालिक एक मीटिंग की सदारत की। इसी दौरान सरकार और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी करने वाले अरकान ने इस इजलास के दौरान कानून साजी और दीगर मुजवजा कामकाज के बारे में तबादले ख्याल किया। जनाब बिरला ने तामीरी बहस मुबाहिसे, बामाना शिरकत और आला तरीन पार्लियामानी अख्तार का ख्याल रखने की अहमियत पर जोर दिया। दिल्ली पुलिस ने वजाहत की है कि पार्लियामेंट के इजलास के पेश नजर जो आज से शुरू हो रहा है, नई दिल्ली जिले में किसी भी एहतजाजी मार्च या जुलूस की इजाजत न तो मांगी गई है और न ही दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि मस्कूरा इलाके में भारतीय

0: नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की दफा 163 नाफिज है, लिहाजा जंतर मंतर को छोड़कर बाकिया इलाकों में एहतजाजी मार्च, जुलूस, मुजाहरे और 5 या इससे ज्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चेसिनाओ में मालदोवा की अपनी हमबनसब माया सांदू के साथ वफ्द की सतह की बातचीत करेंगी। सदर मुर्मू मालदोवा की पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मालदोवा भारत पार्लियामानी दोस्ती ग्रुप के अरकान से भी बातचीत करेंगी। इसके अलावा वो एक तजारती फोरम से खिताब करेंगी और भारतीय बिरादरी के अरकान से बातचीत करेंगी। किसी भारतीय सदर का मालदोवा का यह पहला दौरा है। सदर जमहूरिया 3 मुल्कों मालदोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे पर हैं। मालदोवा के अपने दौरे के बाद सदर जमहूरिया दूसरे मरहले में कल शिमाली मकदूनिया पहुंचेंगी। मध्य प्रदेश काबीना ने जगदीशपुर में, जो भोपाल के नजदीक एक तारीखी कस्बा है, एक खसूसी मीटिंग के दौरान यकसा सिविल कोड UCC बिल को मंजूरी दे दी है। हमारे नामनिगार ने बताया है कि कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरे इख्तियार से बाहर रखा गया है। एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश ने यकसा सिविल कोड UCC पर अमल दरामद के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया है। कल भोपाल के जिले जगदीशपुर में काबीना की एक मीटिंग मुनाकिब की गई, जिसकी सदारत वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने की। इस मीटिंग में UCC बिल 2026 के मसौदे को इत्तेफाक राय से मंजूरी दे दी गई। अब इस बिल को रियासती असेंबली के मानसून इजलास में पेश किया जाएगा। ये इजलास आज से शुरू हो रहा है, जो 24 जुलाई तक जारी रहेगा। काबीना मीटिंग के बाद वजीर आला यादव ने नामा निगारों को बताया कि UCC से रियासत में इस यकसा सिविल कोड से रियासत के हर शख्स को बराबर की हैसियत फराहम होगी। उन्होंने कहा कि अब रियासत में कई शादियों की इजाज़त नहीं होगी। यकसा सिविल कोड के मुताबिक जो लोग लिव इन ताल्लुकात में रहेंगे, उन्हें एक महीने के अंदर अंदर इंदराज कराना होगा। शादी का रजिस्ट्रेशन गांव की सतह पर भी लाजमी होगा। अलबत्ता कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरे कार से बाहर रखा गया है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के रजौरी और पुंछ जिलों में कल बारिश की वजह से अचानक सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने से 11 अफराद हलाक और 8 लापता हो गए। राहत और बचाव टीमों ने सैकड़ों अफराद को बचाकर उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है, जबकि राहत से मुतालिक कार्रवाइयां जारी हैं। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने इस हादसे के बाद सूरत हाल का जायजा लिया और जम्मू और कश्मीर सरकार को यकीन दिलाया कि मरकज की तरफ से हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: राजौरी और पुंछ जिलों के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते की रात आने वाले तबाहकुन सैलाब ने कीमती इंसानी जानों के इतलाफ के साथ निजी और सरकारी इमलाक, सड़क और बुनियादी ढांचों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। दोनों जिलों में सैकड़ों गाड़ियां या तो सैलाब में बह गईं या उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा है। पूरे जिले में बिजली की फराहमी बुरी तरह मुतासिर हुई है, जबकि राजौरी जिले के तकरीबन निसफ इलाके में बिजली मुनकता हो गई है। जम्मू कश्मीर से गुलशन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: जुनूब मगरबी मानसून हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर सरगर्म हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज और कल के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने रियासत के बहुत से हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश की इंतबाह जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कांगड़ा जिले के धर्मशाला में 82.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शिमला में महकमे मौसमियात के मरकज ने बताया कि चंपा, कांगड़ा, मंडी और सुरमौर जिले में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए ऑरेंज अलर्ट और बिलासपुर, कन्नूर और लाहौल स्पीति जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि मौसम की मौजूदा सूरत हाल की वजह से अचानक सैलाब और बादल फटने के अलावा मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात पेश आ सकते हैं। इसी दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट के पेश नज़र कांगड़ा, चंबा और सुरमौर जिले की इंतजामिया ने आज सभी तालीमी इदारे बंद रहने का हुक्म दिया है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: उत्तराखंड में कल सुबह से बारिश हो रही है, जिससे मैदानी और पहाड़ी इलाकों में जिंदगी मुतासिर हुई है। रियासत के कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद हैं और इंतजामिया अलर्ट के पेश नजर हर किस्म की परेशानी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तफसील हमारी नामा निगार से।
3: भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, खोड़ी और उधमपुर नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि रुद्रप्रयाग,

0: चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के रेड अलर्ट के पेश नजर पहली से बारहवीं जमात के स्कूलों के लिए एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने सभी महकमों को चौकस रहने की हिदायत दी है। राहत और बचाव टीमों को तैयार रहने को कहा गया है। वजीर आला ने आवाम और यात्रियों से अपील की है कि वो महकमे मौसमियात और इंतजामिया की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी पर अमल करें। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
1: उत्तर प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में मुतदिल से शदीद बारिश हो रही है, जिससे रियासत में मामूलत जिंदगी मुतासिर हुए हैं। तफसील हमारे नफानिगार से।
2: मुजफ्फरनगर जिले में शदीद बारिश के सबब एक पुरानी इमारत के मुनदिम होने से चार बच्चों समेत पांच अफराद हलाक हो गए, जबकि पांच दीगर अफराद भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है। इस दौरान संत कबीर जिले में एक प्राचीन मंदिर भी मुनदिम हो गया है, लेकिन किसी जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं है। शदीद बारिश ने रियासत के कई जिलों, जिनमें राजधानी लखनऊ शामिल है, मामूलाती जिंदगी को मुतासिर किया है। मुतादिद इलाकों में सड़क पर पानी जमा होने और ट्रैफिक के आमोदरफ्त में खलल पड़ने की इत्तलात हैं। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: अमरीका की मरकजी कमान सेंटकॉम ने कहा है कि उसने ईरान पर ताजा फौजी हमले किए हैं और ये हमलों की लगातार नवीं रात है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सेंटकॉम ने कहा कि ईरान के खिलाफ ये ताजा हमले कल रात किए गए, जो ईरान की फौजी सलाहियतों को कमजोर करने के मकसद से जारी रहेंगे, जिन्हें ईरान आबनाए हुर्मुस से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों और शहरी मल्लाहों पर हमले करने के लिए इस्तेमाल करता रहा है, जिनमें अमरीकी फौजों ने ईरान के बहुत से फौजी असासों को निशाना बनाया है, जिनमें साहिली निगरानी और फजाई दिफाई ठिकाने, समंदरी तनसीबात और मिजाइल और ड्रोन के जखीरों की जगह भी शामिल हैं। अमरीकी फौज ने इस्लामी पासदारा ने इनकलाब की फौजों को भी निशाना बनाया है, जिन्होंने उर्दुन में 17 जुलाई को अमरीकी फौजियों पर हमले किए थे। ईरान में भारतीय सफारतखाने ने अदम इस्तेकाम और तनाजे की हालिया शिद्दत के पेश नजर भारतीय शहरियों के लिए एक ताजा हिदायत जारी की है। उसने किसी भी मकसद से ईरान का सफर करने वाले भारतीय शहरियों के लिए हिदायत जारी की है कि वो अपना सफर मुलतवी कर दें, जब तक के सलामती की सूरत हाल में बेहतरी ना आ जाए। हिदायत में कहा गया है कि जो भारतीय शहरी ईरान में मौजूद हैं, वो आरजी तौर पर ईरान से निकलने पर गौर खोज करें और इसके लिए वो जो भी परवाजें दस्तयाब हैं उनका इस्तेमाल करें। सिफारतखाने ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय शहरियों को यह हिदायत भी दी है कि वो अपनी जाती मालूमात सिफारतखाने में जल्द अज जल्द दर्ज कराएं। उसने ये बात भी जोर देकर कही है कि सिफारतखाने की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार नजर रखें, ताकि वो ताज़ा जानकारी और मजीद हिदायत से बाखबर रहें। किसी भी तरह की मदद के लिए सिफारतखाने ने ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, +989128109115, +989128109109, +989128109102 और +989932179359। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में कल देर रात स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा आलमी कप 2026 का चैंपियन बन गया है। स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ जीत का वाहिद गोल खेल के 106वें मिनट में किया। ये गोल स्पेन के फेरन टोरेस ने किया। इससे पहले दोनों टीमों की तरफ से 90 मिनट के खेल के दौरान सख्त जद्दोजहद के बावजूद कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई थी। स्पेन ने दूसरी बार मर्दों का फीफा आलमी कप जीता है। इससे पहले उसने 2010 में पहली मर्तबा आलमी कप जीता था। स्पेन के कप्तान को टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया है, जिन्हें गोल्डन बॉल अवार्ड से नवाजा गया है, जबकि स्पेन के ही उनाई सिमोन को गोल्डन ग्लोव का अवार्ड दिया गया है और पाउ कुबारसी को नौजवान खिलाड़ी का अवार्ड अता किया गया है। फ्रांस के खिलाड़ी क्लियान मबापे को फीफा आलमी कप 2026 का गोल्डन बूट अवार्ड नवाजा गया है। मर्दों की क्रिकेट में कल रात लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने तीसरे एक रोजा बैन अलाकवामी मैच में भारत को 27 रन से हरा दिया। रोहित शर्मा के शानदार 138 रन, शुभमन गिल के 77 रन और विराट कोहली के 74 रन के बावजूद भारत की टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी, जिसे जीत के लिए 388 रन का निशाना मिला था। इस तरह इंग्लैंड ने यह सीरीज 2-1 से जीत ली है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
3: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शायब होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप और इनकलाब समेत आज के सभी अखबारों ने आज से शुरू होने

0: रहे पार्लियामेंट के मानसून इजलास की खबर को सफे अव्वल पर शाये करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू के इस बयान को नुमाया किया है कि सभी पार्टियां इस बात को यकीनी बनाएं कि पार्लियामेंट का कामकाज खुश उसलूबी से जारी रहे ताकि बिलों पर मुकम्मल बहस हो सके।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। हुकूमत ने सभी सियासी पार्टियों से कहा है कि वो पार्लियामेंट के कामकाज को खुश उसलूबी से जारी रखने के लिए तआवुन करें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मालदोवा की अपनी हमनसब माइया सांदू से वक्त की सतह की बातचीत करेंगी। मध्य प्रदेश काबीना कमेटी ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है। कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरे इख्तियार से बाहर रखा गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में ताज़ा सैलाब और ज़मीनी तोदे खिसकने से 11 अफराद हलाक हो गए, 8 अफराद अब भी लापता हैं। अमेरिका ने ईरान पर फजाई हमले किए हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समय सुबह के 8:45 हो चुके हैं। स्वागत करें स्पॉन्सर प्रोग्राम सेहत बदन।

0: मजबूत मजबूत मतलब मोटा बनता है स्किन लेयर सैगिंग शनगसा किहीन जुरिया वुरिया नहीं आती है तम खतर प्लस अगर एजिंग हाँ एजिंग को ये दूर करता है मतलब एंटी एजिंग है ये एंटी एजिंग मतलब कि यूस सिकनेस यूस एजिंग गसान छ मन बुजर हुई वान तथ छु ये बचावान मतलब नॉर्मली अगर चाजी बहर पात या पांच सौ बहर पात गसान जुरियां गसान रिंकल्स गसान तिम छ गसान कंस बिल्कुल गाड़े बिकॉज ऑफ दिस डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी तो अगर कह असल पे खे ये विटामिन सी रिच फूड्स खे तो तमस मज ये कम पहम लब प्लस सिकनेस मन अमिक रोल कि यह एज एंटी ऑक्सीडेंट कर मतलब दाग वाग पे सिकनस पे मतलब हाइपर पिगमेंटेशन गत प्रिवेंट कर इवन ये गमस तो दूर कर असल मदद दिवान
1: डॉक्टर साहब वह यहां बहु जान यू ये विटामिन के विटामिन के कथ कथ चीज सोर्स क्या विटामिन के इंसानस क्या जरूरत कथ कथ चीज लगान
0: विटामिन के तुथ विटामिन सानी बॉडी हिंद क्लॉटिंग सिस्टम मज मदद कर क्लॉटिंग फैक्टर मज हेल्प कर मतलब यह पार्ट ऑफ वेरियस क्लॉटिंग फैक्टर्स इन आवर बॉडी तो प्लस कर क्लॉटिंग फैक्टर मतलब कि अगर इंजरी गई या क्या गई तथ रुक खुद मदद कर ब्लड लॉस बचा प्लस बोन हेल्थ यह सपोर्ट कर स्ट्रॉन्ग बोन्स बनानस मज प्लस हार्ट वेसल्स तिंद हेल्थ खुरा असल विटामिन के हार्ट एंड ब्लड वेसल्स तिंद हेल्थ
1: खुशान
0: यह ज्यादा मिलान ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक ये वो जन पालक हाक कैबेज ब्रोकली प्लस सम वेजिटेबल ऑयलन मे मिलान मन ज्यादा पहम यह विटामिन के
1: डॉक्टर साहब अगर वह डेफिशिएंसी अमिश गई विटामिन के तमस क्या है सब
0: तिमन इजली दाग गसान मतलब या नील दाग वन थोड़ा लोग ठोकर तो इजली नील दाग गसान या एक्सेसिव ब्लीडिंग थोड़ा कट लोग ब्लीडिंग से ज्यादा गसान तो पत अगर लोग कट तो जल्दी से क्लॉटिंग गसान तथ
1: तो डॉक्टर फिरोज साहब अब ब्याह इम्पोर्टेंट विटामिन सब विटामिन ई अत क्या रोल सानी बॉडी मे कत मे बेहतर सोर्स अमी
2: निजामी साहब तुम चूंकि डिस्कस कर वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन यह विटामिन डिस्कस कर और वनकस टॉपिक विटामिन ई युक विटामिन ई सारी खुद इम्पोर्टेंट यह फैटी लिवरस मेरा इम्पोर्टेंट
1: अच्छा
2: अगर फैटी लिवर ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड तमिस तथ मे हेल्प कर फैटी लिवर कम इसलिए वो तुम वह डॉक्टर साहब फैटी लिवरस मे बाकी दवाओं सत्य विटामिन ई तक और यह अत ख इम्पोर्टेंस
1: ठीक
2: अच्छा अमिक सोर्स तुम वन आलमंड्स नट्स मतलब यानी बादाम सह बेहतरीन सोर्स इथे कन सनफ्लावर गुले आफ्ताब तमिक सीड्स सह असल सोर्स अमिक या वेजिटेबल ऑयल्स सह सनफ्लावरस मेरान वेजिटेबल ऑयल तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल बी पम्पकिन सीड्स यानी कदूका बीज असल मतलब सोर्स विटामिन ई युक सोर्स वह अगर अमि डेफिशिएंसी गई अगर अमिश गई कमी गई तो अत मे मेनली मसल वीकनेस ग नर्व प्रॉब्लम चूंकि यह नर्वस मज हेल्दी थानस मज मदद कर विटामिन बी ट्वेल्व या विटामिन बी वन सो इत हेल्दी इथे कन यु रोल तथ मज लिवान
1: चीजन चीज असल इस्तेमाल कर
2: बिल्कुल या इथे कन विजनस मछन हिंदी लाइट मत अछन हिंद लाइट विटामिन ए इम्पोर्टेंट इथे कन विटामिन ई
1: तम्पोर्टेंट
2: सिकनस मजर असल इम्पोर्टेंट रोल थान विटामिन ई तो इसलिए डुबल बाब कि अजन अमन चीजन हूं ख्याल पन्नस डाइटस मं सारी चीज अम डाइटस मज इनकलूड कर और हुंद खूब इस्तेमाल कर बाजरी फूड्स बाजर खेन चन या जंक फूड्स कर अवॉइड तथ मुकाबले कर चीज इस्तेमाल और कुन चीज कैल्शियम विटामिन विटामिन ई विटामिन सी डेफिशिएंसी गई इंशाल्लाह पूरा इथे कन चीज मे कम इस्तेमाल गुजर गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम सो मखाना मखाना बेसिकली इन नदब नेरान डल मे कन बिहार मज पस तम वन पोखर तम पोखरन यानी तम तालबस मन इथे कन नदर बन कन आबस मन नदर इथे कन और यह वाइट कलर गोल लकट लकट बॉल और यह असल सोर्स ऑफ कैल्शियम यह हेको दौ फॉर्म इस्तेमाल कर गो करो यह गवस पे रोस्ट पो थोड़ा सा नुन चना खेमो यह क्रिस्पी बनान या हेको थोड़ा खुशक इथे कन रोस्ट कर विदाउट घी तम पत کریش کر پاؤڈر بنت پہ اخ زمچہ دودھس مزہ.

0: हम आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 268.8 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय सुबह के 9 बज चुके हैं। समाप्त करें मकामी रोजनामों से तरतीब दी हुई आज की सुर्खियां।
1: आज की सुर्खियां

0: करने का फैसला, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में रियायत का इम्कान।
1: एक और उर्दू रोजनामे की सुर्खी है, लेबनानी सदर जोसेफ ओन हिजबुल्ला से मुतलिक मंसूबा लेकर व्हाइट हाउस जाएंगे।
0: कश्मीरियत की जड़ उर्दू, फारसी और कश्मीरी जुबानों में पैवस्त चिनार बुक फेस्टिवल के मुजाकरे में मुकर्ररीन का इजहार ख्याल।
1: अमरीका का ईरान की नई मेजाइल हिकमत अमली पर तशवीश।
0: लद्दाख में कीमियाई खादों पर मुकम्मल पाबंदी, मुल्क का सबसे बड़ा नामियाती ज़रई खिता बनने की जानिब अहम कदम।
1: मेरे पास एक उर्दू रोजनामा जिसके खेल सफ़े की सुर्खी है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान ओपन में पीवी सिंधु की तारीखी फतह पर मुबारकबाद दी।
0: ललदत और शेखुल आलम ने इंसानियत की खिदमत करने का रास्ता दिखाया, जम्मू व कश्मीर भाईचारे की अलामत, लेफ्टिनेंट गवर्नर का बैनुल मजाहिब हम आहंगी मकाल में से खिताब।
1: एक और सुर्खी है खेल सफ़े से, इंग्लैंड ने फैसला कुन वनडे 27 रन से जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली।
0: नाले कहमील पर बंगरगुंड त्रहगाम पुल तवील अरसे से तिश्नाए तकमील, 12 असेंबली हलकों की हजारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी को मुश्किल का सामना।
1: वेस्ट इंडीज के लिए चौथा वनडे फैसला कुन, शाई होप ने वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की अहमियत उजागर कर दी।
0: बीरवा में करंट लगने से राहगीर लुक में अजल, कोकरनाग में मोटरसाइकिल सवार जाम बहक।
1: एक और खेल सफ़े की सुर्खी है, रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में तारीखी सेंचुरी बनाकर रिटायरमेंट की कयास आराइयों का भरपूर जवाब दे दिया।
0: वुलर झील की सयाहती हैसियत को फरोग देने की कोशिशें तेज, सिंघाड़ों और नदरों की फसल से हजारों कुंभों का कारोबार मुनहसर।
1: समीन, एक और सुर्खी है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर नाकदीन को खामोश और खुद पर एतमाद को फिर से जिंदा कर दिया। तो समीन, ये थी मकामी रोजनामों से तरतीब दी गई आज की सुर्खियां।

0: समीन आप अनूप जलोटा की आवाज में ये गजल समाप्त कर रहे थे। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समीन ठीक 9:20 पर आप हमारे यहाँ से खबरें समाप्त करेंगे, पहले कश्मीरी उसके फौरन बाद उर्दू में। खबरों से पहले एक मुख्तसर वक्फा।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुँचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
2: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है, आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉक।

क्लासेस, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर, चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।

0: खुद रहा, एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारी आर्मी का। मेरा मैसेज यही है सब लोगों के लिए कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आप किसी बुरी आदत में हैं या बुरे नशे में हैं या किसी ऐसी चीज में है, तो स्पोर्ट ही ऐसी चीज है जो उसे आपको ओवरकम करने में, बाहर लाने में मदद करती है।
1: स्पेन ने फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत लिया है। न्यूजर्सी में कल खेले गए फाइनल मैच में स्पेन ने अर्जेंटीना को सिफर के मुकाबले एक गोल से शिकस्त दी। स्पेन ने दूसरी मरतबा ये वर्ल्ड कप जीत लिया है। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जा 19 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जा 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज। हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.1 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। सामिन, इस वक्त आप नशरियात समाप्त कर रहे हैं, सुबह की नशरियात लाइव मॉर्निंग शो पयाम ए सुबह। मैं हूं आपकी मेजबान रिफत आरा और मेरे साथ हैं हिलाल। हिलाल, हम अक्सर ये सुनते आए हैं पहले से कि रेडियो की आवाज़ गली गली घर घर पहुंचती है। क्या हमने कभी गौर किया कि रेडियो की जो ईजाद है वो किन्होंने की थी?
2: जी बिल्कुल, रेडियो की ईजाद किसने की और उनका रोल और उनका दिया हुआ जो तोहफा है इस दुनिया को, एक अजीम तोहफा है। भले ही कुछ लोगों को इसकी कदर है, कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी या मालूमात है, लेकिन अपने आप में एक बहुत ही सुनहरी ईजाद है और इसके ज़रिए से नस्लों की नस्लों ने जो है फ़ायदा उठा दिया है। इसकी अहमियत जो है वो जानते हैं, उसको पहचानते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने और आज भी इसकी इफादियत जारी है। हम जब कहीं पर भी काम करते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम बिल्कुल अपना पूरा जो वक्त है इसके साथ दें, लेकिन कान आप धर सकते हैं, आप अपना काम आराम से कर सकते हैं, कान आपने धरे और आप तक मालूमात पहुंची, आप एंटरटेन हुए, आप तक मौसिकी पहुंची, आप तक न्यूज़ पहुंची, आप अपना काम भी आराम से कर सकते हैं और आपका काम मुतासर भी नहीं होगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और आज के दिन की अगर हम बात करें, आज के दिन का अच्छा खासा ताल्लुक है इस रेडियो से। जिस शख्स ने, जिन शख्सियात ने रेडियो की ईजाद की, उनमें ग्लालिनो मार्कोनी का नाम भी काबिले जिक्र है। और आज ही के दिन यानी 20 जुलाई 1937 ईस्वी को उनका इंतकाल हुआ।
2: जी,
1: रेडियो की ईजाद का सहरा आम तौर पर ग्लालिनो मार्कोनी के सर बांधा जाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार अमली वायरलेस रेडियो निजाम तैयार किया। थाम रेडियो की ईजाद एक ही शख्स का काम नहीं था, इसमें कई साइंसदानों की अहम खिदमात शामिल हैं।
2: जी बिल्कुल, इनमें एक नाम है जेम्स कर्क मैक्सवेल, उन्होंने भी बरकी मैग्नेटिसी लहरों का नजरिया पेश किया। हाइनरिश हर्टन्स ने तजुर्बात के जरिए इन लहरों को वजूद को साबित किया।
1: बिल्कुल, ग्लालिनो मार्कोनी ने इन तहकीकात की बुनियाद पर 1895 में कामयाबी से वायरलेस पैगाम भेजने का अमली निजाम बनाया, इसलिए उन्हें रेडियो का मौजिद कहा जाता है।

0: घर घर तक पहुंचने वाली आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है मीडियम वेव के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। और इस वक्त आप लाइव शो समाप्त कर रहे हैं पयाम सुबह अपने मेजबान शौकीन हिलाल और
1: रिफत आरा के साथ। और इस वक्त बात हो रही है तारीख के हवाले से, आज 20 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं ग्लैलियो मार्कोनी की, जिन्होंने ईजाद की रेडियो की। मार्कोनी की ईजाद ने मवासलात के शोबे में इनकलाब बरपा कर दिया। जहाजों, फौज, हवाबाजी, नशरियात और बादजार रेडियो और जदीद मवासलाती निज़ाम की तरक्की में उनकी

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 2103.5 MHz, मीडियम व्यू 268.81 मीटर। इसके अलावा आप हमें DTH और मोबाइल ऐप पर भी इस वक्त सुन सकते हैं। ये लाइव मॉर्निंग शो है पयाम सुबह। मैं हूं आपकी मेजबान रिफतार और मेरे साथ हैं हिलाल शाह। तारीख के हवाले से बात हो रही है, आज 20 जुलाई है। राजेंद्र कुमार तुल्ली 20 जुलाई 1927 को ही पैदा हुए। भारतीय फिल्मी अदाकार थे जिन्होंने बॉलीवुड की मुतअद्दिद कामयाब फिल्मों में अदाकारी की। उन्होंने अपने फिल्मी सफर का आगाज 1950 ईस्वी में किया और चार दहाइयों पर मुहित अपने करियर में 80 से जायद फिल्मों में काम किया। उन्हें बेपनाह कामयाबी के बाइस जुबली कुमार के नाम से शोहरत हासिल हुई। 1960 की दहाई में वो भारत के कामयाब तरीन अदाकारों में शुमार होते थे। उन्होंने अपने बेटे कुमार गौरव को लेकर कई फिल्में भी प्रोड्यूस की। हुकूमत हिंद ने फिल्मी खिदमत के एतराफ में उन्हें 1969 में पद्मश्री से नवाजा। उनकी पैदाइश 20 जुलाई 1927 को बरतानवी हिंदुस्तान के सूबा पंजाब में हुई।
2: जी, नसीरुद्दीन शाह की पैदाइश भी आज यानी 20 जुलाई 1950 को। भारत के मारूफ फिल्म अदाकार थे नसीरुद्दीन शाह। थिएटर और हिंदी जबान के फिल्मी हिदायतकार और अदाकार भी हैं। उन्होंने अपने तवील करियर में बेशुमार एजाजात हासिल किए, जिनमें 3 कौमी फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, 3 फिल्म फेयर अवार्ड और विंस फिल्म फेस्टिवल का एक अहम एजाज शामिल है। हुकूमत हिंद ने भारतीय सिनेमा में उनकी नुमाया खिदमत के एतराफ़ में उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा। उनकी पैदाइश 20 यानी कि आज 20 जुलाई 1950 को रियासत उत्तर प्रदेश भारत में हुई।
1: जस्टिस आरबिनो माथी, उनकी पैदाइश भी आज ही के दिन यानी 20 जुलाई को सन 1955 में हुई। भारत की सुप्रीम कोर्ट की साबिक जज हैं। इससे कबल वो झारखंड हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस और मुदारिस हाई कोर्ट की जज के तौर पर भी खिदमत उन्होंने अपनी अंजाम दी है। मजीद वो महाराष्ट्र इंटरनेशनल लॉ यूनिवर्सिटी औरंगाबाद की चांसलर भी रहीं। अदलिया और कानून के मैदान में उनकी खिदमत को बहुत अहमियत हासिल है। उनकी पैदाइश भी आज ही के दिन हुई, 20 जुलाई सन 1955 को।
3: वादी कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं में एक नई सुबह, एक नई ताजगी, पयामे सुबह।
4: आकाशवाणी श्रीनगर पेश कर रहा है एक जामिया लाइव शो पयामे सुबह,
3: जहां होंगी सेहत, साइंस और जिंदगी से जुड़ी मुफीद मालूमात
4: और साथ ही खेल, सकाफत और अवामी मसाइल पर बामाने गुफ्तगु। पयामे सुब
5: यारो वन यारो वन।
3: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक सिर्फ।
2: समीन, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वे 268।

8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर हमारा अगला ऐलान सुनिए। यह आकाशवाणी हुंद श्रीनगर स्टेशन समीन सुबह 10 बजे।

0: यहाँ डाउनटाउन में शुरू हुआ
1: जी।
0: आली कदल से, और उसके बाद हम शिफ्ट हुए ब्रेन निषाद साइड में।
1: जी।
0: मेरी पहली एजुकेशन तो यहीं पे हुई, और उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान।
1: जी।
0: दैट वाज वे बैक इन 1968। परहैप्स हमारा पहला ग्रुप था जो सैनिक स्कूल की तरफ गया, और वहाँ मैं ज़्यादा देर नहीं टिका। 72 में मैं वापस आया, वो अलग कहानी है।
1: जी।
0: और उसके बाद आई कंटिन्यूड माई स्टडीज़ हियर।
1: ओके।
0: गोगजीबाग में पब्लिक स्कूल था, वहाँ से देन इस्लामिक कॉलेज, उसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी। फिर मेरा रुझान टूरिज्म की तरफ इसलिए हुआ कि उन दिनों काफ़ी फॉरेनर्स आते थे।
1: अच्छा।
0: उन दिनों अरब्स आते थे, जर्मन्स आते थे, फ्रेंच आते थे, रशियंस, तो मेरा रुझान कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस की तरफ गया।
1: जी।
0: और अल्लाह ताला के फजल से प्रोफिशंसी हासिल की कश्मीर यूनिवर्सिटी से रशियन, अरबिक और फ्रेंच लैंग्वेज में, और उन दिनों में ये काफ़ी काम आया। लेकिन उसके बाद फॉरेनर्स का धीरे धीरे आना बंद हो गया, कम हो गया।
1: बिल्कुल।
0: फिर मैंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में स्टार्ट किया अपना करियर, और उसके बाद एयर इंडिया की एक प्रॉपर्टी यहाँ पर है, सेंटावर ग्रुप ऑफ होटल्स, वहाँ से फिर थोड़ा सा टाइम वहाँ 24 साल मैंने काम किया। उसके बाद JKTDC में भी काम किया, और उसके बाद मैं ऊटी चला गया, महाराजा ऑफ मैसूर की पैलेस है, समर पैलेस, वहाँ मैंने 3-4 साल काम किया। एंड देन वापस आके फिर अपनी ट्रैवल बिजनेस के साथ मैं मुंसलिक हो गया, और तब से अल्लाह ताला का फजल है बस उसी के साथ जुड़ा हुआ
1: जी,
0: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: बहुत काम किया है आपने होटल इंडस्ट्री में, टूरिज्म इंडस्ट्री में, एनवायरनमेंट के हवाले से काम किया है। तो आज का जो हमारा थीम होता है, आज मंडे है, आज हम एनवायरनमेंट के हवाले से ही बात करते हैं, और आज जो हमने मौजू चुना है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में माहौलियात को दरपेश जो चैलेंजेस है उस हवाले से। सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से क्या मुराद है?
0: देखिए, एनवायरनमेंट से मुराद सबसे पहले तो ये है कि जो कुछ हमारे इर्द गिर्द है, ये हमारा एनवायरनमेंट है।
1: बिल्कुल।
0: दिस इज अ जनरल डेफिनेशन है ये। हाउएवर, जिस एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं उसमें हमारा एयर है, हमारी सराउंडिंग माउंटेन्स हैं, हमारा रोज़मर्रा का जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, नेचर से मुंसलिक जितना कुछ है वो हम नॉर्मली हम एनवायरनमेंट के साथ जोड़ते हैं।
1: बिल्कुल। और एनवायरनमेंट में जो जो मुश्किलें दरपेश हैं, जो जो चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं, न कि जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उस हवाले से हम अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नगमा चलाते हैं।

0: जी हाँ सामीन, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 203.5 MHz, मीडियम वेव 268.81 मीटर। लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम इस वक्त जारी है। पयाम सुबह हमारे जो मेहमान हैं वो है पीरजादा फयाज अहमद। आप टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री प्रोफेशनल हैं, आप कश्मीर के एक्टिव टूरिज्म प्रमोशन एक्टिविस्ट हैं, आप फाउंडर मेंबर हैं EPG यानी एनवायरनमेंट पॉलिसी ग्रुप के। इसके अलावा भी जो भी इन्होंने कारकर्दगी है की है वो आप तक इन्होंने खुद पहुंचाई। और अब जो सवाल मेरे जहन में आ रहा है फयाज साहब वो ये है कि आज के दौर में अगर हम माहौल की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, तो सबसे बड़े जो खतरात हैं वो कौन से हैं?
1: देखिए जब हम एनवायरनमेंट की बात करें तो इसमें हमारे सामने तीन चार चीजें आती हैं
0: जी।
1: एक हवा है, पानी है, सॉइल है,
0: बिल्कुल,
1: फॉरेस्ट्स हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, और साथ साथ में उन फॉरेस्ट्स में रहने वाले एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सनलाइट है, वेदर है, ये सारा हम इसी जुमरे में लाएंगे एनवायरनमेंट के। अब इसके साथ साथ में कुछ चैलेंजेस हमें जो है वो मैन मेड भी हैं।
0: बिल्कुल,
1: देखिए जो रोजमर्रा जो हमारी चेंजेस हो रही हैं ओवरऑल ग्लोबल, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिहाज से नहीं बल्कि ग्लोबल चेंजेस हो रही हैं, उसमें एक चैलेंज हमारे पास है मैनमेड चैलेंज। मैनमेड चैलेंज से मेरा मतलब ये है कि हम सड़कें बना रहे हैं और सड़कें बनाने के लिए हम पेड़ काट रहे हैं,
0: बिल्कुल,
1: हम जो फॉरेस्ट एरियाज है उनको काट के ले जा रहे हैं सड़कें, कंक्रीट बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं हर जगह,
0: बिल्कुल,
1: डेवलपमेंट ठीक है, मैं डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, डेवलपमेंट तो होनी है
0: जी,
1: मगर ये बिल्डिंग्स जो हैं ये ऐसी बिल्डिंग्स होनी चाहिए या ऐसी कंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए जो एनवायरनमेंट के साथ मैच करें। अब जब हमने कंक्रीटाइजेशन किया
0: जी जी,
1: तो वो हमें फायदा पहुंचाने के बदले नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद आप देख लीजिए इंडस्ट्रियल कितना ग्रोथ हो रहा है और उस इंडस्ट्रीज के ग्रो होने से जगह जगह पे जो हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज भी बढ़ रहे हैं
0: जी जी,
1: और ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। अच्छा, उसके बाद जो हमारी कल्चरल चेंजेस आई हैं वक्त के साथ साथ, लोगों के रहन

0: में चेंज आ रही है, रोगों के आने जाने में चेंजेस आ रही हैं, इन सब का इफेक्ट इन्वायरमेंट में ही पड़ता है और ये सारी हमारी ऐसी चैलेंजेस हैं जिनसे हमें मुकाबला करना है।
1: बिल्कुल, अब अगर हम इस दौर की बात कर रहे हैं तो तरक्की याफ्ता दौर है, हम चाहते हैं कि हम डे बाय डे तरक्की करें, डेवलपमेंट हो हर एक चीज़ में, इंडस्ट्रीज बने, तो ये सब होने के बावजूद हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को बचाएं? जैसे आपने कहा कि रोड्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो इसके बरक्स हमें क्या करना चाहिए फिर?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्लानिंग, जो हमारी हमारे प्लानर्स हैं उनको इस तरीके से प्लान करना चाहिए कि जो भी हमारे इन किस्म के चैलेंजेस आ रहे हैं उनका हम सदभाव करें। अगर 100% नहीं हो मगर कुछ हद तक उसमें कंट्रोल हो। अब आप यही देख लीजिए, अभी हमारी इन दिनों पिछले कई दिनों से इरेटिक बारिशें हो रही है, कभी तेज हो रही है, कभी हल्की हो रही है, कभी बिल्कुल बंद हो जाती है,
1: बिल्कुल
0: है ना। और आप देख लीजिए जगह जगह पे पानी जमा हो जाता है। अगर यही प्लानिंग में ड्रेनेज का प्रॉपर इंतजाम हो तो ड्रेनेज भी ठीक से रहेगा, लोग अच्छी तरह आ जाएंगे। जो बिल्डिंग्स हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की तरफ, कंक्रीट बिल्डिंग्स की तरफ जा रहे हैं, अगर वो एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स हो तो इम्पैक्ट कम होगा। एक स्टडी आई थी कि जो ग्लोबल हीटिंग हो रही है, देखिए हम देखते हैं कि ग्लेशियर्स और बाकी चीजें ये
1: पिघल रही
0: खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, एंटार्क्टिका में भी आप देख लीजिए वहां से भी हो रही है, और जब वो खत्म हो रहे हैं उसकी वजह से पानी की सतह बढ़ रही है। आपको मतलब ये जानकारी दूं मैं कि कई ऐसे आइलैंड्स हैं इस दुनिया में जो अब या तो खत्म हो चुके हैं या धीरे धीरे खत्म हो रही हैं क्योंकि पानी का लेवल वहां बढ़ रहा है। अंडमान निकोबार में यहाँ पे वहां मैं पढ़ रहा था, वहां भी कुछ ऐसे आइलैंड्स को खतरा है, पानी राइज हो चुका है और वहां की जो आबादी है वो वहां से शिफ्ट हो चुकी है। तो इन चीजों की तरफ हमें पहले ध्यान देना है। और जैसे एमिशंस जो हो रही हैं उसको देखना है हमें कि वो एमिशंस कैसे कम हो जाए। अब आप देख लीजिए कि जो व्हीकल्स है, द नंबर ऑफ व्हीकल्स इस वक्त हैं वो बढ़ रहा है, और व्हीकल्स के बढ़ने के साथ साथ है हमारी एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी बढ़ रही हैं, स्मोक ज़्यादा बढ़ रहा है। एक जगह मैंने पढ़ा था, हमारी पूरी दुनिया में ऐसा है कि टिन रूफ है, जो टिन रूफ है इस पर भी स्टडी हुई है कि ये भी ऐड कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग। जो सनलाइट्स आ जाती हैं वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वो टिन से जो गर्म होके वापस चली जाती हैं, एब्जॉर्ब नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से जो जनरल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। और इसी के साथ साथ में कई ऐसे वाकयात होते हैं कि ऑयल बर्निंग हो जाती है, वो भी एक रीज़न है। और उसके बाद आप देख लीजिए इन वजहों से कई बीमारियों का भी
1: सामना
0: करना पड़ता है हमें, जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स यहाँ पे काफ़ी हैं और कई तरह की हेल्थ इश्यूज़ हमारे सामने आ रहे हैं जो पहले नहीं थे। तो ये कंटामिनेटेड वाटर्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो एडिंग टू द लोकल हेल्थ। ये हमारी जो मुकाबला करना है इन चीज़ों का वो सरकार और हमारी जो सोसाइटी है दोनों को मिलके करना है। अनफॉर्चुनेटली ये है कि जितनी भी बिल्डिंग्स बढ़ रही हैं अब कमर्शियल बिल्डिंग्स की तरह हमारा ज़्यादा ध्यान हो गया है, और कमर्शियल बिल्डिंग्स में जो फॉरेस्ट्स हैं उनको बेदर्दी से काटा जा रहा है। फॉरेस्ट के कटने से ऑक्सीजन की लेवल हमारी कम हो रही है, जिससे अगेन जो आम इंसान है उसकी सेहत पे असर पड़ रहा है। तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है हमें, इनको कंट्रोल में लाना है हमें। दूसरा एक और जो चैलेंज और जिस चीज़ का हम सामना कर रहे हैं

0: है वो है प्लास्टिक,
1: जी
0: पॉलीथीन प्लास्टिक। तो उसके लिए जो है, जैसे ही वो ज़मीन में चला जाता है, प्लास्टिक हमने यूज़ किया, वन टाइम यूज़ किया, हमने फेंक दिया उसको, उसका सही अभी तक कोई प्रॉपर
1: मुतबादल नहीं
0: ऐसा
1: निकला।
0: मुतबादल ना निकला है, और ना ही उसको ख़त्म करने का तरीका अभी तक निकला है। तो आम तरीके में हम ऐसे उसको फेंक देते हैं, वो ज़मीन में चला जाता है, वो सालों साल वहीं पे रहेगा। उसकी वजह से वो ज़मीन बंजर हो जाती है। ज़मीन बंजर हो गई तो हमारी प्रोडक्शन कम हो जाती है, और प्रोडक्शन कम हो गई तो हम और मजबूर हो जाते हैं बाहर से कुछ लाने के लिए। और अब तो कंटेमिनेटेड आइटम्स सारी आ रही हैं हमारे, जिसकी वजह से बीमारियां और बढ़ रही हैं।
1: जी
0: तो इन चीज़ों का मुकाबला तो हम सबको एक साथ करना है। सिर्फ हम सरकार को दोष दें, ये गलत है। सबसे पहले हम अपने आप को ही देखें कि हम कैसे इसको, इससे निपट लें, इन चीज़ों से कैसे निपट लें। ये हमारा काम पहले है, उसके बाद सरकार का है।
1: सही कहा आपने। हम ये कह सकते हैं कि अगर सरकार कोई प्लानिंग करती है, कहीं पर कंस्ट्रक्शन करना है, तो इस हिसाब से भी देखा जाए कि वहाँ पर प्लांटेशन कितनी है। अगर उस वजह से, हमारी कंस्ट्रक्शन से प्लांटेशन डैमेज हो रही है या प्लांटेशन को हमें ख़त्म करना पड़ रहा है, तो हमें कुछ इस तरह का प्लान बनाना होगा कि ये प्लांटेशन हम और करें। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि नई नई बिल्डिंगें कायम हो, नया कुछ बने, तो इसके साथ साथ हमें प्लांटेशन का भी ख्याल रखना पड़ेगा ताकि हम इस एनवायरनमेंट को मज़ीद ख़राब ना करें। और प्लास्टिक की बात भी हुई, और प्लास्टिक कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नगमा।

0: आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन प्रोग्राम पयाम सुबह लाइव इंटरैक्टिव शो। हमारे मेहमान हैं पीरजादा फयाज अहमद। फयाज साहब, बात हो रही थी प्लास्टिक की
1: जी।
0: जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ गलबा पाया जाता है प्लास्टिक का। हम बॉटल साथ लेते हैं, यहाँ से हम बहुत ही प्यार से मोहब्बत से हम लोगों को बुलाते हैं हम कि आप यहाँ आए, कश्मीर आए, यहाँ के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं। तो लेकिन यहाँ हमारा जो सिल्क सेंस है वो कुछ काम नहीं करता है। हम बोटल्स लेते हैं, हम रैपर्स लेते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर जाते हैं, फिर वहीं वो सब कुछ कूड़ा कर छोड़ के आते हैं। आप टूरिज़म के एक्सपर्ट हैं
1: जी,
0: तो क्या चैलेंजेस सामने हैं?
1: देखिए, जब हम टूरिस्ट को लाते हैं, टूरिस्ट के साथ साथ हमारे अपने लोग भी इन एक्सकर्शन की जगह एक्सकर्शन के लिए जाते हैं, इन जगहों पर जाते हैं।
0: जी जी जी जी।
1: और ये आदत खाली टूरिस्ट पे नहीं हम लाद सकते, हम खुद भी जिम्मेवार हैं। कई बार मैं जब हम गाड़ी में जा रहे होते, आगे वाली गाड़ी में अगर बच्चे हों या कोई हो, तो कहीं से कोई चिप्स का पैकेट बाहर, खाली पैकेट बाहर फेंकेंगे, कहीं बॉटल, पानी की बॉटल कहीं बाहर फेंक देंगे। तो ये इंसानों की, मैं जनरलाइज करूंगा इनको, कि इंसानों की इशू है, उनको सिविक सेंस की ये, इसमें हमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमें उनको एजुकेशन देनी है, और एजुकेशन लोकल लेवल पे भी है और टूरिस्ट लेवल पे भी है। अब जितने भी लोग टूरिस्ट को लाने के लिए जाते हैं या यहाँ पे आते हैं, चाहे ट्रैवल एजेंट्स हों या होटेलियर्स हों, हाउस बोट ओनर्स हैं, जो एकोमोडेशन सेक्टर है, उन्हें भी इन चीज़ों की तरफ ध्यान रखना है। उनको जगह जगह पे इन टूरिस्ट को समझाना पड़ेगा कि भाई आपका जो वेस्ट निकलेगा वहाँ पे बास्केट पड़ी हुई है, उस बास्केट में डाल दीजिए। ये एक आदत बनानी है। दूसरी बात ये है कि एनफोर्समेंट करनी है। मैंने, मेरा पर्सनली ये मुशाहदा है कि जब तक हम यहाँ पर कोई भी चीज़ एनफोर्स न करें, वो चीज़ चलती नहीं है। और उसके लिए जब हम टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाते हैं, जगह जगह अगर हमारे डस्टबिन्स हों और साइनेजेस हों, और इस टूरिस्ट को समझाने के लिए हमें जगह जगह हमें बताना पड़ेगा उनको कि भाई आपका जो वेस्ट निकल रहा है, आपकी प्लास्टिक बॉटल है, आपका जो दाल खाई है आपके, उसका रैपर है, उसको कहीं आप पहले जमा कर लीजिए अपने पास, उसके बाद जहां डस्टबिन देखा वहां आप वो डाल दीजिए।
0: सही बात है, मगर तोष्टु ना बासना कि ये पाइजेस गोड पान कारण डेली यम सत यम सत लोकल नफर ये चीज कर के सुकर पनिस एनवायरनमेंट पान हिफाजत तेली रोज ना तिमन तिम ति वछन कि यम क्या छ करना यम सत तिम छ वछन योर छ वान तिम छ वछन एक नफरन चे त्रेश बोतल दिसन सड़के पर दरिथन बे उस गर्ड उस चलान गर्ड तेज चलान ट्रैफिक जैमिंग ते उस मगर अथ म जतुन रैपर सड़के पर दरि हु छ पत किन आसा चाहे उस पत किन गाड़ी म आसा ब्रहमि गाड़ी म आसा सु छ वछन तेमिस म जतु छ ती चीज डेवलप गसम तो गोड
1: ماحولیاتس کن دیت دمو پنہ نوی جنریشن تو اس کیا دمو تم اس دیت نہ تم کہین مگر ون تن ثیر گو نو ون تمہن پن وات مے گرس مز مے چھ بچہ مائی گرینڈ چلڈرن آر دیئر بلیو می اگر زن تم چاکلیٹ کھین تم تلن یہ کور تو تراؤن ڈسٹبنس مز یہ گرس مز تم
0: تربیت
1: تمہ پتہ سکول سکولس مز ٹیچرن ہن ذمہ واری تمن یمن بچن یم سات تم اکوٹ آسان کیازی اکھ چیز چھ یلی اکھ بچہ کان چیز غلط کری بیاکھ تہ کری تمس چھنہ سہ تیوت ذہن بڑیومت ونہ سہ چھ دپان

0: मजबूर है। एक आदमी जो जिसकी टांग कटी हुई है और वो भीख मांग रहा है, वो मोहताज है सिर्फ खाने पीने का।
1: जी जी
0: हम जिंदा रहने के लिए मोहताज हैं, बिकॉज वी नीड ऑक्सीजन।
1: ओके,
0: ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगा?
1: जब पेड़ पौधे होंगे।
0: जी, पेड़ पौधे होंगे। अगर वो पेड़ पौधे हम खत्म करें तो इंसान कहाँ बचेगा?
1: सही बात है, बिल्कुल।
0: इंसान अपनी जिंदगी में देखिए 3 पेड़ कम से कम इसको होने चाहिए।
1: एक इंसान को जिंदा रहने के लिए 3 पेड़ जरूरी है।
0: अब ये 3 पेड़ मुझे पहले खुद अपने लगाने हैं, उसके बाद मेरे जो फैमिली मेंबर्स, अगर मैं 5
1: उनके भी 3-3 लगाने हैं,
0: उनके भी लगाने हैं, तो क्या मैं वो जिम्मेवारी पूरी कर रहा हूँ?
1: क्या बात है।
0: मेरी ये है मेरी बका, मेरी जिंदगी, मेरी फैमिली की जिंदगी के लिए जरूरी है ये, तो क्या मैं वो जिम्मेवारी पूरी कर रहा हूँ? हमें ये इंट्रोस्पेक्शन करना है अपने आप से। उसके बरकस जो मैंने पहले भी बात कही, ग्रीड, लोग हैं जो जंगल काट रहे हैं, ठीक है, पेड़ अपनी मौत भी मरता है।
1: सही बात है।
0: सड़ गया, कोई वजह होगी, गिर गया, वो पेड़ हम कंस्ट्रक्शंस की तरफ लगा सकते हैं। उसके लिए हमारा गवर्नमेंट का एक बाजाबता डिपार्टमेंट भी है, डिपार्टमेंट है, और लेकिन उसके बावजूद हम इतने इसमें गिर चुके हैं, इतना ग्रीड में धस चुके हैं कि हम उन पेड़ों को भी देख रहे हैं जो बिल्कुल जिंदा हैं, जो हमें जिंदगी दे रहे हैं,
1: हम उन्हें काट रहे हैं,
0: हम उन्हें काट रहे हैं, तो हम जिंदगियों को खत्म कर रहे हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा, इसके तरफ लोगों का ध्यान देना पड़ेगा, और उसमें आप जैसे दूरदर्शन हो या बाकी जो
1: रेडियो
0: रेडियो या मीडिया है, उनकी बड़ी जिम्मेवारी आती है, उनको ये प्रोपोगेट करना है। एनजीओ, स्कूल्स वगैरह वो प्रोग्राम्स करें, वो कर रहे हैं, आपकी जिम्मेवारी भी कम नहीं है। और जहां जहां ऐसा कुछ हो रहा है, जहां डिफॉरेस्ट्रेशन हो रही है, वहां आपको नए सिरे से पेड़ लगाने पड़ेंगे। एक स्टडी आई थी कि जहां एक पेड़ कटा वहां 3 और लगाओ, मगर उस पेड़ को बड़ा होने में कितना वक्त लगेगा?
1: बिल्कुल, सालों लग जाते हैं।
0: आपने जो पेड़ काटा वो तो जिंदा था, वो तो शायद पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बचा रहा था। अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम रखा है हमारे लिए, लेकिन हम अपनी ही टांगे खुद काट रहे हैं।
1: बिल्कुल। अब एक और चीज है यहाँ पे कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी है। हम अक्सर सुनते हैं कि फलानी जगह पर भालू आया, उसने फलानी को काटा, यहाँ से चीता आया, तो ये क्या है?
0: बदकिस्मती की बात है कि हम लोग वी हैव इंट्रूडेड इनटू द टेरिटरी ऑफ दीज एनिमल्स। जहाँ पे ये लोग ये एनिमल्स रहते थे, हम उन एरियाज में घुस गए हैं रहने के लिए, या हमने होटल बनाए वहाँ पे, या हमने कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए वहाँ पे उनके घरों के अंदर घुस गए हम। जब वो बेघर हो गए, उनको कहीं तो आना है,
1: सही,
0: वो हमारे घरों में आ जाते हैं, वो हमारे एरियाज में आ जाते हैं, और यही वजह है कि उनका जो खाना था वो खाना वहाँ पे कम हो गया उनका, तो वो खाना ढूंढने के उनको भी जिंदा रहना है, वो खाना ढूंढने के लिए बस्तियों में आ जाते हैं, और बस्तियों में बाद में जो सामने आया उस पर हमला हो जाता है। तो उसकी तरफ भी उसकी तरफ हमें भी ध्यान देना है, और सरकार का भी काम है। अगर प्रॉपर फेंसिंग हो जाए, फॉरेस्ट एरियाज डिमार्केट हो जाए, और उसके बाद एक एनफोर्समेंट हो, नजर हो कि भाई कहीं कोई गलत तो नहीं कर रहा है, कोई वहां तो नहीं जा रहा है जो उसका एरिया नहीं है, तो इस चीज ये वजह ये तो बढ़ता रहेगा जब तक कि हम इस पर कंट्रोल ना करें। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहेगा, आप देख लीजिए। और दूसरी ये दूसरा इसमें एक और इशू ये है कि जो एनिमल्स हैं जो वो रेयर बन रहे हैं, हांगुल
1: नायाब हो रहे हैं,
0: वो हांगुल खत्म हो रहा धीरे धीरे। हम कोशिश कर रहे हैं उनको बचाने के लिए, उनका हैबिटेट, उनका रहने की जगह जो है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी उसमें लगी हुई है, लोकल्स भी लगे हुए हैं, एनजीओज लगे हुए हैं, तो लेकिन सबसे

0: ये तो कश्मीर है, इसकी अदा का क्या कहना। तो इस अदा को हमें खुद भी बचाना है, यहाँ के माहौल की तरफ ध्यान देना है। गवर्नमेंट अपने लेवल पर कर रही है और आम शहरी को, एक आम इंसान को अपने लेवल पर भी हाथ बढ़ाने चाहिए। ये हमारी एक मुश्तरक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। और माहौल के हवाले से ही बात हो रही है, हमारे एक्सपर्ट हैं पीरज़ादा फयाज़ अहमद साहब। तो फयाज़ साहब, शजरकारी की बात हुई थी, प्लांटेशन की, क्या वाकई में शजरकारी मुहिमात माहौल की बेहतरी में मौसर साबित होती हैं? और अगर सही है ये बात तो कैसे?
1: यकीनन, यकीनन। हम इंसान, जानवर, मजबूर लोग हैं,

0: go for qualitative tourism, quality. क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना है हमें. क्वांटिटी में जो जब हम क्वालिटी देखेंगे, जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको फिर अवेयरनेस भी देनी है. मी एज अ ट्रैवल एजेंट जब मैं उनको अपना प्रोग्राम देता हूँ, अपना पैकेज बेचता हूँ, आई शुड मेंशन कि भाई यहाँ के कल्चर का ख्याल रखिए, यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ के माहौल का भी ख्याल रखिए आप.
1: बिल्कुल,
0: ये चीज़ें मुझे पहले उसको पढ़ानी पड़ेंगी. उसके बाद जैसा मैंने कहा कि जगह जगह साइनेजेस हों, बाकी चीज़ें हों. सो टूरिज्म बड़े, बट इट हैज़ टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल. द पीपल हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, द टूरिस्ट्स हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. उनके लिए वर्कशॉप्स करनी है, उनको समझाना है. अब जैसे पोनी वाला है कोई, उसने बिठाया वहाँ पे एक टूरिस्ट को बिठाया, घोड़े पे बिठाया उसने, उसको ये देखना है कि ये कहीं कचरा नीचे ना फेंके, अपने एक एक थैली रखे और उस थैली में वो जमा करें. होटल्स का यहाँ पर हमारे एकोमोडेशन सेक्टर में एक रैम्पेंट ये हो रहा है, कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं. माहौलियात को देखना है, जहाँ ठीक है वहाँ आप परमिशन दे दें, विदाउट परमिशन ना हो. और इट शुड जेल विद द एनवायरनमेंट. अभी देख लीजिए हम गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, इन जगहों में इतना प्रेशर बढ़ गया है कि मैं तहसीन अदा करना चाहता हूँ सीईओ गुलमर्ग का कि उन्होंने ऑड इवन का एक प्रोग्राम दिया है कि गुलमर्ग में ऑड जिसकी गाड़ी का नंबर ऑड हो वो फलाना दिन आएगा, जिसकी गाड़ी का नंबर इवन हो तो उससे कम हो जाएगा. कैरिंग कैपेसिटी स्टडीज करनी पड़ेंगी हमें इन जगहों की कि कितना कैरिंग कैपेसिटी कितनी है उस जगह की. वो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर जो ये कर सकते हैं, और उसके बाद वी हैव टू स्टिक टू दैट. प्लस जो नई नई ऐसी ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ वो खोलनी है, वी हैव टू डाइवर्ट सम टूरिस्ट टू दैट प्लेस ऑल्सो. इको टूरिज्म की तरफ हमें ध्यान देना है ताकि वहाँ का जो रहने वाला है उसकी भी आमदनी बढ़े. होम स्टेज उन एरियाज में हमें चाहिए जहाँ पर नॉर्मल होटल ना हो. जिस जगह पे आपके पास प्रॉपर एकोमोडेशन है वहाँ होम स्टे की जरूरत नहीं है.
1: बिल्कुल.
0: लेकिन उस जगह पे जहाँ होटल एकोमोडेशन नहीं है वहाँ आप होम स्टे उनको दे दीजिए ताकि उन लोगों का भी थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट हो जाए,
1: सही बात,
0: उनकी आमदनी बढ़े. और उसके साथ ही जो वो लोग हैं वो खुद गाइड करें उनको. हम रिसेंटली एक कुलगाम में एक जगह गए थे, पांचन पथरी. वहाँ पर इट्स एन अनटच्ड एरिया, ब्यूटीफुल एरिया है. उसको अब टूरिस्ट मैप पर लाना है. लेकिन टूरिस्ट मैप पर लाने से पहले हमें वहाँ पर कुछ एहतियात लेनी है. वहाँ बना रहे हैं, हमारी वहाँ पे मीटिंग हो रही थी लोगों के साथ भी, हमने वहाँ किया, उनको समझाया. लेकिन वहाँ पे आप देख लीजिए, ब्रनवार है, यहाँ पे 100,000 लोग पीछे गए हैं एक दिन में. अनटच्ड एरिया है, दुधपथरी है, गुरेज है. अब देख लीजिए रिसेंटली अभी गुरेज में कल ही दिखा रहे थे, वहाँ भी लैंडस्लाइड हो गई. डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही लैंडस्लाइड हो जाती है. जब सॉइल कमज़ोर हो गई, रूट्स ने उनको जकड़ के नहीं रखा, उसकी वजह से वो हुई. जो जो अब बैरन एरियाज हैं वहाँ पे एफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी, उसकी तरफ हमें भी ध्यान देना है. और इन एरियाज में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिस्ट के लिए बनाना पड़ेगा, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एनवायरनमेंट के लायक हो.
1: बिल्कुल, जिससे एनवायरनमेंट मुतासिर ना हो.
0: एंटी एनवायरनमेंट एक्टिविटीज को हमें बिल्कुल नहीं करने देना है. और बाकी टूरिज्म तो हमारा ए सॉर्ट ऑफ बैकबोन है.
1: बिल्कुल.
0: और उसकी इनकम जो है इट शुड डायरेक्टली कम टू द लोवेस्ट सेलर. कोई फ्रूट वाला है, उसके पास भी आमदनी आ जाती है डायरेक्ट. टूरिस्ट शाम को निकला, वहाँ से कुछ फ्रूट लिए उसने,
1: सही बात.
0: तो ये वो इंडस्ट्री है जो पैसा डायरेक्ट बाहर से आम आदमी के पास आ जाता है. एज

0: कंपेयर टू एनी अदर इंडस्ट्री। तो इन चीज़ों की इनकी तरफ ध्यान हमें देना है। फिर वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ भी ध्यान देना है, वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे हम सेग्रीगेट करें अपने घर से, और जो लिक्विड वेस्ट निकलता है एक पिट बनाइए, उस पिट में डालते जाइए आप, और वो थोड़ी देर के बाद, कुछ ही टाइम के बाद वो मैन्योर बन जाएगा। आप अगर थोड़ी बहुत ज़मीन है आपकी सब्जी की, उसी में काम आएगा वो।
1: बिल्कुल,
0: तो ये एहसास हमें आना है।
1: बहुत ही अच्छी बातें और बहुत ही अच्छी मैसेज आपकी तरफ से, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। पीरजादा फयाज अहमद साहब, आप सुबह सुबह हमारे कहने पर यहाँ आए और इतनी अच्छी बातें हमारे सामने तक पहुँचाई। इंशाल्लाह मौका मिला तो आगे भी आपके साथ बात होगी। फिलहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ चाहता है, तो हमें इजाज़त लेनी होगी। और सामिन आपको बताना चाहेंगे कि प्रोग्राम का वक्त अब पयाम इस प्रोग्राम का वक्त अब मुकम्मल हुआ चाहता है। आगे का जो ट्रांसमिशन है आप वो फहमीदा के साथ सुनेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे दोबारा इंशाल्लाह अगर जिंदगानी रही। जब तक के लिए आपका हमारा हम सबका अल्लाह हामी और नासिर।
0: शुक्रिया।
2: हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है, मीडिया वेव 268.1 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज पर। समय 11:30 हुए हैं, हमारा अगला ऐलान सुनिए। ये आकाशवाणी श्रीनगर समीन का 75:53 सफेद वली बोजो छाकर तो रो पेशकरण सुहेल फयाज शिलवत्ती हिंद से थी वली बोजो मनीष कलामी शमस फकीर।

0: Սամինտե սյուչակր դրուպոսան, պեշես կրան սուհել վայաշլ վետ սըթի, մնիշ բուզուտայի կլամիշը մսվխիր, չաղաշվանի սրինգր սոնդայի մալան բուզիու։ Եյ աղաշվանի կա սրինգր ստիշն հե, Սամինտին կե բարվժնվալ է, պեշ աղաշվանի դլի սե խբրի։
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले में सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले सदस्यों ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की बैठक 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि जब दोनों उत्पादक होते हैं तो इससे राष्ट्र का कल्याण और सभी जीवों की सुख शांति सुनिश्चित होती है।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की वैश्विक छवि को सार्वभौमिक मान्यता और स्वीकृति मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रवासी भारतीयों से भी

0: मुलाकात करेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं के साहस और दृढ़ता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा अपने साहस, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम के बल पर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं और यही विकासशील भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले 2 दिन अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 की जीत दिलाई। और घरेलू शेयर बाजार सूचकांक लगभग 0.7% की गिरावट के साथ आज कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The monsoon session of Parliament began today when the Lok Sabha met at 11 a.m. The House paid tributes to 6 of its former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. When the Speaker tried to take up the question hour, the opposition members, including from Congress and Samajwadi Party, raised the issue of paper leak of NEET examination. Mr. Birla urged the opposition to cooperate in running the house and maintain decorum, but the opposition members continued their protest, which led to adjournment of the Lok Sabha till 12 noon. In the Rajya Sabha, the proceedings began with the oath of the newly elected and re-elected members. During the proceedings, Leader of the Opposition Mallikarjun Kharge tried to raise the issue of NEET examination paper leak. However, due to uproar, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan adjourned the house till 12 noon. When the House met after the first adjournment at the noon, the opposition members continued their protests against NEET paper leak. The Rajya Sabha adjourned till 12:30 p.m. Prime Minister Narendra Modi has said that be it the monsoon or the monsoon session, if both are proactive, they prove to be highly productive. Speaking to the media before beginning of the monsoon session of Parliament, he said when both are productive, it leads to the welfare of the nation and the well-being of all living beings. Mr. Modi said it is a powerful

हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। समय 12:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं चंद फिल्मी नगमे में।

0: سمعت سيبوزان برنامج هلو بسمان اسوا پیشکس سمینا شاہ یہ آکاشوانی سری نگر سن دوی ملان بوزیو یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے سمین دن کے ایک بجنے والے ہیں لیے چلتے ہیں آپ کو آکاشوانی دلی خبروں کے لیے
1: نمسکار آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں جاگرتی شرما संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 25 दिन तक चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे को उठाया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोपहर में पहले स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा, जिसके बाद राज्यसभा को 2 बार स्थगित किया गया। अभी लोकसभा की कार्यवाही जारी है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया

0: इंडिया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। 3,74,000 से अधिक पांडुलिपियां पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
1: हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे, आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे।
0: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक, सेवा तीर्थ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट भी खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगे और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत भी करेंगी। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है, जिससे ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल कर अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वाल्सा विलियम्स। The monsoon session of Parliament began today when the Lok Sabha met at 11 a.m. The House paid tributes to 6 of its former members who passed away recently. They were Nadendra Bhaskara Rao, Omvati Devi, Sudhanshu Seal, Major General Bhuvan Chandra Khanduri, retired, K.P. Dhanapalan and Pyarelal Sankwar. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. When Lok Sabha Speaker Om Birla tried to take up the question hour, the opposition members, including from the Congress and Samajwadi Party, raised the issue of paper leak of NEET examination. Mr. Birla urged the opposition to cooperate in running the House and maintain decorum, but the opposition members continued their protest, which led to adjournment of the Lok Sabha till 12 noon. When the House met after the first adjournment at 12 noon, the opposition members continued their protest. Amid ruckus, the chair adjourned the House till 12:30 p.m. When the House met after the second adjournment at 12:30 p.m, the opposition members again continued with their protest over NEET paper leak issue. The presiding officer, Dilip Saikia, tried to take up the zero hour, but the opposition members continued their protest. Mr. Saikia said there should be healthy debate in the House and people have sent their representatives to raise important issues. The opposition members did not pay heed to the

0: चंदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश कालिय जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शब्द तभी अमर होते हैं जब वे केवल लिखे नहीं जाते बल्कि जिए भी जाते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश काले इस सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
1: और बड़ोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का संदेश आया है। लिखते हैं,
2: नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प जानकारी प्रदान की, सुनकर हम अभिभूत हो गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख पुलों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी

0: मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
1: जी, सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
0: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
1: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं?
0: इसका उत्तर है साथियों, कंगारू के चार पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पांच पैरों से चल रहा हो। इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के पांच पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
1: जी, तो श्रोताओं अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
0: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पट्टियों पर पेंसिल नुमा नुकीले कील से लिखते थे, जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर यानी कीलों से लिखे हुए अक्षर।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं?
0: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं, जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
1: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
0: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओं, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
1: तो श्रोताओं अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।

0: देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
1: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
2: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। भला इसका क्या दोष है?
3: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
2: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो।
4: मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
5: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
6: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
4: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
6: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
4: क्यों दे दूं?
6: क्यों दे दो? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। भाई, इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
4: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
6: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
5: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
7: महाराज की जय हो,
8: महाराज की जय हो,
9: महाराज की जय हो।
5: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
10: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
6: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
10: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
4: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
10: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
4: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
6: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
4: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
10: महामंत्री।

0: समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
1: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
0: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
1: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
2: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
3: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा गाड़ी में बैठ कर
4: सिद्धार्थ को मिलना किसके पास जा रहा
1: है। कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
5: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
2: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
1: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
6: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
2: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
0: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूं कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
7: महाराज की जय हो,
8: महाराज की जय हो,
9: महाराज की जय हो।
10: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

0: प्रचोदयात्।
1: पौराणिक उपनिषद छांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है, परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए हैं। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि, अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहद अरण्यक उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम् असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरुपिता और शिष्य पुत्र के बीच।

पिता उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेतकेतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।

0: वत्स श्वेत केतु।
1: आज्ञात?
0: क्या तुम उस ज्ञान से अवगत हो जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं और जो हमें जानना आवश्यक है?

0: अर्थात मैं उस ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगा।
1: मैं समझाता हूं
0: जी।
2: उद्दालक श्वेत केतु को फूलों के एक उद्यान में ले जाते हैं।
1: श्वेत केतु।
0: जी पिताजी।
1: क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
0: हाँ हाँ तात।
1: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं?
0: नहीं तात।
1: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
0: जी तात, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
1: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है।
0: जी तात।
1: उसी ब्रह्म को तत्वमसि कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है।
0: जी।
1: उसी से उसका अनुभव होता है किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है।
0: जी पिताजी।
1: वो उससे दूर है, वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उस

0: वत्स श्वेत केतु।
1: जी तात,
0: क्या तुम जानते हो हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वो विद्यमान है?
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: राह फलतात।
1: वत्स, अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो।
0: जी पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
1: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
0: जी
1: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो?
0: अब नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
1: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है?
0: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
1: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, सिरो तथा विशाल बरगद वृक्ष का।

0: एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वम तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है। तत् त्वम् असि।
1: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि।
0: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो। श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: सामीन, आप समाप्त कर रहे थे NCERT का तैयार करदा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है।
6: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
5: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। समय 1:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं चंद फिल्मी नगमे में।

0: 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: स्पीकर मौसूफ ने जब सवालों के वक्फे की कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत अपोजिशन अरकान ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने का मामला उठाया। जनाब ओम बिरला ने अपोजिशन पर जोर दिया कि वह ऐवान का कामकाज चलाने में ताउन करें और ऐवान का वकार बरकरार रखें, लेकिन अपोजिशन अरकान ने अपना एहतजाज जारी रखा और लोकसभा की कार्रवाई दिन में 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इसके बाद जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो शोरगुल जारी रहा और ऐवान की कार्रवाई 12:30 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्रवाई नए मुंतखब और दोबारा मुंतखब किए गए अरकान की हलफबरदारी के साथ शुरू हुई। बाद में ऐवान के उन साबिक अरकान को खिराज अकीदत पेश किया गया जिनका पिछले इजलास के बाद इंतकाल हुआ है। अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने का मामला उठाने की कोशिश की, अलबत्ता शोरगुल के तनाजुर में राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने ऐवान की कार्रवाई दिन में 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो अपोजिशन अरकान ने नीट इम्तिहान मामले पर नारेबाजी शुरू कर दी और एहतजाज जारी रहने पर सदर नशी ने कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खा मानसून हो या मानसून इजलास, अगर ये दोनों सरगर्म रहते हैं तो ये इंतहाई मुफीद साबित होते हैं। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू होने से कबल मीडिया से बात करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जब दोनों ही समर आवर होते हैं तो इसके नतीजे में मुल्क की बहबूद और सभी जानदारों की भलाई की राह हमवार होती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये एक मजबूत पैगाम है कि मुल्क के नौजवानों की सलाहियत और उनकी उमंगें उतनी ही लामहदूद हैं जितना कि खुद खला है।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: जनाब मोदी ने कहा कि सिर्फ एक महीने के अरसे में मुल्क ने कई संगे मील और कई कामयाबियां हासिल की हैं जिससे हर शहरी फख्र से सरशार हो जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि खा ये कौमी मंजरनामा हो, बैन अल-अक़वामी प्लेटफॉर्म हो और अब हत्ता के खला में भी, भारत के लिए वाकई बड़े फख्र के लम्हात रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि मुख्तलिफ खित्तों में पूरी दुनिया को लगातार जंग के खतरे से तशवीश लाहक है। उन्होंने कहा कि मगरबी एशिया में महाज आराई से भारत जैसे मुल्कों को बड़े बुहरान का सामना है जो तवानाई के लिए दूसरे मुल्कों पर इन्हेसार करते हैं।
2: पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण भारत जैसे देश जो एनर्जी के लिए यूरोप पर डिपेंडेंट है, उनके लिए ये पश्चिम एशिया का युद्ध एक बहुत ही बड़ा संकट का कारण रहा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, यानी हर विषय में अनेक बाधाएं, अनेक संकट आए, उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कानून और इंसाफ महकमे के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया। इसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक 1956 के एक्ट में मजीद तरमीम करना है ताकि अदालत आलिया के जजों की तादाद मौजूदा के 33 से बढ़ाकर 37 की जा सके, जिसमें भारत के चीफ जस्टिस शामिल नहीं हैं। इस साल मई में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने के सिलसिले में एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। उत्तर प्रदेश सरकार की जानिब से तश्कील दी गई खसूसी जांच टीम एसआईटी ने राम मंदिर में मुबैना चढ़ावा चोरी केस में अपनी कार्रवाई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। ये रिपोर्ट एक मुहरबंद लिफाफे में भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली 3 जजों की बेंच को पेश की गई। अदालत आलिया आज इस मामले की समाअत करने वाली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू

0: आज जिसी नाव में मालदोवा की अपनी हमनसब माइया सांडो के साथ वफ सतह की बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया मालदोवा की पार्लियामेंट के सद इगोर गोरोसू से भी मुलाकात करेंगी और मालदोवा भारत पार्लिमानी दोस्ती ग्रुप के अरकान से बातचीत करेंगी। इसके अलावा वो एक तजारती फोरम से खिताब करेंगी और भारतीय बिरादरी के अरकान से मिलेंगी। किसी भारतीय सदर जमहूरिया का मालदोवा का यह पहला दौरा है। सदर जमहूरिया तीन मुल्कों मालदोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे पर हैं। मालदोवा के अपने दौरे के बाद सदर जमहूरिया दूसरे मरहले में कल शिमाली मकदूनिया पहुंचेंगी। किसी भारतीय सदर जमहूरिया का शिमाली मकदूनिया का भी यह पहला दौरा है। माहौलिया, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में आबोहवा की तब्दीली से मुतालिक अक्वाम मुत्तहदा फ्रेमवर्क कन्वेंशन के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी साइमन निस्टिल से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब यादव ने कहा कि मुलाकात के दौरान आबोहवा की तब्दीली की रोकथाम के तरीक़ेकार को अपनाने, टेक्नोलॉजी की मुंतकली, माहौलिया से मुतालिक मालियात जैसे मौजूद पर तवज्जो मरकूज की गई। ईरान और अमरीका ने लगातार 90 दिन एक दूसरे पर हमले किए हैं। कलीदी अहमियत की हामिल आबनाए हुरमुस के मामले पर कशीदगी में इजाफा हो रहा है। अमरीका ने जुनूब मगरबी ईरान में हुरमुज कस्बे को निशाना बनाया, जबकि उर्दुन, कुवैत और बहरीन में फिर से ईरान के हमले होने की इत्तला मिली है। ईरान की नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी ने एक मकामी अहलकार के हवाले से बताया है कि अमरीकी हमले की वजह से बूशहर सूबे में दश्ती काउंटी के इंतजामी मरकज हुरमुज के कुछ हिस्सों में बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। इत्तलात के मुताबिक जिन इलाकों को निशाना बनाया गया उनमें पासदारान इनकलाब की बहरी फोर्सेज से वाबस्ता फौजी ठिकाने शामिल हैं। उधर उर्दुन के सरकारी नशियात इदारे ने कहा है कि मुल्क के फिजाई दिफाई निजाम के जरिए ईरान से दागे गए तीन मिसाइलों को बीच में ही मार गिराया गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट का मौसूर इजलास शुरू हो गया है। अपोजिशन की हंगामाराई के तनाजुर में दोनों ऐवानों की कार्रवाई कई बार मुलतवी करना पड़ी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के मौसूर इजलास को मुफीद बनाए जाने पर जोर दिया है और कहा है कि इससे मुल्क की बहबूद की राह हमवार होगी। सुप्रीम कोर्ट में उन दरखास्तों की समाप्त होने वाली है जिनमें राम मंदिर चढ़ावे में हुर्दबुर्द के जाने के केस की तहकीकात की अपील की गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा के अपनी हमनसब के साथ वफ सतह की बातचीत करने वाली हैं और आबनाए हुरमुस के मामले पर अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई में तेजी आ गई है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Monsoon session of Parliament begins today. Both houses witness multiple adjournments amid opposition uproar. Prime Minister Narendra Modi calls for productive monsoon session of Parliament, says it will lead to welfare of the nation. Supreme Court to hear pleas seeking probe into Ram Temple donations theft case today. President Draupadi Murmu holds delegation level talks with her Moldovan counterpart Maia Sandu in Chisinau. And IMD issues red alert warning for heavy to very heavy rainfall over parts of Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. The monsoon session of Parliament began today. The Lok Sabha and the Rajya Sabha have been adjourned till 2 p.m. amid opposition protest over the NEET paper leak issue. When the House met after the third adjournment at 1 p.m, the opposition members continued with their protest over the NEET issue. Presiding Officer Dilip Saikia tried to take up the scheduled business, but the opposition members did not pay heed to the Chair's advice and continued with their protest. Amid the uproar, the Lok Sabha was adjourned till 2 p.m. Earlier, when the Lok Sabha met at 11 a.m, the House paid tributes to six of its former members who passed away recently. When the Speaker tried to take up the question hour, the opposition members, including from the Congress and the Samajwadi Party, raised the issue of paper leak of NEET examination. Mr. Birla urged the opposition to cooperate in running the House and maintain decorum, but the opposition members continued their protest, which led to adjournment of the Lok Sabha till 12 noon.
2: सदन के अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपरा

जय हिंद फौजी भाइयों। फौजी भाइयों, आज की निशस्त का प्रोग्राम लेकर मैं आपकी मेज़बान फहमीदा आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। आपकी दुआ से हम सब भी खैर आफियत से हैं। तो दोस्तों, रोज़ की तरह आज का प्रोग्राम भी हम लेकर आए हैं गीतों भरा, क्योंकि ये सफ़र हमारा गीतों भरा है। तो हम गीतों का ही इसमें इंतखाब करते हैं, कुछ खूबसूरत से प्यारे से नगमे आप तक पहुंचाते हैं, आपको सुनवाते हैं ऐसी मौसीकी जिसमें दिल के कई राज, दिल के कई रंग और जिंदगी के कई साज छुपे होते हैं। दोस्तों, हम हमेशा हर चीज़ का चुनाव करते हैं, चाहे जिंदगी के फैसले हो, रिश्ते हो या कोई चीज़। तो पहले हम देखते हैं, परखते हैं, चुनाव करते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को शामिल करते हैं। वैसे भी ही संगीत एक ऐसी चीज़ है जिसका हम हर मोड़ पे, हर ओकेजन पे, हर ऐसी ज़रूरत पे नगमों का हम इंतखाब करते हैं, जो हमारे दिल को भाते हैं, हमारे उस हालात से करते हैं। तो वैसे नगमे हम बहुत ही पसंद करते हैं और हम उन्हें अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाते हैं। तो दोस्तों, आज की निशस्त में ये सुनते हैं कुछ ऐसे ही नगमे जिन्होंने आज तक अपनी छाप हर एक के दिल पे बना रखी है।

जी फौजी भाइयों, कहते हैं मौसीकी की इस हसीन महफिल में जो हम इंतखाब करते हैं नगमों का, तो इंतखाब भी नहायत दिलकश होता है। दोस्तों, ये नगमे उन एहसासात की तर्जुमानी करते हैं जो कभी लफ्ज़ों में बयां नहीं हो पाते। उम्मीद है कि ये खूबसूरत सा इंतखाब आपके दिल को भी उतना ही पसंद आया जितना हमें। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं ये और एक लाजवाब सा नगमा।

जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंतखाब की। तो दोस्तों, हर नगमा अपने अंदर एक कहानी समोए होता है और हर कहानी कुछ अलग अलग रंगों की होती है। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक ऐसा इंतखाब जो यकीनन आपके दिल को छू जाए।

दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप नगमों को बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहते हैं मौसीकी एक ऐसी जुबां है जिसे समझने के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। कभी कोई धुन हमें ऐसी गलियों में ले जाती है, ऐसे गलियारों में, या कोई कभी नगमा किसी अपने की याद ताज़ा कर देता है, और कभी यही सुर जिंदगी की थकन को पल भर में दूर कर देते हैं। तो इसी खूबसूरत एहसास के साथ आइए अब हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं एक ऐसा इंतखाब जिसके बोल कुछ यूं हैं।

जी दोस्तों, उम्मीद है कि ये नगमा आपके दिल की धड़कनों के साथ हम आहंग जरूर हुआ होगा और आपके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखेर चुका हो। दोस्तों, कहते हैं मौसीकी सिर्फ सुरों का नाम नहीं बल्कि ये एहसासात की वो जुबां है जो दिल से निकलकर दिल तक पहुंचे। कुछ नगमे वक्त के साथ तो ज़रूर पुराने होते मगर इनकी खुशबू कभी मद्धम नहीं पड़ती। जब भी वो कानों में रस घोलती हैं, यादों की किताब के कई अवराक खुद ब खुद खुलने लगते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार मसरूफियात में अगर चंद लम्हे सुकून के नसीब हों तो वो अक्सर किसी खूबसूरत धुन, किसी मानूस आवाज़ और किसी लाजवाल नगमे की सूरत में ही मिलते हैं। यही तो मौसीकी का हुस्न है कि ये कभी चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देती है, कभी आँखों को नम कर देती है और कभी हमें उम्मीद और हौसले का नया पैगाम दे देती है। दोस्तों, हमारा ये म्यूज़िकल सफ़र भी इन्हीं खूबसूरत एहसासात का सफ़र है जहाँ हर नगमे एक नई कैफियत, एक नई याद और एक नई मुस्कुराहट अपने साथ लाता है। हमारी कोशिश यही है कि आपका हर लम्हा खुशगवार और मौसीकी का ये सफ़र आपके दिल में देर तक गूंजता रहे।

0: फौजी भाइयों, फिल्म मीनकों का ये सफर जारी है। हम पहले लेते हैं ये छोटा सा।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
0: दोस्तों, प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। दोस्तों, एक बार फिर दिल के दरीचे खोल दीजिए, अपने पसंदीदा गुलोकारों की आवाज़ों में छुपे जज्बात को महसूस कीजिए और इस हसीन महफल का लुत्फ उठाएं। दोस्तों, आज का एक और दिलकश इंतखाब है जो उम्मीद है ये नगमा आपकी यादों में एक नई रोशनी जगाएगा और आपके दिन को मज़ीद खूबसूरत बनाएगा। तो रहें हमारे साथ, क्योंकि अभी मौसीकी के इस सफ़र में बहुत सी खूबसूरत नगमे और दिल को छू लेने वाली बातें आपके मुंतज़िर हैं।

दोस्तों, कहते हैं ज़िंदगी की मसरूफ राहों में मौसीकी सुकून का एक हसी लम्हा है, तो इसी हसी लम्हे को हम मज़ीद इंतखाब के साथ इस सुकून भरे सफ़र को महसूस करते हैं और दिलकश इंतखाब पहुंचाते हैं। कुछ धुनें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि हर बार पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो दोस्तों, पेश खिदमत है ये इस नशस्त का ये आखिरी नगमा, जो शायद दिल अगर कुछ सुनना चाहे तो लफ्ज़ नहीं, कहते हैं दिल अगर कुछ सुनना चाहे तो लफ्ज़ नहीं नगमे बोलते हैं। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।

साथी दोस्तों, ये आखिरी इंतखाब था फिल्म सड़क से अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। दोस्तों, हर खूबसूरत महफिल की तरह एक आज की ये मौसीकी भरी शाम भी अपने अख्ताम को पहुंचती है, लेकिन उम्मीद है कि इन नगमों की खुशबू और इनकी मिठास देर तक आपके दिल में बाकी रहे। दोस्तों, अगर आज कोई गीत आपको किसी खूबसूरत याद तक ले गया, अपनी किसी को की कमी महसूस कराई, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आया, तो हमारी ये महफिल अपने मकसद में कामयाब है। दोस्तों, वक्त ने इजाज़त दी है तो फिर से आपसे होगी मुलाकात कुछ नए एहसासात, कुछ लाजवाब धुनों और कुछ दिलकश बातों के साथ। तब तक ज़िंदगी के हर लम्हे में खुशियों के रंग तलाश कीजिए, मोहब्बतें बांटते रहें और मौसीकी को अपने दिल की धड़कन बनाए रखें। तो मैं आपकी मेज़बान फहमीदा लेती हूँ आपसे इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। समीन 3:50 होने वाले हैं। अब पेश है हमारे यहाँ से खबरें।
1: आप ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं उमर मुख्तार। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास अपोजिशन मेंबरान की तरफ से शोरगुल के नतीजे में बार बार मुलतवी। स्पीकर ओम बिरला की मेंबरान को ऐवान का तकद्दुस बरकरार रखने की अपील। मुल्क में इस्लाहात की पॉलिसी के बाइस नौजवानों को नए मौके हासिल हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश और अचानक आई तुगियानी की वजह से पैदाशुदा सूरत हाल का लिया जायजा। वजीर आला का अनजान हुए अफराद के लवाकीन के हक में 6-6 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान। और फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन अर्जेंटीना को हराकर बन गया आलमी चैंपियन। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास आज से शुरू हो गया है। लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू हुई तो ऐवान ने इन 6 साबिक अरकान को खराज पेश किया जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है। इनमें नदनला भास्करा रॉय, ओमवती देवी, सुधांशु से, साबिक मैनेजर जनरल भवन चंद्र अखोड़ी, केपी धना पालन और प्यारे लाल शंखवार शामिल है। ऐवान में कतर के अमीर के वालिद शेख हमद बिन खलीफा अलसानी को भी खराज पेश किया गया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अलसानी ने भारत कतर ताल्लुकात को मुस्तकम बनाने में अहम रोल अदा किया। ऐवान के स्पीकर ने जब सवालों के वक्फे की कार्रवाई शुरू की तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत अपोजिशन मेंबरों ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने का मामला उठाया। ओम बिरला ने अपोजिशन पर जोर दिया कि वो ऐवान के कामकाज को चलाने में तआवुन करे और ऐवान का वकार बरकरार रखे। लेकिन अपोजिशन अरकान ने अपना एहतजाज जारी रखा और लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ी। इसके बाद जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो सूरतहाल में कोई तब्दीली न देखकर कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। उधर राज्यसभा की कार्रवाई नए मुंतखब और दोबारा मुंतखब किए गए अरकान की हलफबरदारी के साथ शुरू हुई। बाद में ऐवान के उन साबिक अरकान को खराज पेश किया गया जिनका पिछले इजलास के बाद इंतकाल हुआ है। अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने का मामला उठाने की कोशिश की। ताहम शोरगुल के तनाजुर में राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। दोबारा कार्रवाई शुरू होने के बाद जब अपोजिशन ने नाराबाजी शुरू की तो ऐवान के सदर नशीन ने दोबारा कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के आगाज में कहा कि जिस तरह अच्छी बारिश मुल्क के लिए फायदेमंद होती है इसी तरह अगर मॉनसून इजलास भी मस्बत और फ़ाल अंदाज में चलाया जाए तो इससे मुल्क और आवाम दोनों को फायदा पहुंचेगा। नामा निगारों से बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि इस बार मॉनसून और पार्लियामेंट का इजलास दोनों ही नतीजा खेज साबित होंगे। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर भारत की साख्त मुकम्मल तौर पर मजबूत हो रही है और दुनिया भारत की सलाहियत और नौजवानों की उमंगों को तस्लीम कर रहा है।
2: मानसून हो या मानसून सत्र अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी

0: सी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: वजीर अजम ने कहा कि इस्लाहत की पॉलिसी के बाइस नौजवानों को नए मौके हासिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली जदीद ट्रेन भी आवाम के लिए वक्फ की, जो दुनिया की तवील ट्रेन और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में शुमार की जाती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिशों, अचानक आए सैलाब और चट्टाने खिसकने की वजह से पैदा शुदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डोडा जिले में दो कीमती इंसानी जानों के जिया पर गहरे दुख और सदमे का इजहार करते हुए सोगवरान के साथ ताजियत की है। उन्होंने कहा कि मुतासर इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फौजी दस्ते हसास इलाकों में बचाव कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। एलजी ने कहा कि पूंछ, राजौरी, रियासी और उधमपुर की अहम राबता सड़कों को दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी बहाल करने का काम जंगी बुनियादों पर जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि मुतलका फील्ड टीमों को हिदायत दी गई कि वो रिहायशी मकानात और आवामी बुनियादी ढांचे को पहुंचे नुकसान का फौरी अंदाजा लगाकर रिपोर्ट पेश करे, ताकि मुतासरीन को जल्द से जल्द इमदाद फराहम की जा सके। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पूंछ अजला के उन अफराद के लवाकिन के हक में 6-6 लाख रुपए एक्सक्रेशा रिलीफ का ऐलान किया है, जो इन अजला में मूसलाधार बारिशों की वजह से जांबाक हुए हैं। वजीर ने अचानक आए सैलाब, लैंडस्लाइडिंग की वजह से जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि अगर जब कोई भी माली इमदाद इस नाकाबले तलाफी नुकसान का इजाला नहीं कर सकती है, तहम हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में मुतासर खानदानों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। इस इमदादी पैकेज में 4 लाख रुपए स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से जबकि 2 लाख रुपए चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से वाहगुजार किए जाएंगे। ये ऐलान वजीर आला ने कल शाम जम्मू में एक आला साथी जायजा मीटिंग की सदारत करने के बाद किया। जम्मू कश्मीर में आज भी मौसम नाखुशगवार रहा और बेशतर इलाकों में सुबह सवेरे से शदीद बारिशों की इतलात मौसूल हुई है। वादी के टूल में सुबह सवेरे हुई बारिशों के नतीजे में मामूलाती जिंदगी मुतासर हुई। श्रीनगर शहरा के बेशतर इलाकों में सड़कें जैराब आ गई हैं, जिसके बाद गाड़ियों की आमदरफ्त भी खलल पड़ा है। नासाजगार मौसम के पीछे नजर सालाना श्री अमरनाथ यात्रा को भी आज दूसरे दिन भी मुअत्तल रखा गया। इंतजामिया ने यात्रियों से अपील की कि वो मौसम में बेहतरी आने तक यात्रा कैंपों में ही कयाम करें। आज भी किसी यात्री को जम्मू से वादी की तरफ रवाना नहीं किया गया। यात्रा की बहाली का फैसला मौसम में बेहतरी आने के बाद ही लिया जाएगा। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। कानून साज असेंबली में अपोजिशन के लीडर सुनील शर्मा ने आज पूंछ और राजौरी अजला के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करने के दौरान मुतासर कुंभों से बातचीत की, जिस दौरान उन्हें मुतासर लोगों ने अपने अपने मसाइल और मुश्किलात से आगाह किया। उन्होंने जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि मुतासर कुंभों को बगैर किसी ताखीर के तमाम मुमकिन इमदाद बहम रखी जाए। सुनील शर्मा के हमरा मेम्बरान कानून साजिया श्याम लाल शर्मा और मोहन लाल के अलावा रविंदर रैना, शहनाज गनाई, गोपाल महाजन और जोरावर सिंह भी शामिल थे। अजमेर राजस्थान से ताल्लुक रखने वाली बनी अक्वामी शोहरत याफ्ता रनर और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सूफिया सोफी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4100 किलोमीटर का रेलिंग एक्सपेडिशन पूरा किया है। उन्होंने ये सोलो रन कन्याकुमारी से शुरू किया और वो आज सुबह श्रीनगर पहुंच गई। इस अहम कामयाबी के ताल्लुक से उन्होंने हमारे नुमाइंदे सोहेल भट्ट के साथ बात करते हुए कहा,
2: 2019 में मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी किया था और इस बार मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर रन किया है और अपना ही रिकॉर्ड मैंने 19 दिन कुछ घंटों से ब्रेक किया है, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और आज मैं श्रीनगर में हूँ और अभी भी वही वैसा ही है, लोगों की मेहमान नवाजी, उनका प्यार बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है और लोग बहुत सेल्फलेस सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। सिर्फ आपको देखते हैं कि आपको किसी मदद की जरूरत है, बहुत ही, और मेहमान नवाजी में कश्मीर का तो सबको ही पता है कि कोई जवाब नहीं है।
1: नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज नई दिल्ली में पार्टी के एक एहतजाजी प्रोग्राम की कयादत की। एहतजाज कर रहे पार्टी लीडरान और कारकुनान जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा कर रहे थे। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि इन्हें जंतर मंतर पर जाने से रोका गया। एहतजाजी मुजाहरे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरों के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा और सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर ने भी हिस्सा लिया। वादी के एक मारूफ रेडियो टेलीविजन अदाकार सजाद खान इंतकाल कर गए हैं। उन्होंने रेडियो और दूरदर्शन के कई ड्रामों में अपनी फनकारी के जवहर दिखाए हैं। कई अदबी समाजी शख्सियत और अंजुमन ने उनके इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार किया है। दूरदर्शन श्रीनगर के साबिक DDG डॉक्टर रफीक मसूरी, नौवर थिएटर एक्टर और डायरेक्टर मुश्ताक अली अहमद खान, सागर कल्चरल फोरम के सरपरस्त सागर नजीर और

0: रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन के सदर साहिल डार समेत कई अदबी सियासी और समाजी शख्सियात ने सजाद खान की वफात को अदाकारी के शोबे के लिए एक बड़ा नुकसान करार देते हुए सोगवार कुंभे के साथ ताजियत की है। स्पेन ने फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत लिया है। न्यू जर्सी में कल खेले गए फाइनल मैच में स्पेन ने अर्जेंटीना को 0 के मुकाबले 1 से शिकस्त दी। स्पेन ने दूसरी मर्तबा ये वर्ल्ड कप जीत लिया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 2 के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में शदीद से शदीद तर बारिशें होने की पेशगोई करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, मेघालय, मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी शदीद बारिशें हो सकती है। दरियासना उभरती हुई मौसमी सूरतहाल के ताल्लुक से श्रीनगर में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए कहा,
1: जम्मू डिवीजन में तो ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट में चांसेस हैं और यहाँ साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के अंदर भी जो है ब्रीफ हैवी शावर या जिसको हम टॉरेंशियल रेन्स कहते हैं, ये खासकर कल ट्यूजडे और वेनसडे ये 2 में पॉसिबल है यहाँ वैली के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी। मौसम अभी खासकर ये जो स्पेल है ये अभी रहेगा खासकर यहाँ सेंट्रल पार्ट्स में, तो एहतियात करें, अंदर ही रहें जितना हो सके और अननेसेसरीली खासकर पहाड़ों के अंदर या बाकी जो हिली जो डिस्ट्रिक्ट हैं या हिल स्टेशन से इन जगहों पे जो है अवॉइड करें।
0: इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी अज का पहाड़ी प्रोग्राम सुनने वालों को जहांगीर अहमद खान का सलाम कबूल होवै। सामीन उम्मीद करदा कि तुसे सारे बखैर वाफियत नाल होसो और हमेशा नालों अज भी अपना पसंदीदा पहाड़ी प्रोग्राम बड़े शौक न सुन रहे हो। सो सामीन अजस्ती सवार की महफिल है। अज की महफिल भी तुसा नाल मुख्तलिफ मौजूआत तय गलां सांझियां करसा ते नाल ही तुसा वास्ते पहाड़ी गीत संगीत भी पेश करसा। तो सामीन अज की महफिल के शुरू में पेश है तुसा वास्ते माहिया, तो आवाज़ है जमीला मुशेख की।

0: दरबारी आलिया यूनियन नक्शबंदी आवरा कुपवाड़ा बिच 134 सालाना उर्स 19 जुलाई को शुरू होया जिला तेरे तेरे जारी रहे उर्स बिच सरकर्दा उलमाई किराम दी शिरकत हो रही है जिस बिच तिलावत नात जिक्र अस्कार और इस्लाही बयान हो रहे आखिरी दुआ 21 जुलाई जोहर के बाद होसी जिस बिच मुल्क मिल्लत वास्ते खुसूसी दुआ मंगी गई सी अहले इस्लाम को शिरकत की गुजारिश है जारी करदा इंतजामिया दरबारी आलिया यूनियन सी
1: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। आइए अब पहाड़ी खबरों का बुलेटिन समाप्त करते हैं।
2: आदाब सामिन, 4:20 होए ये आकाशवाणी श्रीनगर स्टेशन है। सैयद उमर मुख्तार को खबरां सुनो। सब तो पहला खास खास खबरां ते एक नज़र। पार्लियामेंट का मानसून इजलास ओपोजिशन मैंबरान की तरफों से शोरगुल के नतीजे विच कड़ी कड़ी मुलतवी। स्पीकर ओम बिरला दी मैंबरान को ऐवान का तकद्दस बरकरार रखने की अपील। मुल्क विच इस्लाहात दी पॉलिसी नाल नौजवानों को नवे मौके हासिल हो रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दा जम्मू कश्मीर विच सख्त बारिशों अचानक आए सैलाब के किते पैदाशुदा सूरतयाल दा जायजा। वजीर आला दा फौत होए अफराद दे लवाकिन दे हक विच 6 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान। फीफा वर्ल्ड कप विच स्पेन अर्जेंटीना को हरा के बन गया आलमी चैंपियन। पेश है खबरां दी तफसील। पार्लियामेंट का मानसून इजलास अज इथों शुरू हो गया है। लोकसभा की कार्रवाई जदों अज सुबह 11 बजे शुरू हुई तो ऐवान सुन इन्हों 6 साबिक अरकान को खराज पेश किया जिन्हों का हाल ही इंतकाल होया है। इन्हों विच नदिंदला भस्कारा राव, ओमवती देवी, संदाक्षु सेल, साबिक मेजर जनरल भवन चंद्रा खंडोरी, के पी धनापलन और प्यारे लाल संखावर शामिल हैं। ऐवान बिच कतर दे अमीर दे वालिद शेख हमद बिन खलीफा अलसानी को भी खराज पेश किते गया। लोकसभा दे स्पीकर ओम बिरला सुन आखिया जे शेख हमद बिन खलीफा अलसानी सुन भारत कतर तालुकात को डाडा बिणे बिच अहम रोल अदा किया सा। ऐवान दे स्पीकर सुन जदों सवालों दे वक्फे दी कार्रवाई शुरू की थी ते कांग्रेस ते समाजवादी पार्टी समेत ओपोजिशन मैंबरान सुन नीट इम्तिहान का परचा लीक होने का मामला चाया। ओम बिरला सुन ओपोजिशन ते जोर दिता जे ओ ऐवान का काम काज चलेने बिच तावन करन ते ऐवान का कार बरकरार रखन। मगर ओपोजिशन अरकान सुन अपना एहतजाज जारी रखिया ते लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तोड़ी मुलतवी करना पई। इस थ्यों पिछे जदों कार्रवाई दोबारा शुरू हुई ते सूरत आल बिच कोई तब्दीली न देख के कार्रवाई को 2 बजे तोड़ी मुलतवी करना पिया। उधर राज्यसभा की कार्रवाई नवे मुंतखब ते दोबारा मुंतखब किए गए अरकान की खलबरदारी के नाल शुरू हुई। पिछे ऐवान के इन्होंने साबिक अरकान को खराज पेश किया गया जिन्हों का पिछले इजलास थ्यों पिछे इंतकाल होया है। ओपोजिशन के लीडर मलिक अर्जुन खड़गे सुन नीट इम्तिहान का परचा लीक होने का मामला चेने की कोशिश की ताहम शोरगुल के तनाजुर राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन सुन ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तोड़ी मुलतवी कर दी। दोबारा कार्रवाई शुरू होने थ्यों पिछे जदों ओपोजिशन सुन नाराबाजी शुरू की ते ऐवान के सदर नशीन सुन कार्रवाई दोपहर 2 बजे तोड़ी मुलतवी कर दी। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोन पार्लियामेंट के मानसून इजलास की शुरुआत बिच आख्या है जे जिस तरह अच्छी बारिश मुल्क वास्ते फायदेमंद होंदी है इसी तरह कदे मानसून इजलास भी मुसबत ते फाल अंदाज बिच चलाए गछे ते इस नाल मुल्क ते आवाम दुआ को फायदा पहुंची। नामा निगारा नाल गल करदिया होया वजीर आजम सोन उम्मीद जाहिर की जे इस वारी मानसून ते पार्लियामेंट का इजलास दोए ही नतीजा खेज साबित हो सन। उन्होंने सुना कि अज आलमी सतह ते भारत की साखत मुकम्मल तौर ते डाढ़ी हो रही है ते दुनिया भारत की सलाहियतां ते नौजवानों की उमंगा को तस्लीम कर रहा है।
3: मानसून हो या मानसून सत्र अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्र

0: राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: वज़ीर आज़म सुन आखिया जे इस्लाहात दी पॉलिसी कीते नौजवानों को नवे मौके हासिल हो रहे हैं। उन्हें सुन आखिया जे भारत सुन हाल ही बेच ग्रीन हाइड्रोजन नाल चलने वाली जदीद ट्रेन भी आवाम वास्ते वकफ की, जड़ी दुनिया दी लम्मी ट्रेन ते ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेना बिच शुमार की गिंदी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन जम्मू कश्मीर बिच बारिशा अचानक आए सैलाब ते बट्टे रुड़ने दे कीते पैदा सूरत हाल दा तफसीली जायजा किया। अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट बिच लेफ्टिनेंट गवर्नर सुन डोडा जिले बिच दो कीमती इंसानी जाना दे जिया ते डूंगे दुख दा इजहार करदे होए सुगवारा नाल ताजियत कीती है। उन्हें सुन आखिया जे मुतासरा इलाकों बिच NDRF SDRF पुलिस ते फौजी दस्ते हसास इलाकों बिच बचा कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर सुन आखिया जे पुंछ राजौरी रियासी ते उधमपुर दी अहम राबता सड़कों को दोबारा ट्रैफिक वास्ते खोल दिते गया है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों बिच पानी दी फराहमी बहाल करने दा काम जारी है। उन्होंने सुन मजीद आखिया जो मुतलका फील्ड टीमा को हिदायत दी गई है जो ओ रिहायशी मकाना ते अवामी बुनियादी ढांचे को पोचे नुकसान दा फौरी अंदाजा ला के रिपोर्ट पेश करन ताजे मुतासरीन को जल्दी इमदाद फराहम की जा सके। ए खबरां तुसी आकाशवाणी दे श्रीनगर स्टेशन थियों सुन रहे हो। वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला सुन राजौरी ते पुंछ अज़ला दे उन्हां अफराद दे लवाहकीन दे हक विच 6-6 लख रुपए दे एक्सग्रीशिया रिलीफ दा ऐलान कीता है, जिहड़े इन्हां अज़ला विच सख्त बारिशां दे कीते फोत होए हन। वज़ीर-ए-आला सुन अचानक आई सैलाब लैंडस्लाइडिंग नाल जानी नुकसान ते डूंघे दुख दा इजहार करदे होए आखिया जे कदे कोई भी माली इमदाद इस नाकाबले तलाफी नुकसान दा अजाला नहीं कर सकती, ताहम हुकूमत इस मुश्किल कड़ी बिच मुतासरा खानदाना दे नाल खली है। इस इमदादी पैकेज बिच 4 लख रुपए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड थी, जबकि 2 लख रुपए चीफ मिनिस्ट्री रिलीफ फंड थी वागुजार किए गए सन। ऐलान वज़ीरे आला सुन कल शामी जम्मू बिच एक आला सती जायजा मीटिंग दी सदारत करने थियों पिछे किया। जम्मू कश्मीर बिच आज भी मौसम खराब रहा ते कई इलाकों थियों सुबह सवेले थियों सख्त बारिशों की इतला मौसूल हुई है। वादी बिच सुबह सवेले हुई बारिशों के नतीजे बिच मामूलात जिंदगी मुतासर हुई। श्रीनगर शहर के कई इलाकों बिच सड़कों ते पानी आ गया, जिस थियों पिछे गड्डियों की आमदोरफ्त बिच भी खलल पिया। नासाजगार मौसम के पेशे नज़र सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा को आज दुए तिहाड़े भी मुअत्तल रखे गया। इंतजामिया सुन यात्रियों को अपील की है जे ओ मौसम बिच बेहतरी आने तोड़ी यात्रा कैंपा बिच ही क्याम करन। आज भी किसी भी यात्री को जम्मू थियों वादी दे पासे विदया नहीं किते गया। यात्रा दी बाली दा फैसला मौसम बिच बेहतरी आने थियों पिछे ही किते गया सी। कानून साज असैम्बली बिच ओपोजिशन दे लीडर सुनील शर्मा सुन अज पुंछ ते राजौरी अज़ला दे सैलाब नाल मुतासरा इलाकों दा दौरा करने दे दौरान मुतासरा कुंबिया नाल गल कीती, जिस दौरान उन्हां को मुतासरा लोकां सुन अपने मसाइल ते मुश्किलात दे बारे बिच दस्या। उन्हां सुन जिला इंतजामिया को हिदायत दी जे मुतासरा कुंबिया को बगैर किसी ताखीर दे तमाम मुमकिन इमदाद फराहम कीते गए। सुनील शर्मा दे नाल मैंबरां ने कानून साजिया श्याम लाल शर्मा ते मोहन लाल दे अलावा रविंदर रैना, शहनाज गनाई, गोपाल महाजन ते जोरावर सिंह भी शामिल से। अजमेर राजस्थान नाल ताल्लुक रखने वाली बैन अलावामी शोहरत याफ्ता रनर ते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सोफिया सोफी सुन कन्याकुमारी थियों कश्मीर तोड़ी 4,100 किलोमीटर दा रनिंग एक्सपेडिशन पूरा कीता है। उन्हां सुन ए सोलो रन कन्याकुमारी थी शुरू कीता ते ओ आज सुबह श्रीनगर पहुंच गई। इस अहम कामयाबी दे तालुक नाल उन्हां सुन असदे नुमाइंदे सुहेल भट्ट नाल गल करदे होया आख्या।
2: 2019 में मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी किया था और इस बार मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर रन किया है और अपना ही रिकॉर्ड मैंने 19 दिन कुछ घंटों से ब्रेक किया है। तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और आज मैं श्रीनगर में हूँ और अभी भी वही वैसा ही है, लोगों की मेहमान नवाजी, उनका प्यार बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है और लोग बहुत सेल्फलेस सपोर्ट करते हैं यहाँ पे।

0: आपको देखते हैं कि आपको किसी मदद की जरूरत है, बहुत ही। और मेहमान नवाजी में कश्मीर का तो सबको ही पता है कि कोई जवाब नहीं है।
1: स्पेन सुन फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत किया है। न्यू जर्सी बिच कल खेडे गए फाइनल मैच बिच स्पेन सुन अर्जेंटीना को 0 दे मुकाबले 1 गोल नाल शिकस्त दिती। स्पेन सुन दुई वारी ए वर्ल्ड कप जीत किया है। दरियासना उबरदी मौसमी सूरतेहाल दे तालुक नाल श्रीनगर बिच महकमा मौसमियात दे डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद सुन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर दे नाल गल करदे होया आख्या,
2: जम्मू डिवीजन में तो ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट में चांसेस हैं और यहाँ साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के अंदर भी जो है ब्रीफ हैवी शावर या जिसको हम टोरेंशियल रेन्स कहते हैं, ये खासकर कल ट्यूजडे और वेनसडे ये दो दिन में पॉसिबल है यहाँ वैली के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी।
1: इस तनाली ए बुलेटिन मुख्य अल्लाह बेली।
3: ईशा आकाशवाणी श्रीनगर समय वालों छकरतरो बोजो फनकार सुहेल फयाज शिलवती तसैथी यम करन पेश कलाम रमजान फोफ तो यह बर्थ यह छकर हाल हाल यज आवाज मज स स्टूडियोस मज सदाबंद करना आम बोजो।

0: Salem tu esi Ciocăr Turhu Bozan, fan care is Suhel Fayaz Shilwati Tisati, iman ish buzu ta hi kalami Ramzan Fof. Yo sa se hal halai record kurmut. Ya Akashwani Srinagar ki awaz hai. Sham ke 5 baj chuke hain. Samad karein aaj ka Gojri program. Program se pehle ek chota sa waqfa.
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

आकाशवाणी श्रीनगर ते आज को गोजरी प्रोग्राम सुनना सामीन ना थारा मेजबान शौकत अमन बोकड़ा का तरते प्यार खलूस ते ताजीम नाल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु। उम्मीद करूं कि तम खैर सुख नाल का ते अपना मन पसंद गोजरी प्रोग्राम सुन रहे हैं का सामीन इकराम तमना दस्तो चलू की आज का प्रोग्राम मा गीत संगीत इलावा थारे नाल गल करा का खेड ते सेहत न लेके क्योंकि अच्छी सेहत को दारोमदार खेड़ा पर भी है और इसे मौजू न लेकर थारे ना गल करा का ते आज का प्रोग्राम ना आगे बताता प्रोग्राम का शुरू में थारे वास्ते आरिफ मंजूर की आवाज में हमने गीत ला के रखे हुआ आप सुन लिया

सेहतमंद आदमी ही गुजार सके। सेहतमंद आदमी वो नी जुड़ो हटो कटो हुए, बल्कि सेहत को ताल्लुक पूरा जिस्म के नाल है। इंसान जद अंदरू बाहरू सेहतमंद हुए को, उसका ख्यालात दुरुस्त, उसका जज्बात दुरुस्त, उसकी सोच अच्छी, उसको जिस्म ते दिमाग जद पुरसुकून हुए को, ऐसा शख्स ना सेहतमंद क्यों जे। अच्छी सेहत को ताल्लुक मुझ सारी चीजें नाल है। जिस्म तन मन की सफाई जरूरी है। इसके अलावा अच्छी सेहत को दारोमदार वर्जिश, खेड ते काम काज पर भी मुनसर है। जद हम खेडा की गल करा ते सेहत का हसूल वास्ते खेड मुच ही जरूरी है। खेड सिर्फ तफरी को जरियो ही नहीं, बल्कि जिस्म ना तंदुरुस्त, फुर्तीलो और सेहतमंद बनाउन को एक अच्छो खासो जरियो है। सामीन इकराम, इस बारे अगे गल थारे ना और भी करा का ते प्रोग्राम ना अगे बताता थारे वास्ते

जी समीन आरिफ मंजूर की आवाज में हम गीत सुन रहा था। तै इस गीत से पहला हमने गल की थी कि आज का प्रोग्राम मा थारे नाल गल करा का खेड तै सेहत न लेके। समीन इकराम एक मशहूर कोल है कि सेहतमंद दिमाग एक सेहतमंद जिस्म माई हो सके। इस गल तो यो भी पता चले कि खुशबाश तै पुरसकून जिंदगी एक

सेहतमंद क्यों छे। अच्छी सेहत को ताल्लुक मुझ सारी चीजा नाल है, जिसमें तन मन की सफाई जरूरी है। इसके अलावा अच्छी सेहत को दारोमदार वर्जिश, खेड ते काम काज पर भी मुनसर है। जब हम खेडा की गल करा ते सेहत का हसूल वास्ते खेड मुच ही जरूरी है। खेड सिर्फ तफरी को जरियो ही नहीं, बल्कि जिस्म ना तंदुरुस्त, फुर्तीलो और सेहतमंद बनाउन को एक अच्छो खासो जरियो है। सामीन इकराम, इस बारे अगे गल थारे ना और भी करा का ते प्रोग्राम ना अगे बदाता थारे वास्ते आमने एक खूबसूरत जो गीत ला के रखे हुए, आवाज है मोहम्मद इकबाल मलनगामी की, आप सुन लिया।

जिया समी नाम गीत सुन रहा था आवाज थी मोहम्मद इकबाल मलन गामी की गाल हो रही थी खेड़ा के बारे खेड़ चाहे किसी भी किस्म की हो इंसानी नशुर नुमा पर इनको हमेशा ते अच्छो असर पैरे हुए जिस तरह लूडो किरम बोर्ड स्नोकर टेबल टेनिस वगैरह इन नाल दिमागी सलाहियत में इजाफा हुआ है और जहनी काबिलियत भी बढ़ जाए इसी तरह आउटडोर खेड़ा में फुटबॉल बास्केटबॉल कबड्डी क्रिकेट वगैरह ये मारा जिस्म ना चुस्त और फर्तीलो बनावे इसके नाल नाल खेड़ा को मुझ सारा फायदा है अनफरादी और इज्तिमाई तौर पर काम करने की सलाहियत भी खेड़ा के जरिए उजागर हुए खेड़ा की अहमियत ना देखता आज जब एक बच्चो स्कूल में अपनो पहलो कदम रखे ते पहला ते ही इसना तालीम के नाल नाल खेड़ा की तरफ मतवजा करायो जाए जिसना स्कूल लेवल पर गैर निसाबी सरगर्मी यानी को करिकुलर एक्टिविटी का ना ते मुतारफ कियो कियो है जबकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी सतह पर खेड़ा ना बाकायदा एक मजमून फिजिकल एजुकेशन का ना ते मुतारफ कियो कियो है खेड़ साइंसी तौर पर भी अहम किरदार अदा करें खेड़ा नाल इंसान को दिमाग तेज हो और सही काम करण में मदद करे जिस्म का अज्जा मजबूत होए और इंसानी तबीयत हशाश बशाश टिकी रहे खेड़ा नाल इंसान का जिस्म ना मजबूती मिले इंसान को जिस्म फिट रहे और बीमारियों के खिलाफ कौवते मदाफत पैदा करें मुख्तलफ बीमारियों का इलाज ना मद्देनजर रखता मेडिकल की फील्ड में भी फिजिकल थेरापी मुतारफ कराई गई है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की वर्जिश कराई जाए अगे थारे वास्ते जी गुलाम हसन तबस्सुम की आवाज में एक गीत ला के रखे हुए आप सुन लिया।

जिया समी नाम गीत सुन रहा था ते प्रोग्राम में आम गल कर रहे हैं सेहत और खेड़ा के बारे। खेड़ा नाल सेहत तंदुरुस्त ते दिमाग ताजा रहे और ऐसी सलाह तो जागर होए जिड़ी किसी दूजा काम ते अमना हासिल नहीं होती। जिस तरह एक मशहूर कोटेशन है कि अ साउंड बॉडी हैज अ साउंड माइंड, जिसके बारे में पहला भी तमन दस्यो कि एक सेहतमंद दिमाग सिर्फ एक सेहतमंद जिस्म में ही हो सके। खेल चाहे किसी भी किस्म की हो, इंसानी नशुद नुमा पर इसको अच्छो असर पै। हर एक खेल को अपना अपना फायदा हो। जिस तरह किरम बोर्ड, लूडो, टेबल टेनिस वगैरह, इन नाल दिमागी सलाहियत में इजाफा हो और जहनी काबिलियत भी बच जाए। इसी तरह आउटडोर खेड़ा में फुटबाल, बास्केटबाल, वॉलीबाल, कबड्डी, क्रिकेट ते और मुझ सारी खेड शामिल है। ये मारा जिस्म ना चुस्त ते तंदुरुस्त बनावे। इसके अलावा खेड़ा का मुझ सारा फायदा है जिनके बारे गल करा का इस गीत के बाद। आवाज है सूरज सिंह शबनम अख्तर ते संगना की।

जिया समी नाम में लोक गीत सुन रहा था। आवाज थी सूरज सिंह शबनम अख्तर तय संगना की। अगे लगे अथे थारे वास्ते बैत ला के रखी हुई है। आवाज है अयाज सैफ की, आप सुन लिया।

जिया समीन इसके नारी मारा आज का गोजरी प्रोग्राम का वक्त मुख्य लगोवा प्रोग्राम का प्रोड्यूसर वसीम फारूक वानी त्यापना मेजबान शौकता।

0: अभी आप गोजरी प्रोग्राम सुन रहे थे। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वसीम फारूक। यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। आइए अब गोजरी में खबरें सुनते हैं, जिसके फौरन बाद आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में खबरें सुनेंगे।
1: आदाब, यू आकाशवाणी श्रीनगर है। गोजरी खबरों को बुलेटिन ले गया हूं शाजिया चौधरी आजर। पार्लियामेंट को मानसून इजलास अपोजिशन मेंबरों की तरफ से शोरगुल का नतीजा मां बार बार मुलतवी। स्पीकर ओम बिरला की मेंबरों ने ऐवान को तकद्दस बरकरार रखने की अपील। मुल्क में इस्लाहत की पॉलिसी की वजह न नौजवानों ने नवा मौका हासिल हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में लगातार तेज बदलते अचानक आया सैलाब की वजह नाल पैदा शुदा सूरत हाल को लियो जायजो। वजीर आला ने मारे गया लोगों का वारसों का हक में 6-6 लाख रुपया की मदद देने को कियो ऐलान। फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन अर्जेंटीना ने हरा गए, बन गयो है आलमी चैंपियन। तफसील नाल खबर सुनो। पार्लियामेंट को मानसून इजलास आज ती शुरू हो गयो है। लोकसभा की कार्रवाई जद आज सुबह 11 बजे शुरू हुई तो ऐवान ने इन 6 साबिक अरकान ना खराजी अकीदत पेश कियो, जिन वो हाल ही में इंतकाल होयो है। इन मा नदिंदला भास्करा राव, ओमवती देवी, सिद्धांशु सेल, साबिक मेजर जनरल भवन चंद्रा खंडूरी, के पी धनापालन और प्यारे लाल संगवर शामिल हैं। ऐवान में कतर का अमीर का वालिद शेख हमद बिन खलीफा अल सानी नवी खराजी अकीदत पेश कियो गयो। लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला ने कहो कि शेख हमद बिन खलीफा अल सानी ने भारत कतर ताल्लुकात न मजबूत बनाने में अहम रोल अदा कियो थो। ऐवान का स्पीकर ने जद सवालों का वक्फा की कार्रवाई शुरू की तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत अपोजिशन मेंबरों ने नीट इम्तिहान को पर्चो लीक होने का मामलो चायो। ओम बिरला ने अपोजिशन पर जोर दितो कि ऐवान को काम का चलाउन मा तावुन करें और ऐवान ना बरकरार रखें, लेकिन अपोजिशन अरकान ने अपनो एहतजाज जारी रखियो और लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। इसके बाद जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो सूरत हाल में कोई भी तब्दीली न देख के कार्रवाई ना 2 बजे तक मुलतवी करनो पियो। यह राज्यसभा की कार्रवाई नवा मुंतखब और दोबारा मुंतखब किया गया अरकान की हलबरदारी के नाल शुरू हुई। बाद में ऐवान का इन साबिक अरकान ने खराजी अकीदत पेश कियो गयो, जिनको पिछला इजलास के बाद इंतकाल हुयो है। अपोजिशन का लीडर ने नीट इम्तिहान को पर्चो लीक होने को मामलो चाउन की कोशिश की, मगर शोरगुल का तनाजर मा राज्यसभा का चेयरमैन सीपी राधा कृष्णन ने ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी कर छुड़ी। दोबारा कार्रवाई शुरू होने के बाद जब अपोजिशन ने नारा लाना शुरू किया तो ऐवान का सदर नशीन ने कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी की। इसी दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट का मानसून इजलास का आगाज में कहा कि जिस तरह चंगो बदर मुल्क वास्ते फायदेमंद हो, इसी तरह अगर मानसून इजलास भी मुस्बत और फाल अंदाज में चलायो जाए तो इस नाल मुल्क और लोगों दोनों फायदो पहुंचेगो। नामनिगारा नाल गल्प करता हुआ वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि इस बार मानसून और पार्लियामेंट को इजलास दो ही नतीजा आला साबित होगा। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर भारत की साखत मुकम्मल तौर पर मजबूत हो रही है और दुनिया भारत की सलाहियता और नौजवानों की उमंगना तस्लीम कर रही है।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: वजीर आजम ने कहा कि इस्लाहत की पॉलिसी की वजह नाल नौजवानों ना नवा मौका हासिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन नाल चलन आली जदीद ट्रेन भी लोगों वास्ते वक्फ की, जिड़ी दुनिया की तवील ट्रेन और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेना में शुमार की जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में

0: बदल अचानक आया सैलाब और बट्टा खिसकण की वजह नाल पैदा शुदा सूरत हाल को तफसीली जायजो लियो। अपना एक सोशल मीडिया पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डोडा जिला में दो कीमती जान जाया होने पर गहरा दुख और सदमा को इजहार करता हुआ सोगवारों के नाल तहजियत की है। उन्होंने कहा कि मुतासरा इलाका में NDRF SDRF पुलिस और फौजी दस्ता हसास इलाका में बचाव कार्रवाई अंजाम दे रहा है। LG ने कहा कि पुंछ राजौरी रियासी और उधमपुर की एम राबता सड़क का ना दोबारा ट्रैफिक वास्ते खोल छुड़े है, जबकि मुख्तलिफ इलाका में पानी की फरहमी बहाल करने को काम जंगी बुनियादों पर जारी है। उन्होंने होर क्योंकि मुतलका फील्ड टीम ने हिदायत दी है कि वे रिहायशी मकाना और अवामी बुनियादी ढांचा न पहुंचा नुकसान को फौरी अंदाजो लागे रिपोर्ट पेश करें ताकि मुतासरा ना जल्द अज जल्द मदद दी जा सके। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिला का उन अफराद का वारसंगा हक में 6-6 लाख रुपया की एक्सग्रीशिया रिलीफ को ऐलान किया है, जिड़ा इन जिला में मूसलाधार बदलों की वजह नाल मारे गया है। वजीर आला ने अचानक आया सैलाब लैंडस्लाइडिंग की वजह नाल जानी नुकसान पर गहरा दुख को इजहार करता हुआ कहा है कि अगरचे कोई भी माली मदद इस नाकाबले तलाफी नुकसान को अजालो नहीं कर सकती, मगर हुकूमत इस मुश्किल कड़ी में मुतासरा खानदाना के नाल मजबूती के नाल खड़ी है। इस इमदादी पैकेज में 4 लाख रुपया स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड ते जबकि 2 लाख रुपया चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड ते वागुजार किया जाएगा। यो ऐलान वजीर आला ने कल शाम जम्मू में एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करने के बाद कियो। उन्होंने तमाम जिले इंतजामिया ने 24 जुलाई तक हर 6 घंटा के बाद मौसमी सूरत हाल की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी ताकि निगरानी न और मोसर बनाया जा सके और वक्त पर कार्रवाई की जा सके। जम्मू कश्मीर में आज भी मौसम नाखुशगवार रहे और अक्सर इलाका में सुबह सवेरे ते शदीद बदलों की इतला मिली है। वादी गया चौं तरफा ते ही सुबह सवेरे होया बदलों का नतीजा मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुई। श्रीनगर शहर का अक्सर इलाका में सड़क पानी गए ठा गई, जिसके बाद गड्डियों की आमोदरफ्त में भी खलल पियो। नासाजगार मौसम के पेश नजर सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा ना आज दूजे दिन भी मुअत्तल कियो गयो। इंतजामिया ने यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम में बेहतरी आने तक यात्रा कैंपा में ही क्याम करें। आज भी किसी भी यात्री ने जम्मू ते वादी की तरफ रवाना नहीं कियो गयो। यात्रा की बहाली को फैसलो मौसम में बेहतरी आने के बाद ही कियो जाएगो। श्रीनगर में आज एक आला सतह की मीटिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने अमरनाथ जी यात्रा की सहूलत की बेहतरी वास्ते CAPF यानी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस की सिफारशात पर अमलाया जा रहा काम को जायजो लियो। यह सहूलत लखनपुर ते ले गए पवित्र गुफा तक का पूरा रापर रहेगी। यह सिफारशात श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान CAPF की टीम की तरफ से जमीनी सतह पर किया गया तफसीली जायजा की बुनियाद पर तैयार की गई है। खराब मौसमी हालात के पेश नजर श्री माता विष्णु देवी यात्रा ना आर्जी तौर पर मुअत्तल करण और महकमा मौसमियात की तरफ से जारी एडवाइजरी के बाद के पेश नजर श्री माता विष्णु देवी श्राइन बोर्ड ने कटरा में फंसिया श्रद्धालुओं वास्ते मुफ्त लंगर की सहूलियत रखी है। कानून साज असेंबली में अपोजिशन का लीडर सुनील शर्मा ने आज पुंछ और राजौरी जिला का सैलाब नाल मुतासरा इलाकों को दौरा करके मुतासरा कुंभा नाल गल की, जिस दौरान मुतासरा लोगों ने अपना अपना मसला ते मुश्किलात उन्हें दस्या। उन्होंने जिला इंतजामिया ने हिदायत दी कि वे मुतासरा कुंभा ना बगैर किसी ताखीर के तमाम मुमकिन मदद दें। अजमेर राजस्थान नाल ताल्लुक रखने वाली बैनुल अक्वामी शोहरत याफ्ता रनर और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सूफिया सूफी ने कन्याकुमारी ते कश्मीर तक 4,100 किलोमीटर की रनिंग एक्सपेडिशन पूरा कियो है। उन्होंने यह सोलो रन कन्याकुमारी ते शुरू की और वे आज सुबह श्रीनगर पहुंच गई। इस एम कामयाबी और कश्मीरी लोगों की मेहमान नवाजी का ताल्लुक नाल उन्होंने मारा नुमाइंदा महमूद अहमद खान के नाल गल करता हुआ कियो।
1: जैसे बोलते हैं ना कि मैं इस सफर में अकेली चली थी, लेकिन कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए, तो ये जो रिकॉर्ड है ये एक इट्स मोर देन अचीवमेंट। लोगों का साथ, एक फैमिली बनना, मेमोरीज बनना और इंस्पिरेशन देना और लेना, बहुत कुछ मिला इस रन से मुझे। जब से जर्नी शुरू की है, जैसे अपना चैलेंज शुरू किया है, तब से लेके अब तक लोगों का जो सपोर्ट है बहुत अच्छा मिला मुझे हर जगह से, चाहे वो लोकल पब्लिक हो, चाहे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारी फोर्सेज हो। और स्पेशली जब मैं जम्मू कश्मीर में आई, और जैसे सबको पता है कि अमरनाथ यात्रा चल रही है, काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, बट उन्होंने आगे होकर इनिशिएटिव लिया, मुझे पूरा प्रोटेक्शन दिया और मुझे नहीं लगता कि विदाउट देयर सपोर्ट मैं अभी तक श्रीनगर में बैठी होती।
0: न्यूयॉर्क का न्यू जर्सी स्टेडियम कल रात खेला गया फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन ने अर्जेंटीना न सिफर का मुकाबला

0: ਬਲਾ ਇਹ ਗੋਲ ਨਾਲ ਹਰਾ ਛੁੜਿਓ ਮੁਕਰਰਾ 90 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦੋਈ ਟੀਮ ਕੋਈ ਗੋਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਜ਼ਾਫੀ ਵਕਤ ਮਾ ਫੇਰਾਨ ਟੂਰਿਸ ਨੇ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸਪੇਨ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਵਾਈ ਇਸ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੂਜੋ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜੀਤ ਲਿਓ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2010 ਮਾ ਸਪੇਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਲਮੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀ ਥੀ ਤੇ ਇਸ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰੀ ਖਬਰਾਂ ਕੋ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਓ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिनभर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवी बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण व्यवहार करने किसी भी गैर कानूनी और हिंसक गतिविधियों में शामिल न होने और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों तथा कर्मियों द्वारा जारी किए गए कानूनी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। उच्चतम न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को यह निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि क्या अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जा सकता है। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से राम मंदिर चढ़ावा विवाद का राजनीतिकरण न करने को भी कहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि उसका काम सिर्फ उचित जांच सुनिश्चित करना है। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति मुर्मू ने किशिनोव में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि यह यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मॉल्दोवा की यह पहली राजकीय यात्रा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके इस यात्रा के दौरान आयोजित भारत मॉल्दोवा बिजनेस फोरम आर्थिक सहयोग को नई दिशा देगा। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की 8वीं बैठक आज से हो रही है। 2 दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण को आगे बढ़ाती है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक

0: कई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में लोगों के साथ है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी श्रीनगर शबजत 5 मिनट शब्द पेश प्रोग्राम गमी बानन खतरा।

وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر

فإنه يعلم السر وأخفى.

0: चिंता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: SKICC डल लेक में जारी चिनार बुक फेयर में सदी नामा प्रकाशन की जानिब से स्टॉल नंबर 41 में दिलचस्प और मयारी किताबें उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी जबानों में दस्तियाब हैं। खासकर कल्चर, तारीख और इंडियन लिटरेचर और बच्चों की जहनी और इखलाकी तरबियत के लिए मुख्तलिफ किताबें मुनासिब दामों पर दस्तियाब हैं। स्टॉल नंबर 41 पर तशरीफ लाएं और मौके का फायदा उठाएं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आकाशवाणी श्रीनगर, अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं।
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।

0: शेरबीन के समय को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूद हैं, कहरंगेज मौसमी सूरत हाल ने पुंछ में मजीद 7 जानों का जिया किया है। नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एहतजाज, जम्मू कश्मीर बीजेपी का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पलटवार। डोडा में सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक, कई जख्मी। और भारी बारिशों ने एक बार फिर स्मार्ट सिटी की कलई खोल के रख दी। मौजूद की तफसील जरा देर बाद।
1: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
2: सुनो ना, हा? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
3: तो रोका किसने है? हा?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
4: 9018074333।
5: 9018074333।
6: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई, SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
0: शर्बीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। समन जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़रे 48 घंटों के दौरान बादल फटने से पैदा हुई सैलाबी सूरतहाल ने कहर बपा किया है। वाजिर है कि जम्मू डिवीजन के पुंछ और राजौरी जिलों में 2 रोज के अंदर 30 से ज्यादा इंसानी जानों का जिया हुआ है। पुंछ से मिली ताजा इत्तिलात के मुताबिक आज मंडी तहसील के लोरन ब्लॉक में वाके नंदी छोल धमेल गांव में पहाड़ी खिसकने के नतीजे में एक मकान दब गया और इसके 7 मकीन हलाक हो गए। बताया जाता है कि इस सानहे से कबल पुंछ में ताजा नासाजगार मौसमी सूरत हाल की वजह से लगभग 16 अफराद जान भाग खो चुके थे। यूं जिले में हलाक होने वालों की तादाद 23 हो चुकी है। इंसानी जानों के जिया के साथ साथ पुंछ और राजौरी जिलों में बुनियादी ढांचा भी शिद्दत से नुकसान ज्यादा हो चुका है। इत्तिलात के मुताबिक पुंछ के दर्जनों देहात में बिजली और पानी की सप्लाई मुतासिर हो चुकी है, जबकि

0: रहा है। कई एक मकाम पर इरीगेशन की कुल्स को भी बड़ा नुकसान पहुँचा है। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा के हमरा एमएलए श्यामलाल शर्मा और दीगर एमएलए और पार्टी के सीनियर लीडर जिला राजौरी और पुंछ के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान आज राजौरी पहुंचे, जहां लीडर ऑफ अपोजिशन ने सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि एक तरफ जम्मू कश्मीर में सैलाब में कई जाने गई हैं, वहीं यूपी सरकार लोगों के साथ इस दुख की घड़ी में साथ खड़े होने के बजाय दिल्ली में स्टेट को लेकर धरने पर है। उन्होंने कहा कि लोगों इस वक्त परेशान हैं और सरकार के लोग दिल्ली में 5 स्टार और एसी रूम में आराम कर रहे हैं।
1: राजौरी से आरिफ कुरैशी की रिपोर्ट आपने सुनी। सेमिनार जम्मू कश्मीर की हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के हक में एहतजाज किया। एहतजाज में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर वजीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबिनी वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, पार्टी के तर्जुमान आला तनवीर सादक, पार्टी के अरकान असेंबली और अरकान पार्लियमान और दीगर कई सीनियर लीडरान शामिल थे। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने उन्हें दिल्ली में एहतजाज करने पर मजबूर किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुज़श्ता 2 साल के दौरान उनकी जमात मरकजी हुकूमत को पार्लियमान और सुप्रीम कोर्ट में किया गया अपना वादा वफा करने की याद दिलाती रही है, ताहम मरकजी हुकूमत का रद्द अमल मनफी रहा है। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि हमने असेंबली के पहले सेशन के दौरान जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे की बहाली और खसूसी कानूनी इख्तियार की बहाली के लिए करारदाद पास की है और हम अपने एजेंडे से मुनहरिफ नहीं हो रहे हैं। हम फकत मरकजी हुकूमत को उसका वादा याद दिला रहे हैं। रियासती दर्जे की बहाली के बाद हम उस करारदाद की तरफ आएंगे जो असेंबली में पास की जा चुकी है। दरअसल जम्मू कश्मीर असेंबली में हिजब इख्तलाफ के लीडर सुनील कुमार शर्मा ने आज राजौरी के अपने दौरे के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस लम्हा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असेंबली को राजौरी और पुंछ में लोगों के शाना बशाना खड़ा होना चाहिए था, उस वक्त वो दिल्ली के 5 स्टार होटलों में बैठे हैं।
2: किस्मत ये किसी भी क्षेत्र के लिए, जिस क्षेत्र के प्रतिनिधि इस मुसीबत के समय, इस आपदा के समय 5 स्टार या एसी रूम्स में बैठे। सवाल ये पैदा होता है कि जिस राजौरी पुंछ के 8 विधायक हैं, 8 विधायक में केवल 1 विधायक यहाँ पे विजिबल है जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, 7 विधायक नदारद है और जिनकी एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक की ये विधानसभा नहीं है। जहां स्वर्णकोट में, जहां पुंछ में, जहां मेंढर में, जहां राजौरी के प्रॉपर में, जहां थन्ना मंडी में इतना नुकसान हुआ है, वो विधायक यहां पे नहीं है। मुझे बताइए, एक विधायक को क्यों चुना जाता है, एक प्रतिनिधि को क्यों चुना जाता है? क्यों? क्योंकि वो मुसीबत के समय, दुख के समय आम गरीब के साथ खड़ा हो जाए। 5 साल तो उनको जाने के लिए दिल्ली जाए ना, वैसे भी कहां होते हैं, यहां पे जाए, दिल्ली जाए, मुंबई जाए, लेकिन इस दुख की घड़ी में उनको यहां पे होना चाहिए था, राजौरी में होना चाहिए था, पुंछ में होना चाहिए था, गरीब लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था, प्रशासन के साथ तालमेल बना के इनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए यहां पे खड़ा होना चाहिए था। मुझे अजीब लग रहा है।
1: ये थे जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में हिजब इख्तलाफ के लीडर सुनील कुमार शर्मा, जिन्होंने आज राजौरी का दौरा किया। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज मुख्तलिफ जिलों में शदीद बारिशों, अचानक आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस पैदा हुई सूरत हाल पर आला हुकाम से मुफस्सल तबादले ख्याल किया और मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि आवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करते हुए बुनियादी ढांचे की बहाली का काम तेज किया जाए। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में शदीद बारिशों, अचानक आने वाले सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात के बायस जानबहक होने वाले हर फर्द के लवाहकीन के लिए 6 लाख रुपए एक्सग्रेशिया इमदाद का ऐलान करते हुए इंतजामिया को मुतासरा खानदानों की फौरी इमदाद, बाजाबादकारी और बुनियादी सहूलियात की जल्द बहाली की यकीनी बनाने की हिदायत दी है। समय आज सवेरे शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में लगभग 2.5 घंटे की बारिश ने शहर के मुतअद्दिद इलाकों को जेरे आब लाया। स्मार्ट सिटी श्रीनगर के दर्जनों इलाके इस कदर जेरे आब आ गए कि शहर को पहचानना मुश्किल हो रहा है, या कहना चाहिए मुश्किल अभी भी हो रहा है, क्योंकि अभी भी कितने ही इलाकों से पानी की निकासी नहीं हो पाई है। पूछा जा सकता है कि शहर की बिगड़ी संवारने और इसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जदीद खतूत पर उस्तवार करने के जो वादे किए जाते रहे हैं, वो हर बड़ी बारिश के साथ क्यों धुल जाते हैं? लोग तो यहां तक कहते सुने जाते हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से पहले शहर बेहतर था, लेकिन अब खराब हो चुका है। एक रिपोर्ट के साथ इमरान नायकू।
3: श्रीनगर शहर में आज सुबह कई घंटों तक जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश ने मामूली जिंदगी मफलूज कर दिया। شہر کے متعدد علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ

0: खाली मकान से, इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट दिल से।
1: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है, आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
2: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। आज जिला डोडा में शदीद बारिश के दौरान रेगी नाले के मकान पर एक बस और दीगर गाड़ियों पर पत्थर गिराने के नतीजे में दो अफराद जानबाग हुए, जबकि दीगर मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। वाकये के फौरन बाद कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया गया। तफसीलात के साथ डोडा से नसीर अहमद खोड़ा।
3: मूसलाधार व तूफानी बारिशों ने गुज़श्ता रात व आज सुबह खित्ते चिनाब में एक बार फिर मामूलाते जिंदगी को दरहम बरहम किया है और तूफानी बारिशों की वजह से कोहिस्तानी जिला डोडा के दो अलग अलग मकामात पर चट्टाने खिसकने और पशुओं की जद में आने की वजह से तीन लोग बशमूल एक खातून हलाक हुई हैं और छह लोग जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक जिला डोडा के बदरवा से एक मुसाफिर गाड़ी जैर नंबर JK02BA4877 जम्मू के लिए आ रही थी कि रगी नाला के नजदीक एक बहुत बड़ी चट्टान सड़क के बालाई हिस्से से खिसक कर चलती हुई गाड़ी से टकराई, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत मौका पर ही वाका हुई और गाड़ी में दीगर अफराद शदीद तौर से जख्मी हुए, जबकि दूसरा शख्स जो कि गाड़ी से उतरकर पैदल रास्ते पर चल रहा था खिसकते पत्थरों की जद में आकर मौका पर ही हलाक हुआ। जख्मियों को इलाज मुआलजा के लिए पहले नजदीकी असर के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि उनमें चंद जख्मी अफराद को वहां से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल कर दिए गए। रगी नाला के करीब चंद दीगर गाड़ियां भी पत्थरों व पसियों की जद में आकर नुकसान से दो चार हुई हैं। पत्थर और पसियां गिर आने का दूसरा वाका डोडा के कास्तीगढ़ इलाका में पेश आया, जहां आज सुबह एक खातून पत्थरों की जद में आकर अपनी जान गंवा बैठी, जिसकी शनाख्त शिव देवी साकना कास्तीगढ़ के तौर हुई है, जबकि रगी नाला में हलाक होने वाले अफराद की पहचान कुलवंत सिंह वलिद बुद्धि सिंह साकना बिजारनी डोडा और मुनीश कुमार वलिद सुरेंद्र सिंह साकना लिंगा डंडी बदरवा के तौर हुई है। रगी नाला में जख्मी हुए अफराद की पहचान सलीम वलिद बहाग हुसैन साकना उद्यानपुर डोडा, शाफिया जौजा मंसूर अख्तर साकना बाला बदरवा, मुन्नी देवी जौजा राजेंद्र कुमार साकना जोधपुर डोडा, राजेश कुमार वलिद सुरेंद्र कुमार, सत्या देवी जौजा राजेश कुमार साकना ने बदरवा के तौर हुई है और राबिया जौजा इम्तियाज अहमद साकना मुगल मैदान किश्तवाड़ के तौर हुई है। याद रहे कि गुज़श्ता दो हफ्ता के दौरान खित्ते चिनाब के मुख्तलिफ मकामात पर बादल फटने और तूफानी बारिशों के वाकात पेश आए हैं, जिसमें रहायशी मकानों, दुकानों, स्कूलों, लकड़ी के आर्जी पुलों, राबता सड़कों, फसलों, मेवा बागात व दीगर अमला को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है और गुज़श्ता रात भी जिला डोडा के भरत बगला, उद्यानपुर नाला, कासीगढ़ नाला, गनिका नाला, कलिहान नाला, कोटी बस्ती नाला में जबरदस्त व मूसलाधार बारिशें हुई हैं।
2: डोडा से नसीर अहमद खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। समय पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के जो रिकॉर्ड हमें मौसूल हुए हैं, उसकी रूह से सोपोर में 55.4 मिलीमीटर, वुलर में 54.5 मिलीमीटर, गांधरबल जिले में 46 मिलीमीटर, श्रीनगर में 45.6 मिलीमीटर, लोलाब में 25.8 मिलीमीटर, पांपुर में 21.5 मिलीमीटर, बड़गाम में 15 मिलीमीटर, जबकि नौगाम हंदवाड़ा में 14.6 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है। फिलहाल हम रुख करते हैं जिला गांधरबल का, जहां से फोनलाइन पर मौजूद है रहीम रिजवान और बात कर रहे हैं जिले के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिशों और तुगयानी से पैदा हुई सूरत हाल के ताल्लुक से।
3: मूसलाधार बारिशों की वजह से गांधरबल जिले के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फटने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, जिससे मकानों, धान की पनीरी सब्जी के कियारियों, बागात, सड़कों और गली कोचों को काफी नुकसान पहुंचा है। शहरबीन को मिली इतलात के मुताबिक सभापोरा के

0: लामन तकिया पहलीपोरा और चिवा इलाके में आज बादल फटने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई और नजदीकी पहाड़ी से तेज बहने वाली पानी की रेलें मकानों में घुस जाने से दर्जनों रिहायशी मकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, जबकि धान की पनीरी सब्जी के क्यारियों और मेवा बागात को भी भारी नुकसान पहुंचने की इतला है। इलाहाबाद की सड़कें और गली कोचे इसकी जद में आकर तबाह हुए। पानी के तेज बहाव से बिजली के खंभे, दरख्त, टीन शेड और दीवारें गिर गई, जबकि मकानों के सहनों में भी पानी जमा हुआ है। इस तरह पूरे इलाके में लोगों को बड़े पैमाने पर माली नुकसान से दो चार होना पड़ा। इसी तरह मानसबल से रेपोरा तक नजदीकी पहाड़ियों में कई मकाम पर बादल फटने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, जिससे बाबा सोले चक्की यंगूरा सैनिक स्कूल कॉलोनी मलपोरा यंगूरा पोतरमुला वंदहामा और रेपोरा के अलावा दीगर मुलिका इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने से मेवा बागात, मकई, सब्जी के क्यारियों, धान की पनीरी और दीगर खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुँचा है, जिससे मकामी किसानों में तश्वीश की लहर दौड़ चुकी है। निज इन इलाकों में गली कोचे और सड़कें भी तबाह हो गई। कई एक मकाम पर मैगडम उखड़ने से सड़कें नाकाबिले आमदरफ्त बन गई।
1: रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी जिला गांधरबल से। वादी के मारूफ टेलीविजन और रेडियो अदाकार सज्जाद अहमद खान आज सुबह इंतकाल कर गए। सज्जाद अहमद खान के इंतकाल पर वादी की कई सकाफती अंजुमनों और शख्सियात ने रंजोगम का इजहार करते हुए सोगवारा से ताजियत की है। इनमें अदबी मरकज कमराज, जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन के सदर पीरजादा अब्दाल महजूर, दूरदर्शन के साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रफीक मसूदी, रहमतुल आलम कल्चरल फोरम अजस, चंद्रसीर कल्चरल फोरम पट्टन, सागर कल्चरल फोरम सुकरपट्टन, अदाकार और हिदायतकार मुश्ताक अली अहमद खान गुलशल कल्चरल फोरम, अब्दुल रहमान आजाद मेमोरियल फाउंडेशन, रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन के सदर साहिल डार, इंद्र कल्चरल फोरम सुंबल, महक ड्रामेटिक क्लब, अदाकार और हिदायतकार शेख तारिक जावेद, अदाकार गुलफाम बारजी, जे एंड के रेडियो, दूरदर्शन आर्टिस्ट, फ्रीलांस प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एसोसिएशन, क्रोहन कल्चरल फोरम क्रीरी के सदर शमीम अहमद शमीम और दीगर कई शख्सियात शामिल हैं। इधर आज बारामूला राइटर्स फोरम की तरफ से डाक बंगला बारामूला में यकरोजा अदबी कॉन्फ्रेंस और एक महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया, जिसमें वादी के मुमताज अदीब, शायर, दानिशवर, सीनियर सहाफी और कलमकार शरीक हुए। तकरीब के इनेकाद का मकसद अदब व सकाफत के फरोग, तख्लीक की सलाहियतों की हौसला अफजाई और जिम्मेदार सहाफत की अहमियत को उजागर करना था। तकरीब के दौरान सीनियर सहाफी और बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन हाजी करामत कयूम को शोबे सहाफत में उनकी गिरा कद्र खिदमात के एतराफ में शान सहाफत एजाज से नवाजा गया। और प्रोग्राम के आखिर में एक खबर की क्रूहन कल्चरल फोरम क्रीरी की तरफ से कल एक हुसैनी मुशायरा मुनाकिद हुआ, जिसकी सदारत मारूफ शायर सादुद्दीन सैदी ने की, जबकि ऐवान सदारत में नूरुद्दीन होश, शबनम तिलगामी और शमीम शमीम भी मौजूद थे। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
2: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
3: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000025।
4: मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग।
5: घर का एसी हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
6: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
7: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल

0: रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेज का लुत्फ उठाइए 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर टुगेदर वी रीड टुगेदर वी लीड।
1: आदाब, ये छे आकाश वाणी श्रीनगर शाम छे 7 बजे 30 मिनट सपदे मीर तारिक बोजनावे खबर गोड हेडलाइन पे अख नजर। पार्लियामेंट वहरस इजलास गो अपोजिशन मेंबरों तरफ क्रकनाद करने की बार बार मुलतवी, स्पीकरन कर मेंबरन ऐवान तकद्दस बरकरार थवने अपील। मुल्कस मज इसलाह च पॉलिसी की नौजवान नई मौके हासिल सपदान, वजीर अजम नरेंद्र मोदी। डोडा मज पस वसित यन किन ज नफर तो पोच सत नफर आज जान, लेफ्टिनेंट गवर्नर हज सूरत आल इसम तो वजीर अल कर्ज जान सपनमित नफर हंद वरिसदर हंद हक 6 लाख रोप इमदाद एलान। पार्लियामेंट मानसून इजलास अजक पे शुरू सपदमुत लोकसभा कार्रवाई अल आज सुबह कह बजे शुरू सपज तयवान किमन शन सबक मेबरन खराज पेश हाल फोत सपदमित नादिमला बस्कारा राव, ओमवती देवी, सिद्धांशु सेल, सबक मेजर जनरल भवन चंद्रा खंडोरी, के पी धन्नापालन तो प्यारे लाल संकवार शामिल। ऐवानस मज आव कतर किस अमीर सिंदिस वालिद शेख अहमद बिन खलीफा अल सानियस ते खराज पेश करन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वोन शेख अहमद बिन खलीफा अल सानी उस भारत कतर तलुकात मुस्तकम बनावनस मज अहम रोल अदा कोर्मुत। ऐवानुक स्पीकरन ये वक्फे सवाल कार्रवाई शुरू कर तो कांग्रेस तो समाजवादी पार्टी सान तोल अपोजिशन मेंबरो नीट इम्तहान पर्चे लीक सपदन मामल। ओम बिरला दूत अपोजिशन पे जोर जम दिन ऐवान कामकार चलान बाबत अथवास ऐवान तकद्दस तविन बरकरार, मगर अपोजिशन मेंबरो थो पन एहजाज जारी तो लोकसभा कार्रवाई पे दोहल 2 बजे तक मुलतवी करें। अम पे कार्रवाई दोबारा शुरू सपज तो सूरत हालस मज तब्दीली नयन किन पे कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी करें, उस पत दोह बापत मुलतवी सपज। हप सपज राज्यसभा कार्रवाई नवन मुंतखब तो दोबारा मुंतखब कर आम मेबरन हज हलाबरदारी सुरू पत आव ऐवान कन तिमन सबक मेबरन खराज पेश कर पत्मे इजलास पत फोत सपदमित। अपोजिशन लीडर मलिक अर्जुन खड़गे कर नीट इम्तहान पर्चे लीक सपदन मामल तुलन कोशिश, तहम कर शोरी शर सपदन की राज्यसभा चेयरमैन CP राधा कृष्णन ऐवान कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी। दोबारा कार्रवाई शुरू सपदन पे अपोजिशन नारबाजी शुरू कर तो ऐवान चेयरमैन कर कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी, उस पत अपोजिशन के शोरी शर किन 2 दोह बापत मुलतवी कर पे। इस दौरान वजीर अजम नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट किस मानसून इजलास किस आगाजस मज वो इत पे असो रूद मुल्क बापत फायदेमंद इथे पे हरगजन मानसून इजलास ते बेहतर अंदाजस मज चलाव यी तम सत मुल्क तो लूकन फायदे। नाम नगार सत कान बो वजीर अजमन वमेद जिनकी लटि सपद मानसून तो पार्लियामेंट इजलास दशवे नतीजे खास सबित तमों आलमी सूत्रस पे भारत पहचान पूरे पे मजबूत सपदान तो दुनिया भारत चन सलाहियतन तो नौजवान हजन खशन तस्लीम कर। जम्मू कश्मीर में रूद आज तो मौसम नास्त्रास तो अक्सर इलाकन में आज सुबह पे जबरदस्त रूद पेन इतला मौसूल सपदम वादे हंद तरफातन में सुबह सुल पे सपदमच बारिश किन गई मामूली जिंदगी मुतासर। श्रीनगर शहर कन अक्सर इलाकन में खोत सड़कन आब यम पत गाड़ियन हंदिस यनस गसनस मज ठहर पद सपद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में गंड रूद पेन अचानक सलाब इन तो पस वसित यन किन पद सपदम सूरत आल तफसी सन साम पे सोशल मीडिया पोस्टस में लेफ्टिनेंट गवर्नर डोडा जिलस मजमती इंसान जू जाय सपदनस पे जबरदस्त दुख पावान दखलत आयल सजियत बोमुत तमों असर जदा इलाकन मं NDRF SDRF पुलिस तो फौजी अमल हसास इलाकन मज बचाव कार्रवाई अंजाम दिवान। एलजन मन पोस रजौरी रियासत उधमपुर अहम रबत सड़क से दोबारा गाड़ियन हंद बापत यल त्रा आम जन मुख्तलिफ इलाकन मज आबज फरहमी बहाल कर जंगी बुनियादन पे जारी है तमों मजीद मुतलक फील्ड टीमन हदायत दिन आम जम कर रिहायशी मकानन तो अवमी बुनियादी ढांचस वतमित नुकसान पूरी अंदाज लगवित रिपोर्ट पेश जन असर जदन जल्दी इमदाद फराहम कर यी। बेसिक सोशल मीडिया पोस्टस में मनोज सिन्हा पोच गंड रूद पेन किन सतन नफर हंदिस अजान सपदनस पे जबरदस्त दुख पोमुत तमों जिला इंतजामिया हदायत दिमित मुतासर आयालन गसि फूरी इमदाद फराहम कर। وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ راجوری تو پونس ضلع کن تم نفرن ہند گھر والن باپت شیشے لچھ روپے ایکسکریشا امداد رنگ دن اعلان کورمت یمن ضلع مز بار رود پین کن از جان سپد ات امدادی پیکیجس تحت یین 4 لاکھ روپے سٹیٹ ڈیزاسٹر فنڈ مز یل زن 2 لاکھ روپے چیف منسٹرس ریلیف فنڈ مز واگ

0: सबको पता है कि अमरनाथ यात्रा चल रही है, काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, बट उन्होंने आगे होकर इनिशिएटिव लिया, मुझे पूरा प्रोटेक्शन दिया और मुझे नहीं लगता कि विदाउट देयर सपोर्ट मैं अभी तक श्रीनगर में बैठी होती।
1: मुनशियात के कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने श्रीनगर के नौहट्टा, हवल, काठी दरवाजा, रैनावारी और कमरवारी इलाकों में 10 ड्रग स्मगलरों की 8 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें अटैच की हैं। इस दौरान पुलिस ने काकापुरा पुलवामा के रहने वाले एक ड्रग स्मगलर की गिरफ्तारी अमल मिलाकर उसके कब्जे से नशीली अशिया की कुछ मिकदार बरामद की है। जम्मू कश्मीर में मानसून सीजन के दौरान मुस्तहकीन को गजाई अजनास की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाने के लिए महकमे खुराक व अमूरी सार्फीन ने कौमी गजाई तहफ्फुज NFSA और NPHH स्कीमों के तहत अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने के लिए मुख्तस गजाई अजनास पेशगी हासिल करने और तकसीम करने का फैसला किया है। यह फैसला एहतियाती कदम के तौर उठाया गया है ताकि बारिशों के मौसम में पैदा होने वाले मुमकिन नकल हमल और गजाई अजनास से मुतलिक मसाइल से निपटा जा सके। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने यूटी में सभी खस्ताहाल सड़कों पर मेकडम बिछाने का सरकार से मुतालबा किया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि सड़कों की खस्ताहाली से सियाहत मुतासिर हो रही है और आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वादी के एक मारूफ रेडियो और टेलीविजन अदाकार सज्जाद खान इंतकाल कर गए हैं। उन्होंने रेडियो और दूरदर्शन के कई ड्रामों में अपनी फनकारी के जौहर दिखाए हैं। कई अदबी व समाजी शख्सियात और अंजुमनों ने उनके इंतकाल पर सदमे और दुख का इजहार किया है। दूरदर्शन श्रीनगर के साबिक DDG डॉ रफीक मसूदी, नामवर थिएटर एक्टर और डायरेक्टर मुश्ताक अली अहमद खान, सागर कल्चरल फोरम के सरपरस्त सागर नजीर, रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन के सदर साहिल डार, JNK रेडियो दूरदर्शन आर्टिस्ट्स एसोसिएशन, इंद्र कल्चरल फोरम सुंबल, महक ड्रामेटिक क्लब समेत कई अदबी और सियासी व समाजी शख्सियात ने सज्जाद खान की वफात को अदाकारी के शोबे के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान करार देते हुए सोगवार कुंभे के साथ ताजियत की है। बुलंदपाया वली हजरत सईद मीर मीरक अंद्राबी रहमतुल्लाही अलैह के उर्स पाक के सिलसिले में आज उनके आस्थानी आलिया वाका मलारटा श्रीनगर में खतमातुल मुअज्जमात और दुरूद अजकार की मजलिस मुनक़द हुई। उधर हजरत ख्वाजा मसूद वली रहमतुल्लाही अलैह का उर्स भी आज पांपोर में उनके आस्थानी आलिया पर मनाया गया। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने आज सऊदी अरब की जेल से कश्मीरी नौजवान की रिहाई और उनकी बहिफाजत वतन वापसी पर मरकजी वजीर खारजा डॉ SJ शंकर का शुक्रिया अदा किया है। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में कल रात खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन ने अर्जेंटीना को 0 के मुकाबले 1 गोल से हरा दिया। मुकर्ररा 90 मिनट तक दोनों टीमें कोई गोल न कर सकी, जिसके बाद दिए गए इजाफी वक्त में फेरॉन टोरियस ने गोल करके स्पेन को कामयाबी दिला दी। इस फतह के साथ स्पेन ने अपना दूसरा फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया है। इससे पहले 2010 में स्पेन ने पहली बार आलमी ट्रॉफी अपने नाम की थी। मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:34 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:40 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
2: तीनों कॉलेज में
3: डोंट वरी,
2: फीस तो देखो
4: क्या हाल है, क्या हुआ?
3: फीस की टेंशन,
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
5: रास्ता क्लियर, बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहा है मिठाई?
6: RBI कहता है
7: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: सामीन आदाब, आज का तबसरा लेकर हम हाजिर। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी अजला में कहर अंगेज बारिशों के बाद सैलाब आने और चट्टाने खिसकने से जो मालो जान का नुकसान हुआ।

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: प्रोग्राम वादी की आवाज़ सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारी तरफ से खलूस भरा सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बखैर वाफियत होंगे। बात करते हैं प्रोग्राम में मुल्की, मकामी और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल पर। समीन, आज हम भारत की तेज़ रफ्तार तामीर और तरक्की, मौशी इस्तेकाम और आलमी मंजरनामे में इसका उभरता हुआ किरदार। आज की दुनिया में किसी भी मुल्क की ताकत का अंदाज़ा सिर्फ उसकी अस्करी सलाहियतों से नहीं, बल्कि उसकी इक्तिसादी कुव्वत, साइंसी तरक्की, तकनीकी महारत, सनअती पैदावार और इंसानी वसाइल की इस्तेदाद से लगाया जाता है। इसी तनाजुर में अगर गुज़श्ता एक दहाई के दौरान भारत के सफ़र का जायज़ा लिया जाए तो मालूम होता है कि मुल्क ने मुख्तलिफ शोबों में नुमायां पेशरफ्त की है और ख़ुद को आलमी मशियत के एक अहम मरकज़ के तौर पर मनवाने की कोशिश की है। समीन, आलमी वबा, बैन अल-अक़वामी तनाज़ात, तवानाई के बहरान और आलमी तजारती निज़ाम में पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद भारतीय माशियत ने नस्बतन बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारे और इक्तिसादी माहरीन भी इस अमर की निशानदेही करते रहे हैं कि आने वाले बरसों में आलमी इक्तिसादी नमो में भारत का किरदार मज़ीद बढ़ सकता है। भारत की तरक्की का एक बड़ा मुहरिक उसकी नौजवान आबादी है। करोड़ों नौजवान तालीम, हुनर, टेक्नोलॉजी और कारोबारी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। यही नौजवान कुव्वत मुल्क के लिए एक अजीम इंसानी सरमाया साबित हो रही है। हुकूमत और निजी शोबे की जानिब से महारतों के फरोग, स्टार्टअप कल्चर और इख्तियारात की हौसला अफजाई ने नई नस्ल के लिए बेशुमार मौके पैदा किए हैं। टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत ने गुज़श्ता बरसों के दौरान गैर मामूली कामयाबियां हासिल की हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, मसनूई जहानत, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और फिनटेक के शोबों में भारतीय इदारे आलमी सतह पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। डिजिटल अदायगियों के निज़ाम और ऑनलाइन खदमात ने मौशी सरगर्मियों में शिफाफियत और सहूलत पैदा की है, जबकि दही इलाकों तक जदीद टेक्नोलॉजी की रसाई भी बतदरीज बढ़ रही है। समीत, बुनियादी ढांचे की तरक्की को भी मौशी इस्तेकाम का एक अहम स्तून समझा जाता है। मुल्क भर में शहराओं, एक्सप्रेसवेज, रेलवे नेटवर्क, मेट्रो रेल मंसूबों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों की तोसी पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। बेहतर राबिता निज़ाम न सिर्फ तजारत को फ़रोग देता है बल्कि सरमायाकारी, सयाहत और सनअती तरक्की के लिए भी साजगार माहौल फराहम करता है। सनअती शोबे में खुद इन्हिसारी और मकामी पैदावार के फरोग के लिए मुख्तलिफ इकदामात किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन साजी, काबिल तजदीद तवानाई, सेमी कंडक्टर्स, दिफाई पैदावार और खलाई टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में सरमायाकारी के नए इम्कान पैदा हुए हैं। मुतअद्दिद बैन अल-अक़वामी कंपनियां भी भारत को एक अहम पैदावारी मरकज के तौर पर देख रही हैं, जिससे रोजगार और सरमायाकारी के मौकों में इजाफा हो रहा है। समी, ज़रई शोबा भारतीय मईशत की रीढ़ की हड्डी तस्वर किया जाता है। अगरचे जदीद सनअती और तकनीकी तरक्की ने मईशत को नई सिमत दी है, ताहम मुल्क की एक बड़ी आबादी अब भी ज़राअत से वाबस्ता है। जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी, बेहतर बीज, आपाशी के निज़ाम और ज़रई मार्केटिंग में असलाहत के जरिए पैदावार बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं ताकि दही मईशत को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। इसके साथ साथ काबिल तजदीद तवानाई के मैदान में भी भारत अहम पेशरफ्त कर रहा है। शमसी और हवा से तवानाई पैदा करने के मनसूबों पर सरमायाकारी बढ़ रही है, जिसका मकसद तवानाई के रिवायती ज़राए पर इन्हिसार कम करना और माहौलियाती तहफ़ को फ़रोग देना है। समीन, बैन अल-अक़वामी सतह पर भी भारत

आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़ आकाशवाणी श्रीनगर से। अब बात पाकिस्तान की। समीन, इस बात से इनकार मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां इसे बैक वक्त कई दाखिली और खारजी चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ मुआशी इस्तेकाम की कोशिशें जारी हैं, दूसरी तरफ सियासी इख्तिलाफात, सिक्योरिटी खदशात और इलाकाई कशीदगी भी कौमी मंजरनामे पर असरअंदाज हो रही है। सियासी सूरतहाल पर नज़र डालें तो गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान पाकिस्तान की सियासत शदीद उतार चढ़ाव का शिकार रही है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात बदस्तूर मौजूद हैं। इंतखाबी शिफाफियत, अदालती फैसलों, पार्लिमानी अमल और सियासी जमातों के किरदार के हवाले से मुख्तलिफ आरा सामने आती रहती हैं। सियासी मुबसरीन का कहना है कि पाकिस्तान को दरपेश मौशी और सलामती के चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी सतह पर मफामत और सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है, क्योंकि सियासी कशीदगी अक्सर इक्तिसादी सरगर्मियों और सरमायाकारी पर भी असरअंदाज होती है। समीन, अगर मुआशी सूरतहाल का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान की मईशत गुज़श्ता चंद बरसों में शदीद दबाव का शिकार रही है। महंगाई, कर्जों का बोझ, तवानाई के मसाइल और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी जैसे अवामिल ने अवामी ज़िंदगी को मुतासर किया। हुकूमत मालियाई नज़्म व ज़ब्त, टैक्स असलाहत, बरामदात में इजाफे और गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए मुख्तलिफ इकदाम कर रही हैं। बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ तआवुन के नतीजे में मौशी इस्तेकाम की कोशिशों को तकवीत मिली है। अगरचे अफराद ज़र की शरह में कुछ कमी वाक़िया हुई है, लेकिन आम शहरी अब भी महंगाई, बेरोज़गारी

0: इस फिल्मी नगमे के साथी प्रोग्राम वादी की आवाज़ का आज का अपना वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। आपसे लेते हैं इजाज़त, खुदा हाफिज।
1: वादी की आवाज़। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

0: आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे वादी की आवाज। यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। मीडियम 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8:30 हो रहे हैं। समाप्त करें खेलों से मुतल्लिक प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम। प्रोग्राम से पहले ये वक्फा।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तहत सब 60 करोड़ लूक 5 लक्षन तम मुफ्त इलाज हकदार वनुक तम चु 2 करोड़न इलाज सपुद यम सीत गरीब गरन इलाजस पे सपदन वाली खर्च किन 2 लक्षन करोड़न हंस बचत सब अस करियो आयुष्मान ऐप डाउनलोड तो बनायो आयुष्मान का जानकारी बापत करियो 1455555 फोन नंबर पे रबित कई
1: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में जहां मिलेंगी इंग्लिश हिंदी उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर टुगेदर वी रीड टुगेदर वी lead
2: Sports Time लेकर हम हाजिर। स्पेन दूसरी मर्तबा वर्ल्ड कप फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया। अर्जेंटीना अपने टाइटल का दिफा न कर पाई। वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 क्या कुछ हुआ और किस तरह का रहा, इसी पर आज के प्रोग्राम में बात होगी मारूफ स्पोर्ट्स तजियाकार सईद हिमायूं कैसर के साथ। उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोग्राम

0: कुछ भी नहीं। हाँ, एक गोल हुआ स्पेन को, लेकिन सिमोन ने 9 गोल बचाए हैं। मार्टिनेज ने फाइनल में 11 बचाए,
1: 11 सेव्स की।
0: टूर्नामेंट में तो पूछे ही नहीं उसको, नहीं। रॉड्रिगो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, नो असिस्ट, नो गोल, क्रिएटिविटी में पता नहीं 80th नंबर उनका। क्रिएटिविटी में मेसी सेकंड, मेसी 8.9, वो 5.4 राइटिंग में। अच्छा, स्किल में मेसी 8.9 कुछ, वो 6 कुछ। और मेसी 5 मैन ऑफ द मैच, फिवाने का ये ऑलरेडी ले चुका है ना एक टूर्नामेंट में मैन ऑफ।
2: क्या इस वर्ल्ड कप को हम इस तरह से देख सकते हैं कि मेसी और रोनाल्डो के लिए इंटरनेशनल करियर अब उनका इख्तिताम की तरफ गामजन है?
0: ये तो है, वर्ल्ड कप तो लास्ट ही है, और कई एक का है, कांटेगा का उनका है, हैरी केन का आपको नहीं पता है, कई और खिलाड़ी हैं। मैं ऑटोमेंडी का लास्ट है, अब बड़े स्टेज पे आके वो ऐसा परफॉर्म नहीं कर सकता। इस वर्ल्ड कप में प्रॉब्लम उनकी क्या हुई वो हमें मैच के बाद दिखा, जब उन्हें मैच हारा। आखिरी मैच है वर्ल्ड कप का उनका, और शायद इंटरनेशनल भी आखिरी। एक भी अपना प्लेयर टीम का उनसे हाथ मिलाने नहीं आया,
2: कंसोल करने नहीं आया,
0: हाथ मिलाने भी नहीं। सो ही इज नॉट वांटेड इन द टीम, क्यों? ही इज टू इंडिविजुअलिस्टिक। उनको पास चाहिए गोल करने के लिए, लेकिन वो गोल में किसी को पास नहीं देंगे। अगर उनके बगैर, ये मैं कह रहा हूँ लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर वो नहीं होते शायद पुर्तगाल सेमीफाइनल या फाइनल खेलता। उनकी वजह से टीम उनके साथ नहीं थी, ना वो टीम के साथ।
2: तो इस वर्ल्ड कप में कुछ ऐसी टीमें भी नजर आई जो बिल्कुल हम कहेंगे कि माइक्रोनेशन से उठ के आई थी, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल केप वर्डे है। तो उन्होंने अबोदियर वेट पंच किया इस, जो कि फुटबॉल के गेम के लिए बहुत ही अच्छी खबर है।
0: सही।
2: आपने कैसे देखा इस टीम को?
0: कुछ कुछ जो प्लेयर थे, पुराने थे उसमें अर्जेंटीना के, उन्होंने कहा था कि माइंड दिस टीम, हमने इसको काबो वर्डे को खेलते देखा है। और रिटायर्ड प्लेयर ने कहा था, उन्हें दिखा दिया वो करके, और बहुत बाकी टीमें भी अच्छा खेली। लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट रही सीरियस मोरक्को, जब उनका फ्रांस के साथ क्वार्टर फाइनल था, थ्रू आउट द मैच दे डिड नॉट ट्राई एनीथिंग, उन्हें कुछ भी नहीं किया सिवाय बॉल रोकी और फ्रांस के प्लेयर को दी, एक भी बार उन्होंने कोई ऐसी कोशिश नहीं की। और पिछले वर्ल्ड कप में आप देखिए मोरक्को के अटैकिंग फुटबॉल खेल,
2: बिल्कुल
0: वही अफ्रीका का रिप्रेजेंटेटिव बचा था,
2: बिल्कुल वही बचे थे।
0: और जो उसके बाद ले दे हुई, सारे रेफरीज या रेफरी के चेयरमैन ने बता दिया, इवन सलाह ने कोई प्रोटेस्ट नहीं की, कोई गलत बात नहीं की, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, उनको पता होता है ये चीजें, और ये फिजिकल गेम है, यू विल बी पुश्ड। अभी अलग बात है कि फाइनल में मेसी वाज किक्ड, ही वाज एल्बोड, और बाकी प्लेयरों को
2: ये सारा ओवरलुक हो गया,
0: और ये ओवरलुक हो गया, और स्पेन को कोई भी येलो कार्ड नहीं मिला, अर्जेंटीना को 5 येलो कार्ड, 1 रेड कार्ड।
2: इस टूर्नामेंट में एक खिलाड़ी को बहुत फॉलो किया मैंने भी, जाती तो सोशल मीडिया पे एक हवा बना उस खिलाड़ी का, अर्लिंग हॉलैंड, क्या जबरदस्त प्लेयर है, और नॉर्वे को लोन शोल्डर्स पे आगे लेके।
0: अब आप देखिए ना सिटी में क्या खेलते हैं, कमाल के गोल करते हैं। उनकी खास बात क्या है, वो भी गोल पोचर है, वो ऑलराउंड फुटबॉलर नहीं है, लेकिन वो शख्स किसी डायरेक्शन में कहीं से टांग सर के ऊपर चढ़ा सकता है, टेढ़े मार सकता है, पीछे से मार सकता है, वो कुछ अजीब सा है, और 6.5 फुट का है,
2: बिल्कुल
0: सुपर एथलीट है वो। और उसकी नजर में ये बॉक्स गोल का बराबर होता है, जब वो मुड़के मारता है तो वही मारता है,
2: बिल्कुल।
0: एक और आप भूल गए, यमाल,
2: लमीन यमाल, 19 साल का,
0: 19 years old,
2: बिल्कुल।
0: और क्या स्पीड है बंदे के पास, क्या कंट्रोल है बॉल का, मुझे लगता है रोनाल्डिन्हो और मेसी के बाद हमें ऐसा दिखता है खिलाड़ी जो बॉल रखता है अपने पास और देगा नहीं।
2: एग्जैक्टली। इसके बाद इस वर्ल्ड कप में VAR और रेफरिंग का जो मसला सामने आया, कंट्रोवर्सीज बहुत रही,
0: इनकंसिस्टेंसी थी,
2: इनकंसिस्टेंसी थी, बेटर ये वर्ड रहेगा। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया गया था, कहीं ना कहीं लगा कि फीफा इसमें कुछ अच्छा काम नहीं कर पाया।
0: जो कुछ लोगों ने कहा कि सारे रेफरी चोर हैं, नहीं हो सकता, हम इंटीग्रिटी डाउट नहीं कर सकते किसी भी रेफरी के, फाइनल हो या कोई मैच हो, नहीं कर सकते, वहां बड़े मुश्किल होते हैं डिसीजन लेने। हाँ, आप ये सही कहते हैं कि कौन सा वार को रेफर करना है कौन सा नहीं, ये मामला हो गया, कुछ कहा मेसी को या बेलिंगम ने कहा तो वार यूज नहीं हुआ, लेसर टीम थी वार यूज हुआ, रेड कार्ड दिखाया गया उनको, या सही कह रहे हैं, ऐसे ओकेजन हैं। लेकिन इसमें आरसे वेंगर जो हैं, इनके वो टेक्निकल डायरेक्टर हैं, वो ग्रेट आदमी हैं, फुटबॉल के मैनेजर हैं, उनकी बहुत चीजें जो इनको माननी पड़ेंगी। वो कहते हैं ये जो ऑफसाइड की भी लाइन बनाते हो ना, अगर मूछ का बाल भी पार है ऑफसाइड है, नहीं, हाफ बॉडी रखो, इसमें गेम फास्ट हो जाएगी, गोल होंगे। तुम कहते हो उसका टो था बाहर, ग्राफिक डिजाइन बनता है, मगर इसी ग्राफिक डिजाइन में जब गोल किया ईरान ने बेल्जियम को, वो ऑफसाइड नहीं था, उसके 5 फुट पीछे बेल्जियम का खिलाड़ी था, वो वार ने नहीं देखा। जब उन्हें इजिप्ट को गोल किया, वो वार ने नहीं देखा। जब कोलंबिया ने गोल किया, घाना ने गोल किया, तब किसी ने बात नहीं की कि उनके साथ कुरेशा के साथ चोरी हुई, सिर्फ अर्जेंटीना के पीछे पड़ गए, क्योंकि वो एक कैंपेन चलाया गया था थ्रू एन एजेंसी, अब वो रिवील हुआ है, जिसको पैसे दिए थे कुछ लोगों ने।
2: तो फुटबॉल की बातों को یہاں پہ روکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک سوال فٹ بال سے ہی ریلیٹڈ, کیا آپ کو لگا کہ یہ ورلڈ کپ اوور کمرشلائز ہوا تھا, ہائیڈریشن بریکس کے نام پہ, کمرشل بریکس کے نام پہ فلو آف دا اسپورٹس کو روک دیا گیا تھا؟

0: बिल्कुल सही है, इस गेम को नहीं चाहिए। ये आज से 30 साल पहले मैराडोना ने कहा है, दे विल डिवाइड दिस गेम इनटू 4 क्वार्टर्स ऑफ 25 मिनट्स ईच। अब आपको वही लग रहा था
1: exactly.
0: 100 मिनट की गेम बनाएंगे या वैसे ही। अब आप ये एक बात देखिए, ईरान के साथ क्या हुआ, उज़्बेकिस्तान के साथ क्या हुआ, रेफरी को वापस भेजा गया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कितनी हुई थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। आप खेल रहे हैं इतनी ज्यादा गर्मी में अमेरिका में और टोटल ठंड में कनाडा में और 6,500 की हाइट पे मेक्सिको में। ये क्या किस्सा है फुटबॉल खिलाने का तरीका।
1: यहाँ पे फुटबॉल की इन बातों को इख्तिताम देते हैं और बात करते हैं, ट्रूएस्ट जेंटलमैन ऑफ द गेम इस दुनिया से चले गए, द जेंटलमैन गेम हैज लॉस्ट इट्स ट्रूएस्ट जेंटलमैन गैरी सॉबर्स।
0: पहले जेंटलमैन गेम पे तो मैं एग्री नहीं करता हूँ, वो रहने दीजिए, ये जेंटलमैन गेम है। जेंटलमैन गेम अंग्रेज कहते थे इसलिए कि तब भी रेशियल कॉमेंट था ये कि हमारे लॉर्ड्स और रॉयल ब्लड की गेम है, आम आदमी की नहीं है, हम जेंटलमैन है, प्लेयर है। दूसरी चीज कहूंगा, ग्रेटेस्ट क्रिकेटर हु एवर लिव्ड हैज डाइड, नॉट जेंटलमैन ओनली। आप ग्लो कैलिस की बात करते हैं, कैलिस ने 162 टेस्ट खेल के रन बनाए ना, इन्हें 8,32,93 में बनाए, उनने 292 विकेट लिए 162 टेस्ट में, इसने 235 लिए 93 में। और ही कुड बॉल लेग स्पिन, ही कुड बॉल चाइना मैन, ही कुड बॉल फास्ट, ही कैन कीप विकेट्स, फर्स्ट लिस्ट में रख सकता, आउटफील्ड में रख सकता था, ओपनर निकल सकता था, 11वां निकल सकता था, ये आदमी पैदा नहीं हुआ दूसरा। और मैं आपकी दिलचस्प बात इनकी ये बताऊंगा कि जब ये पवेलियन में होते थे, टीम बैटिंग कर रही होती, ये सोते थे, फिर इनको जगाया जाता था, कहते थे आपकी बारी है, बैटिंग करने जाते थे। इनसे पूछा गया ये क्या है, कहा जब वो बैट्समैन बैटिंग करने जाते हैं, वो विकेट पे जंपे मारते हैं, बॉल स्विंग हो रही है, बॉल टर्न हो रही है, मैं बाहर परेशान रहूंगा देख के, मैं जाता हूँ, मेरे फ्रेश विकेट है, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं अपनी मर्जी से खेलूंगा। थाई गार्ड्स पूरी जिंदगी नहीं पहना आदमी ने, दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर्स को फेस किया अपने जमाने के, अपने बारबेडोस में जहां थे वहां ग्रिफिथ हॉल वगैरह सबको थाई गार्ड नहीं पहनता था बंदा, हेलमेट की तो बात ही नहीं। और आपको दिखता है रिचर्ड्स का स्वैग, इनकी शर्ट के बटन खुले, यहाँ तीनों बटन, हाथ में बैट, रिचर्ड्स से ज्यादा क्लास और टेरिफाइंग ये बंदा मैदान में उतर।
1: There can never be a...
0: इनको किंग क्रिकेट डिक्लेयर किया गया था, ही इज। और इनके 254 रन जो इनने वर्ल्ड 11 की तरफ से बनाए थे मेलबर्न में लिली के एंड कंपनी के खिलाफ, ब्रेडमैन ने कहा ग्रेटेस्ट इनिंग्स आई हैव एवर सीन। उसके पस मंजर में यह है कि 58 पे इससे पहले ऑल आउट हो गई थी वर्ल्ड 11, लिली ने 8 विकेट लिए थे 29 रन पे, बिल्कुल छोटे थे, फायर ब्रांड, लोगों ने कहा सोबर्स डरता है इससे, अब दो प्लेयर आउट हो या तीन तो किसी और को बैटिंग करने जाना है, सोबर्स आए बैट उठाए और चले गए मैदान में।
1: इख्तिताम पर, इंडिया अभी इंग्लैंड में है और इंडिया की टीम की दुर्गत,
0: इसमें 29/8 लिया उन्होंने, कहा सोबर्स डरते हैं लिली से, वर्ल्ड 11 के कैप्टन है, बारी किसी और की थी, बैट उठाया मैदान में उतर गए, लगे जब तक इसने 100 रन बनाए, सिर्फ बैट बॉल पे आता है ना, टांग आती है लाइन में ना सर, और चौके और छक्के मार रहा है, उसके बाद ये बंदा सेटल हो गया और इसने रन बनाए, तो सोबर्स तो पैदा नहीं होगा दूसरा।
1: इख्तिताम पर हमारे सामीन के लिए बताएं कि इंडिया की टीम अभी इंग्लैंड में है और हालत खराब है इंडियन टीम की, T20s में भी और वनडेज में भी, व्हाट आर द रीजंस, अचानक से क्या हुआ
0: जो पाकिस्तान को हुआ। अगर आप अनसर्टेंटी पैदा करेंगे प्लेयर में, तुम खेलेगा अगला मैच या नहीं खेलेगा, मैं किसी और को खिलाऊंगा, मेरी मर्जी से लोग खेलेंगे, तो प्लेयर डिलीवर नहीं करेंगे, वो डरेंगे।
1: बिल्कुल,
0: आप वॉशिंगटन सुंदर को प्रेफर करेंगे, ब्रार को, अपने आदमियों को खिलाएंगे सारे टाइम और कहेंगे डिलीवर करेंगे, वो भी प्रेशर में होते हैं, उनको पता हमसे बेटर रिप्लेसमेंट है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, IPL पूरा खेलते हैं बुमराह, इंडियन टीम में आते हैं तो अनफिट हो जाते हैं,
1: अनफिट हो जाते हैं। तो इसी बात के साथ हम अपने सामीन से इजाजत लेते हैं आज के प्रोग्राम से। ये प्रोग्राम सुनकर आप बहुत ही महजूज हुए होंगे क्योंकि हम स्टूडियो में बैठ के खुद भी हुमायूं साहब के तजियात से बहुत ही महजूज हुए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हुमायूं साहब आपका भी शुक्रिया।
2: आज के स्पोर्ट्स टाइम से हमें यहीं पे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
3: स्पोर्ट्स टाइम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से।

0: संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनौ में स्टेफान सेल मारिसे स्वेंट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आज़ादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनौ में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
3: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को

0: गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश लेने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली SIT को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स द्वितीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
1: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
0: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
3: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: हिमाचल प्रदेश के

0: कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेन देन में 314 लाख करोड़ रुपये का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है।

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शोरगुल के साथ शुरू हुआ। दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुख्तलिफ मामलात पर शोर शराबे की वजह से बार बार मुलतवी करनी पड़ी। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में मुजाहिरीन के साथ बातचीत की है। उन्होंने धरना खत्म करने और मामूल के हालात बहाल करने की अपील की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोलदोवा के दरमियान मजबूत इकतसादी शराकतदारी और आला तरक्की वाले शुबों में इश्तराक बढ़ाने पर जोर दिया है। जम्मू डिवीजन में शदीद बारिश से मजीद 4 लोगों की जान चली गई है, जिससे पिछले 2 रोज में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकज के ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाके के मुख्तलिफ ज़िलों में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल बहुत शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया गया है। और लेबर पार्टी के लीडर एंडी बर्नहैम ने बरतानिया के नए वजीर आजम की जिम्मेदारी संभाल ली है। अब खबरें तफसील से। मानसून इजलास के पहले दिन आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में बार बार रखना पड़ा। अपोजिशन पार्टियां नीट पेपर लीक मामले समेत मुख्तलिफ मामलात पर हंगामा आराई करती रहीं। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई की शुरुआत हाल ही में फौत हुए अपने 6 साबिक अराकीन पार्लियामेंट को ताजियत पेश करने के साथ हुई। ऐवान ने कतर के अमीर के वालिद शेख हमद बिन खलीफा अल सानी को भी खिराज अकीदत पेश किया। तहम वक्फे सवाल की कार्रवाई नहीं चल सकी क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अपोजिशन अराकीन नीट मामले पर नारेबाजी करने लगे। पहले स्पीकर ओम बिरला और बाद

प्रिसाइडिंग अफसर दिलीप साइकिया की जानिब से ऐवान में नज़्म व नस्क बरकरार रखने और कार्रवाई चलने देने की बार बार अपीलों के बावजूद एहतजाज जारी रहा, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इधर राज्यसभा की कार्रवाई में भी बार बार रखना पड़ा। राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत 9 मुंतखब अराकीन की हलफबरदारी से हुई, जिसके बाद 4 साबिक अराकीन के इंतकाल पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। अपोजिशन अराकीन की जानिब से नीट पेपर लीक मामला और दीगर मामले उठाए जाने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई कई मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। हालांकि चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्यूटी चेयरमैन हरिवंश ने कामकाज चलाने की कई मरतबा कोशिश की। राज्यसभा की कार्रवाई भी बाद में दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए एक सूदमंद मानसून इजलास पर जोर दिया है कि जिस तरह एक अच्छा मानसून मुल्क के लिए मुफीद होता है, उसी तरह एक तामीरी पार्लियामेंट मुल्क की तरक्की में तआवुन करती है। इजलास के शुरू होने से पहले मीडिया से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवान नए संगमील हासिल कर रहे हैं, जिससे इस्लाहात की कामयाबी और भारत की बढ़ती सलाहियतों का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता महीने की हुसूलियाबियों ने, जिनमें खलाई शोबा शामिल है, हर भारतीय को फख्र का एहसास कराया है। आलमी महाजाराई खासतौर पर मगरबी एशिया का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने तवानाई, खाद और दीगर ज़रूरी अशिया की सप्लाई से मुतालिक चैलेंजों का कामयाबी से सामना किया है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि इन चैलेंजों के बावजूद मुल्क ने 7.7% की शरह तरक्की दर्ज की है, जो उसे दुनिया की तेज़ी से तरक्की कर रही अहम मईशत बनाता है। जनाब मोदी ने एतमाद जाहिर किया कि मानसून इजलास मुल्क की तरक्की के सफ़र को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। मरकजी वज़ीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मुजाहिरीन के नुमाइंदों से मुलाकात की। जनाब नड्डा ने कहा कि हुकूमत से बात करने की तजवीज़ आज सुबह मुजाहिरीन की जानिब से आई। जनाब नड्डा ने कहा कि यह मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और मुजाहिरीन के वफद के साथ तफसील से शुरुआती ज़बानी बातचीत हुई। इसके बाद मुजाहिरीन के वफद ने सहपहर 4 बजे के करीब हुकूमत को एक तहरीरी अर्जदाश्त सौंपी। जनाब नड्डा ने सभी मुजाहिरीन से धरना ख़त्म करने और इंतजामिया को मामूल के हालात बहाल करने में मदद करने की अपील की। दिल्ली पुलिस ने इस दौरान मुजाहिरीन से कौमी राजधानी में अमन व अमान बरकरार रखने, तहमुल बरतने और कानून नाफिज करने वालों के साथ तआवुन करने की अपील की, ताकि अमन व कानून की अवामी सूरत हाल को यकीनी बनाया जा सके। अपने वीडियो पैगाम में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव रंजन ने लोगों से तशद्दुद से बाज रहने, पुलिस हिदायत पर अमल करने और सोशल मीडिया पर अफवाहें या गैर मुसद्दका इत्तलात फैलाने से गुरेज करने की अपील की। जनाब राजीव रंजन ने शहरियों से मालूमात के लिए मुस्तनद ज़राए पर इन्हिसार करने की भी अपील की। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया की इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि एहतजाज कर रहे अभिजीत दिपके को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इन इल्ज़ाम को बिल्कुल गलत करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश हुकूमत से कहा है कि वो अयोध्या के राम मंदिर मुबैना चंदा गबन मामले में खसूसी जांच टीम SIT तश्कील देने के इम्कान पर गौर करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजारों को खबरदार किया कि वह इस मामले को सियासी रंग न दें। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहाना पर मुश्तमिल बेंच ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो SIT की तश्कील के बारे में हिदायत हासिल करें कि क्या मुकामी पुलिस की बजाय उस SIT पर भरोसा किया जा सकता है जो FIR दर्ज होने से पहले इस पूरे मामले की जाँच कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट 27 जुलाई को इस मामले की अगली समाअत करेगी, जब उत्तर प्रदेश हुकूमत इस मामले में SIT जांच के बारे में इत्तला देगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने आज कहा है कि पेट्रोल में 20% से ज्यादा एथेनॉल की आमिजिश किए जाने के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए पेट्रोल और कुदरती गैस के वजीर मुमलकत सुरेश गोपी ने कहा कि इथेनॉल की आमिजिश में इजाफे के सिलसिले में कोई भी फैसला तफसीली, साइंसी और तकनीकी मुताले और सभी मुतालका फरीकों के साथ सलाह मशवरे के बाद ही किया जाएगा। वजीर मौसुफ ने कहा कि E20 कोई नया ईंधन नहीं है और उन्होंने मजीद कहा कि इथेनॉल एक सदी से ज़्यादा दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता आ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का पेट्रोल में इथेनॉल आमिजिश प्रोग्राम साल 2001 में पायलट प्रोजेक्ट के साथ शुरू हुआ था। जनाब गोपी ने कहा कि E20 की जानी मुंतकली रफ्ता रफ्ता शवाहिद पर मबनी और साइंसी जायजे की बुनियाद पर हो रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल की आमेजिश में साल 2013-14 के 1.53% से साल 2025-26 में 20% का इजाफा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत का मकसद साइंस

0: पर बादल छाए रहने की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक कल राजधानी दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31 से 33 डिग्री जबकि कम से कम दर्जे हरारत 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। लेबर पार्टी का लीडर मुंतखब होने के बाद एंडी बर्नहैम ने बरतानिया के नए वजीर आजम की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। कीर स्टारमर के इस्तीफा देने के बाद शाह चार्ल्स स्वयं ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 साल साबिक मेयर को नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदऊ किया। इससे कबल कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर अपना आखिरी खिताब किया जिसके बाद वो बाजाब्ता तौर पर अपना इस्तीफा देने के लिए बकिंगम पैलेस गए। उन्होंने कहा कि वो जनाब बर्नहैम को जिम्मेदारी सौंप रहे हैं और उन्होंने लेबर पार्टी के नए लीडर को अपनी मुकम्मल हिमायत का अज़्म किया। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में आबो हवा की तब्दीली से मुतालिक अक्वामे मुत्तहदा फ्रेमवर्क कन्वेंशन के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी साइमन स्टील से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब यादव ने कहा कि मुलाकात के दौरान आबो हवा की तब्दीली की रोकथाम के तरीक़ेकार को अपनाने, टेक्नोलॉजी के मुंतकली, माहौलियात से मुतालिक मालियात, आलमी सतह पर जायजे और टेक्नोलॉजी की मसावियाना मुंतकली जैसे मौजूदात पर तवज्जो मरकूज़ की गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़्यादत में भारत ने न सिर्फ कौमी सतह पर अपने तयशुदा अहदाफ को मुकर्रर वक्त से पहले हासिल किया बल्कि आबो हवा की तब्दीली के बहरान से निमटने के लिए दीगर शोबों में भी अहम पेशरफ्त की है। वज़ीर आज़म ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि भारतीय टीम ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल मॉर्फोलॉजी और सिस्टेमेटिक्स के अलावा प्लांट कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जैसे मजामीन में गैर मामूली जानकारी फराहम की है जो कि एक अजीम कारनामा है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शोरगुल के साथ शुरू हुआ। दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुख्तलिफ मामलों पर शोर शराबे की वजह से बार बार मुलतवी करनी पड़ी। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में मुजाहरीन के साथ बातचीत की। उन्होंने धरना खत्म करने और मामूल के हालात बहाल करने की अपील की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोलदोवा के दरमियान मजबूत इकतसादी शराकतदारी और आला तरक्की वाले शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर जोर दिया। जम्मू डिवीजन में शदीद बारिश से मजीद 4 लोगों की जान चली गई जिससे 2 दिनों में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके के मुख्तलिफ जिलों में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बहुत शदीद बारिश से मुतालिक कल रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
2: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है।
3: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
4: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
2: मीटिंग 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। सुमीन, आज वादी के मारूफ रेडियो और टीवी अदाकार साजिद खान का इंतकाल हुआ। बतौर खराज अकीदत पेश है बशीर अहमद गिलकार का तहरीर करदा उर्दू ड्रामा रास्ता कहाँ है। इसमें नुमाइयां आवाज है साजिद खान साहब की।

0: 멋있어 잘하고.
1: 저도 무죄. 저도 무죄.
0: 라스데도.
1: 라스닥데도. 인베이트 기백간이 말이야 마수세. 마트가로 메라 따고. 메라 썰나카오 쇼르세. 마이트 로군 곧 잔다오. 배잔당 인산이 안고 자가 존걸 되니 말이스 이스 로슈니스 뜸 아프니 안들 기 시야히 아프니 드린느기 못세 나히 추바바오게 나히 추바서고게 주트 무트기 니크니 이티아르 흐루스가 물럼마 자하걸 아프니 차플로시 더라파나르 리아가리 깝깝딱 치바데 피로게. मैं तुम लोगों की असलियत जानता हूं. दिलों को लुभाने वाली इन खूबसूरत अदाओं कहकहों और जलवों के पीछे एक खूंखार मकसद है, मतलब है.
2: ए आदम की औलाद, इन चमकीले मलबूसात में कब तक मकरो फरीबी और वहशत का यह खेल खेलते रहोगे? कब तक अपनी स्याह कारियों को छिपाते रहोगे? कब तक इन पर पर्दा डाल डाल कर तारीख में अपने नाम निहाद कारनामे रकम कराते रहोगे? पर ये न भूल नादान, वक्त सब कुछ देखकर पढ़कर सुनकर अपने सीने में महफूज करता है और मुकर्ररा मौके पर सब कुछ बयां करता है, आयां करता है. याद रखो, तुम लोग मुझसे न छुपा सकोगे और न मुझसे छुप सकता है.
3: ऐ नादान लोगों, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुमको जानता हूं, पहचानता हूं. याद है तुम लोगों को हजारों सालों पर मुहित वो इंसानी सफर, वो तकदाव, वो दौड़ धूप, वो जद्दोजहद जिसका सिला असर हाजिर के इंसान की ये रिहाइशगाह है. मैं जानता हूं तुम लोगों को, सब कुछ याद है. तुम हर बात से, हर तगीर तबदुल से, हर इर्तका से आशना हो. तुम लोग हकीकत से क्यों आंखें मूंद रहे हो? सच्चाई से भाग रहे हो. तुम लोग एक तबाहकुंद रास्ते पर गामजन हो. लौटाओ, इस रास्ते से पलट जाओ. ये न भूलो, तुम लोग हवा के दोष पर तैरने वाले हवस के उस गुब्बारे में सवार हो जिसका गिरना, तबाह होना, बर्बाद होना यकीनी है. फिर तुम उठ न सकोगे. हयात की नब्ज रुक जाएगी, ठहर जाएगी, इंसानी सफर थम जाएगा और इस तरह तुम लोगों की दास्तान तमाम हो जाएगी. मुझे यहां से जाना चाहिए. हाँ, भागना चाहिए. यहां मेरा बसेरा नहीं हो सकता. छोड़ दो मुझे. मुझे रास्ता दे दो. मुझे रास्ता दे दो.

रास्ता कहाँ है? कहाँ है रास्ता? मुझे रास्ता चाहिए, रास्ता चाहिए। मैं यहां नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा यहां। शाम घुटन है, शर्मसारी है, जिल्लत है, रुसवाई है। रास्ता कहां है? कहां भूल आया हूं मैं वो राह, जिस राह से यहां आया था। कोई है? कोई है जो जो मुझे रास्ता दिखा दे? मैं कब तक चिल्लाता चीखता रहूंगा? कहां पाऊंगा मैं वो राह जो यहां से निकाल कर मुझे उन गारों गुफाओं में पहुंचा सके, जहां मुझे अपने आप को अशरफुल मखलूकात साबित करने के लिए यहां भेजा गया था, जहां मुझे बख्शी गई बेपनाह सलाहियत, सहानत, इल्म आगाही और फहम फरासत का मुजाहरा करने के लिए यहां लाया गया था। मगर मैं ये क्या कर बैठा हूं? क्या कर बैठा हूं? नहीं नहीं, मैं यहां नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा मैं यहां। मैं उकता गया हूं, जी नहीं लगता, मेरा कलेजा फटने को आया है। इस इंसान या माजगा में मेरा दम घुटा जा रहा है, जो लाखों बरस की इंसानी मुशक्कत से वजूद पा सका। मगर यह हजरत इंसान का मस्कन नहीं, बल्कि एक तंग तारीख जिंदान होकर रह गया है। मैं जिंदान की कैद से रिहाई चाहता हूं। अरे कोई है? कोई है जो मुझे यहां से निकाल सके, वापस लौटा सके? नहीं, अरे यहां कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूं और मेरे हजारों गिनौने रूप और अनगिनत खूंखार चेहरे।

ये मुंह छुपा के रोने वाला भी मेरा ही चेहरा होगा जो शर्म के मारे जमीन में खड़ी जा रही होगी। इसको मेरे ही किसी वैश्य रूप ने डस कर दागदार किया होगा। ये इंसानियत का आंसू नहीं, ये इंसानियत के जिगर का लहू बह रहा है। लहू हव्वा की अस्मत तार तार करने वाली इस भेड़ियों की बस्ती में क्यों कर मेरा बसेरा हो सकता है? जहां लूट भी मैं ही रहा हूं और लूट भी नहीं रह सकता हूं मैं यहां। नहीं नहीं, आखिर कहां छोड़ आया हूं मैं वो राह जिस राह से मैं यहां आया हूं? मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं। मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं? सब कुछ भूल चुका हूं, सब कुछ। पर इतना याद है, मेरी तखलीक इंसान के रूप में हुई थी। ये लाखों बहरूपिये कहां से आ गए हैं, कहां से आ गए हैं? ये एक दूसरे से क्यों गुत्थम गुत्था हो रहे हैं? मर रहे हैं, मार रहे हैं, मसल रहे हैं, पिछाड़ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी ये दीवानगी, ये जुनून नहीं देख सकता हूं। ये फितना परस्ती, ये चालबाजी, ये मक्कारी मुझसे

मुझसे देखी देखी नहीं जाती। काश काश जानने का रास्ता पाता, यहां से निकल जाता। इफलास भूख खाना विदोषी मुफलिसी की आग में चलकर खुट खुट कर मरना, जीने से बेहतर मौत को तरजीह देना, ये न मेरी तखलीक होने का मुद्दा था और न मुझे यहां भेजने का मकसद। अपनी बेजोड़ हिम्मत और आहनी हौसलों से वीरानों को आबाद, रेगिस्तानों को गुलिस्तान और सहराओं को सरसब्जो शादा वादियां कायम करने वाला हजरत इंसान आज अपने लामहदूद ख्वाहिशों के लौ में क्यों बहने लगा है? मैं वो नहीं हूं जो हिर्स व हवस, आराम आसाइश और ऐशो आशरत जिसका शेवा बन जाए। मैं वो हूं जो समुद्रों और पहाड़ों का सीना चीर के इंसानी हयात के लिए जरूरत दरियाफ्त करके हासिल कर गया। मैं ही आसमान के हदों को पार करके उन पुर असरार राजों को अफशां कर गया हूं जो अक्ल बसीरत अज़्म हिम्मत और खुदादाद तवानाई अमल में लाने की गर्ज से इंसानी बसारत से ओझल रखे गए थे। मैं अनगिनत इर्तिका से गुजर कर जाने कब से इंसानी हयात की बका और इंसानियत की सरबुलंदी के लिए अमल पैरा होता आया हूं, पर अब इंसान की तखलीक होने का हमागीर मकसद मैं क्यों कर फरामोश कर बैठा हूं? क्यों भूलता जा रहा हूं? कहां गया वो मतलब वो मकसद जिसके लिए मुझे वजूद में लाया गया? मैं क्यों बाद अस हयात व ममात में शामिल होना भूल कर दूसरों पर छपट छपट के एक हाथ से तिजोरियों की तिजोरियां भर रहा हूं और दूसरा हाथ इस हाथ के आगे फैलाता रहता हूं, खिड़खिड़ाता हूं महरूमी मजबूरी और अफसुर्दगी का रोना रोता रहता हूं। ये फुहार है, फरियाद है पेट की आग की, उरियां तन की, सर पर छत छत होने की। ये मुख्तार हंसा है, मजबूर पर इतरा रहा है, हाकिम महकूम की हालत सार पर ये मर रहा है, मुफलिस बिक रहा है, बेबस। नहीं, मैं ये नहीं देख सकता हूं इंसान के हाथों इंसानियत का कत्ल, रहम का खून और इंसाफ की ये उड़ती हुई धज्जियां। मैं अपने को ही कत्ल कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। कोई है जो मुझे मेरी धरंदगी से बचा सके, मेरा हासिल मुझे ही फना करने से पास रख सके, या मेरा चीखना चिल्लाना कोई नहीं सुनेगा। ये फुवार लगाने वाला भी मैं ही हूं और सुन भी मैं ही रहा हूं, शान से मेरे सिवा कोई नहीं। ऐ मुझे तखलीक करने वाले खालिक, मुझे मेरे खूंखार मंसूबों से महफूज रख, फैशी इरादों से आजाद कर, वरना

क्या हुआ? ये फिर मुझ पर वहशत का दौरा पड़ा। हाँ, फिर ये बस्तियों की बस्तियां बारूद से उड़ने लगी होगी, फिर कोई शहर तबाह हुआ होगा। ये फिर किसी से बेटा, किसी से बाप, किसी से भाई छिन रहा होगा। घर उजड़ गए होंगे, कितनों का सहारा छिन गया होगा। हो हो, कब तक ये इंसानी मस्कन, ये मेरा नशेमन, मेरा ही कत्ल का बनता जाएगा, बनता रहेगा। कब तक मैं मरता रहूंगा? ओहो, नहीं नहीं, चाहिए मुझे ये हाकमियत, सल्तनत, बरतरी, बालादस्ती, मुझे बस बस रास्ता चाहिए। रास्ता उन्हीं गारों गुफाओं में छुप जाने का, जहां फरिश्तों से बढ़कर कुछ करने के लिए इंसान को यहां भेजा गया था। जहां एकता, हम बाहंगी, जी और जीने दो, और बकाए बाहम जैसे आला इंसानी असूलों पर कायम रहने की तलकीन होती थी। जहां इंसान का अशरफुल मखलूकात साबित होना मकसूद था, लेकिन यहां मैं इंसान नहीं, हैवान साबित होता जा रहा हूं। हाथ में इंसानियत का परचम है, लेकिन नीचे बारूद का वो ढेर छिपाए बैठा हूं जो लम्हा भर में लाखों बरस की इंसानी जदोजहद, मेहनत, दरियाफ्त और हासिल खाक में मिला सकता है। खाक में। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा जरूर होगा, सचमुच होगा, जब मुझ पर अपने होने का ढंग का बजाने, खुद को बरतर जाहिर करने, सारी दुनिया पर हावी होने का वहशतनाक दौरा पड़ेगा।

0: फिर सब कुछ फना होके रह जाएगा।
1: नहीं नहीं,
0: मैं ऐसा नहीं देख सकता, नहीं देख सकता।

0: कहता हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ? कुछ
1: कुछ नहीं हूँ मैं,
0: मैं वो नहीं रहा हूँ जो था, जो था मैं, भाग गया हूँ, भटक गया हूँ,
1: अपने को गवा बैठा हूँ, सिर्फ एक वैशी का वजूद होके रह गया हूँ। ये भी मेरे बगल में छुपे हुए बारूद का मुजाहरा होने से हर शय के साथ मिट जाएगा। दरियाओं में आग उगेगी, पहाड़ अंगारों की तरह दहकेंगे, जंगल जमीन से आसमान तक शोले भड़केंगे, और एक एक तवील सियाह रात के बाद इस कुर्रे अर्ज पर जब दोबारा रोशनी तुलू होगी, जिंदगी अपना वजूद खो चुकी होगी, खो चुकी होगी। दूर दूर तक तो कोई जानदार नजर नहीं आएगा, हर तरफ तबाही, हर समत बर्बादी नजर आएगी। आने वाली नस्ल हमेशा हमेशा के लिए नाखैस पैदा होती रहेगी।
0: और हजरत इंसान
1: कायनात की बका का सामिन कहलाने के बजाय इसकी तबाही का मुर्तकिब करार दिया जाएगा।
0: नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा।
1: ये बिखरी हुई लाशें, ये जलती हुई बस्तियां, ये सहमे हुए होंठ, ये रोती हुई आंखें, मुझसे इंसानी तरंदगी, हैवानियत, शैतानियत और वहशत का लहराता हुआ यह परचम नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता। मैं इंसानी फैल का ये हैरतनाक नजारा, होलाक मंजर नहीं देख सकता हूं, नहीं देख सकता हूं।
0: मुझे रास्ता दो। कहां है रास्ता? मुझे रास्ता दो।
1: रास्ता कहां है?

राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। श्रीमती ओमवती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी।

वे श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व वे चार कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु सील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुधांशु सील जी का निधन 81 वर्ष की आयु में 14 मई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रक्षा संबंधी संसदीय समिति तथा वित्तीय संबंधी संसदीय समिति के सभापति भी रहे। वह अन्य कई संसदीय समितियों में भी अपनी सेवाएं दी। उन्हें सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास गरीबी उपशमन मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री खंडूरी जी 2 बार उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का निधन 91 वर्ष की आयु में 19 मई 2026 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। श्री केपी धन पालन केरल के चाला कुंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य तथा कंप्यूटर के प्रावधान संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री केपी धन पालन का निधन 76 वर्ष की आयु में 30 मई 2026 को एर्नाकुलम केरल में हुआ। श्री प्यारेलाल संगवार उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व वे 2 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्यारेलाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्न। मान्य सदस्यगण, प्लीज आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। नहीं, सदन के अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है। उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। नो, मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी सदन की परंपराओं और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं।

0: सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज प्रश्नकाल, प्रश्न नंबर वन, धवन लक्ष्मण भाई पटेल।
1: प्रश्न नंबर एक।
2: प्रश्न संख्या एक, क्या संस्कृति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क भारत की धरोहर पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई ज्ञान भारतम पहल के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं? ख, क्या भारत की पांडुलिपि और ज्ञान की विरासत के संरक्षण के लिए उक्त पहल में दक्षिण गुजरात के वलसाड निर्वाचन क्षेत्र के ढोडिया, कोकना और वर्ली समुदायों सहित जनजातीय समुदायों की मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं का प्रलेखन शामिल है? ग, उक्त पहल के अंतर्गत ऐसी जनजातीय ज्ञान परंपराओं सहित प्राचीन पांडुलिपियों और ज्ञान की परंपरा के डिजिटीकरण, परिरक्षण और प्रसार में कितनी प्रगति हुई है? घ, ये पहल भारत की सभ्यता और ज्ञान की विरासत को सुदृढ़ करने के लिए किए जाने वाले व्यापक प्रयासों के साथ किस प्रकार जुड़ती है? और अंग, क्या सरकार के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग सहित इन डिजिटीकृत संसाधनों के साथ विद्वान जन के व्यापक जुड़ाव, सहयोग और लोगों के लिए इनकी सुलभता हेतु कोई रूपरेखा है?
1: मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के ढोडिया, कोकड़ा और वाली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है, और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे। मोदी जी ने प्राण लेलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे विकसित भारत बनाने का। दूसरा प्रण दिलवाते हुए गुलामी की मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी, और तीसरा प्रण दिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि विरासत से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मेनू हमारी विरासत है, और आज मंदिर के रूप में, शोक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारी मैनुस्क्रिप्ट है। ये मैनुस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च ड्रिवन बनाने के लिए, जन सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा, और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैनुस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया, उसमें से ये मैनुस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ अब डिजिटलाइज हो चुकी है, और उसमें से 3,74,000 मैनुस्क्रिप्ट अब ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, और उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैनुस्क्रिप्ट होगी उसको भी ये सर्वे में शामिल करके उसको भी उसके प्रति संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा।
0: सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है, मेरा आपसे आग्रह है आप सदन के अंदर सार्थक चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा, नियमों के तहत नोटिस

0: सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको प्रयास में दूंगा, अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना, तकिया लेराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू आर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

You were listening to the proceedings during the question hour in Lok Sabha today. This broadcast came to you from Delhi station of Akashvani. अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से आज पार्लियामेंट में हुई कार्रवाई का खुलासा सुन रहे थे। यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। समय अब पेशे प्रोग्राम गीतुम बरी कहानी।

गीतों भरी कहानी। गीतों भरी कहानी लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी। आज बलराज बख्शी की लिखी गीतों भरी कहानी समाप्त करेंगे, आग और धुआं। राजेश घर की लॉबी में पहुंचा तो देखा कि उसकी तरफ पीठ करके एक लड़की बैठी हुई थी, जो उसकी माँ के साथ हाथ हिला हिला कर जैसे कोई जरूरी बात कर रही थी। माँ ने उसे देखा तो वो लड़की भी पीछे मुड़ी। राजेश उसे देखकर हैरान रह गया। यह उसके दफ्तर में काम करने वाली सेल्स सुपरवाइजर मीनाक्षी थी। वो उसे देखकर मुस्कुराई। राजेश ने हैरान होकर कहा, तुम यहां? माँ ने उठते हुए कहा, लो बेटा अब तुम संभालो इसे, मैं चाय बनाती हूँ। इसे तो रब ही संभाले माँ, राजेश ने दबी जबान में कहा और उसे बोला, क्यों आई हो यहाँ? मीनाक्षी मुस्कुरा कर बोली, वही तो मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन दफ्तर में तुम मेरी सुनते कहाँ हो, इसीलिए यहाँ आई हूँ।

राजेश की माँ ने चाय लाकर रखी और बोली, तुम लोग बातें करो बेटा, मैं जरा घर का काम कर लूँ। माँ के जाने के बाद दोनों चाय पीने लगे तो राजेश ने कहा, देखो मीनाक्षी, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, बिल्कुल दुखी हो गया हूँ। मैं तुम्हारी कंपनी ही छोड़ दूंगा। इन 3 वर्षों में जो काम मैं यहाँ कर सकता था, तुम्हारी वजह से वो कर ही नहीं सका। मुझे खामखा डिस्टर्ब करके तुम्हें क्या मिल जाता है? मैं ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता और उससे तुम्हारी ही कंपनी का नुकसान होता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आखिर तुम्हें हुआ क्या है?

मीनाक्षी बड़े जज्बाती लहजे में कहने लगी, राजेश क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, कि मैं तुम्हें बेतहाशा चाहती हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें बचपन ही से चाहती हूँ? हमारे स्कूल और फिर कॉलेज अलग अलग थे, मगर फिर यूनिवर्सिटी में जाकर हम दोनों इकट्ठा हो गए। हाँ राजेश, राजेश ने सोचा, मेरा छोटा सा घर तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर था, तुम अमीर बाप की बेटी थी और अच्छे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ सकती थी, लेकिन मैं तो बड़ी मुश्किल से गरीबी के दिनों में मेहनत से पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। राजेश ये सोचता रहा, पर उसने मीनाक्षी से कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन दफ्तर में राजेश अपने कमरे में बैठा था कि मीनाक्षी बिला इजाजत अंदर आकर बैठ गई और दफ्तर की किसी बात को लेकर खामखा इधर उधर की बात

बलदेव मिलकर चलाते थे। राजेश और मीनाक्षी ने बिजनेस की ट्रेनिंग एक ही यूनिवर्सिटी से ली थी और यह भी सही था कि मीनाक्षी उसे बचपन से देखती आई थी। हालांकि पैसे के लिहाज से मीनाक्षी से उसका कोई मुकाबला था ही नहीं, लेकिन अपनी शक्ल सूरत और रख रखाव से उसकी शख्सियत खासी पुरकशिश थी। शायद यही वजह थी कि मीनाक्षी बचपन से ही उसकी तरफ माइल हो गई। लेकिन राजेश किसी और लड़की से प्यार करता था, उसका नाम अंजलि था और वो स्कूल टीचर थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मीनाक्षी का ये रवैया उसके लिए एक मुसलसल दर्द सर बन चुका था। आज फिर वो दफ्तर में बैठा यही सोच रहा था कि मीनाक्षी से कैसे जान छुड़ाई जाए। अचानक फोन की घंटी बजी, दूसरी तरफ मीनाक्षी थी। उसने कहा कि कुछ जरूरी मीटिंग है, इसलिए वो होटल एक्सीलेंसी के कमरा नंबर 211 में आ जाए। वो जानता था कि ये कमरा होटल ही के मुस्तकिल इस्तेमाल में रहता है और वहां अक्सर कंपनी की मीटिंगें होती रहती थीं। आधे घंटे के बाद वो दाखिल हुआ तो उसे कमरे में हर तरफ अंधेरा नजर आया। फिर उसकी आंखें इस अंधेरे में किसी बल्ब की हल्की सी रोशनी की आदी होने लगी। उसने जोर से पूछा, कोई है?

राजा अब बलराज बख्शी की लिखी गीतों भरी कहानी समाप्त कर रहे हैं। आग और धुआं, अचानक कहीं पर एक और बल्ब जल उठा।

रोशनी ज्यादा हो गई। वो मीनाक्षी को देखकर हैरान रह गया, जो शब-ए-ख्वाबी का एक महीन सा लिबास पहने हुए थी। वो मुस्कुराती हुई आहिस्ता आहिस्ता उसके इतने करीब आ गई कि राजेश का दम घुटने लगा। मीनाक्षी की गर्म गर्म सांसें उसको जलाने लगी और वो घबरा कर इधर उधर देखता हुआ पीछे हट गया। अचानक मीनाक्षी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक सूफे की तरफ ले गई। सूफे पर बैठकर मीनाक्षी ने राजेश से पूछा, आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो? क्या तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ? मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती राजेश। मगर राजेश कोई जवाब दिए बिना खड़ा हो गया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मीनाक्षी बोली, अगर जा रहे हो तो मेरी आखिरी बात सुन लो राजेश। मैंने हमेशा से तुम्हें चाहा है और देख रही हूँ कि तुम मुझे ठुकरा रहे हो, मगर ये हमेशा याद रखना, और अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की आई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ दूंगी, खत्म कर दूंगी उसे। राजेश ने उसके चेहरे पर खतरनाक तासुरात देखे तो कांप गया। उस रात राजेश को डरावने ख्वाब आते रहे।

राजेश दूसरे दिन दफ्तर नहीं गया। उसने फोन करके दो दिन के लिए छुट्टी के लिए कह दिया। वो सारा दिन कमरे में ही बंद रहा। शाम को तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो अंजलि को फोन करके वहीं मिलने के लिए कहा जहां वो अक्सर मिला करते थे। ये साहिल समंदर पर एक खामोश कैफेटेरिया था जिसकी तन्हाई सिर्फ नौजवान जोड़े ही आकर रफा करते थे। बाकियों की तरह राजेश और अंजलि भी इधर उधर भटकते रहे। राजेश ने सोचा था कि वो मीनाक्षी का मसला अंजलि के साथ हर हालत में आज डिस्कस करके कोई न कोई हल निकालेगा, मगर लाख चाहने के बावजूद वो ऐसा न कर सका। आसपास का माहौल ऐसा रोमांटिक था कि वो उसमें खो गया। रात जमा होती जा रही थी और आसमान पर खिला हुआ चांद उन्हें मुस्कुरा मुस्कुरा कर तकने लगा था। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए बस साहिल समंदर पर चलते रहे।

आप गीतों भरी कहानी समाप्त कर रहे हैं आग और धुआं। शहर से 15 किलोमीटर बाहर स्नोबर पार्क थी, जहां अक्सर शहर से उकताए हुए हर उम्र के लोग वक्त गुजारी के लिए आ जाते थे। राजेश के कहने पर दूसरे दिन अंजलि ने भी स्कूल से छुट्टी ले ली। दोनों ने दिन भर के लिए थोड़े से स्नैक्स भी साथ ले लिए। लोग इतनी बड़ी तादाद में पिकनिक मनाने के लिए स्नोबर पार्क में जाते थे कि पार्क के इर्द गिर्द बहुत से रेडियां भी लगने लगी थीं, जिन पर खाने की बहुत सी अच्छी अच्छी और गर्म गर्म चीज़ें भी मिल जाती थीं। थोड़ा सामान और पानी की बोतलें लेकर वो लोग कार में बैठकर चल दिए।

लेकिन सनोवर पार्क में पहुंचकर जब राजेश ने अंजलि को मीनाक्षी का मसला सुनाया तो दोनों का मूड ऑफ हो गया। मसला ऐसा था कि किसी के पास कोई हल था ही नहीं। सारा दिन यूं ही निकल गया।

शाम को वापस आए तो किसी के चेहरे पर खुशी के आसार नहीं थे। अगले रोज राजेश ने दफ्तर जाकर फिर मीनाक्षी का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। अपने कमरे में जाकर बैठा ही था कि मीनाक्षी गुस्से में बिफरी हुई दनदनाती हुई आ गई। उसने आते ही दफ्तर का दरवाजा बंद किया और कुर्सी पर बैठकर बड़ी देर अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करती रही। फिर जहरीली आवाज में कहने लगी, तो उसका नाम अंजलि है, स्कूल टीचर।

तो तुम अंजलि से मोहब्बत करते हो, एक शाम समंदर के किनारे और दूसरा दिन सनोवर पार्क में। तुम क्या समझते थे मुझे पता नहीं चलेगा? राजेश को अंदाजा हो गया कि उसने किसी एजेंट को उसके पीछे लगा लिया होगा। राजेश ने जेब से एक लिफाफा निकाला और उसे दे दिया। उसने पूछा, यह क्या है राजेश? मेरा इस्तीफा, राजेश ने जवाब दिया। मीनाक्षी के होंठों पर खतरनाक सी मुस्कुराहट उभरी और वो बोली, अंजलि, मेरे दो आदमियों की कैद में है मिस्टर राजेश, और तुम्हें उसकी हवा भी नहीं लग सकती कि वो कहाँ कैद है। यकीन नहीं आता तो उसे या उसके स्कूल के प्रिंसिपल को फोन करके पूछ लो। राजेश ने जल्दी जल्दी अंजलि को फोन किया, मगर स्विच ऑफ था। उसके प्रिंसिपल को फोन किया तो उसने कहा कि वो बीमार है, आज आई ही नहीं। घर पर फोन किया तो घर वालों ने बताया कि वो तो स्कूल गई थी। वो बेबस होकर मीनाक्षी की तरफ देखने लगा। वो बोली, अगर उसकी सलामती चाहते हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी अभी, वरना पुलिस को उसकी लाश ही मिलेगी। राजेश ने फिर दो तीन जगह फोन करके अंजलि के बारे में पूछा, मगर कहीं से भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। एक बार उसने झुंझुलाकर भी कहा, यार मैं स्टेडियम चौक की स्टार बिल्डिंग में मीनाक्षी इंडस्ट्रीज के ऑफिस से राजेश बोल रहा हूँ। कमाल है यार, आज तो मेरी आवाज भी नहीं पहचानते। हाँ हाँ, अंजलि का कुछ पता नहीं मिल रहा है, इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूँ और तुमसे बहस कर रहे हो। उसने स्विच बंद करके मीनाक्षी को देखा और कहने लगा, देखो मीनाक्षी, मैं तुम्हारे प्यार की कदर करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे नहीं बल्कि अंजलि से प्यार करता हूँ। मीनाक्षी ने कहा, और शायद तुम नहीं जानते राजेश, मैंने बचपन से जिस खिलौने को चाहा या तो उसे हासिल किया या फिर अगले दिन दुकान पर जाकर उसे तोड़ दिया। राजेश ने कहा, लेकिन खिलौने और इंसान में फर्क होता है मीनाक्षी, इंसान सोचता है और खिलौने बेजान होते हैं। मीनाक्षी कहने लगी, मैं ये सब नहीं जानती, मैं सिर्फ ये जानती हूं कि अगर आज तुम मुझे न मिले तो कल तुम्हें अंजलि की लाश ही मिलेगी। ठीक उसी वक्त दफ्तर में 5-6 पुलिस वाले धनधनाते हुए अंदर आ गए और राजेश ने गहरी सांस ली। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं डर रहा था कि आप शायद वक्त पर न पहुंच सकें या शायद आप समझ ही न सकें। मैं राजेश हूं, इंस्पेक्टर ने कहा। क्यों, आप पुलिस को बेवकूफ समझते हैं क्या? ये मीनाक्षी है। राजेश के हां में सर हिलाने पर इंस्पेक्टर ने इशारा किया और दो लेडी कांस्टेबलों ने आगे बढ़कर उसे हथकड़ी लगा दी। इंस्पेक्टर ने डपट कर पूछा, अंजलि कहाँ है? दूसरी बार पूछने पर ही मीनाक्षी ने बता दिया कि अंजलि होटल एक्सीलेंसी के कमरा नंबर 211 में नींद की गोलियों के जेर असर है। इंस्पेक्टर ने फौरन दूसरे फ्लाइंग स्क्वाड को वहां भिजवा दिया। अंजलि को फौरन अस्पताल ले जाया गया जहां उसे खतरे से बाहर करार दे दिया गया। मीनाक्षी के भाई बलदेव ने बाद में बताया कि बचपन ही से उसे नफसियाती बीमारी है। मीनाक्षी को साइकेट्रिक केयर में भेज दिया गया और राजेश और अंजलि एक हो गए।

आग और धुआं, तहरीर बलराज बख्शी। कैसी लगी आज आपको हमारी ये कहानी? अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अब अपने मेजबान रशीद निजामी को दीजिए इजाजत, जब तक के लिए खुदा हाफिज।

0: गीतों भरी कहानी।
1: आप गीतों भरी कहानी सुन रहे थे। आज आपने बलराज बख्शी की कहानी सुनी, आग और धुआं। मेजबान थे रशीद निजामी। यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। शब के 11 बज रहे हैं। चंद ही लम्हों के बाद आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में खबरें पेश होंगी। खबरों का जरा सा इंतजार फरमाएं।
2: हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
4: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
2: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त

0: और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति के गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस राघु। Monsoon session of Parliament began on a stormy note today. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues, including the neat paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to 6 former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and the Samajwadi Party over the NEET issue. Our correspondent has the details.
2: The proceedings of both the Houses of Parliament were disrupted due to the repeated adjournments following opposition sloganeering on the NEET paper leak case and other issues. The Lok Sabha witnessed 7 adjournments, while the Rajya Sabha was adjourned 6 times due to the opposition protest. Due to the disruptions, question hour in both the Houses were also not taken up. Amid opposition uproar in the lower house, Union Minister for Law and Justice Arjun Ram Meghwal introduced the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In the Rajya Sabha, when the proceedings began at 11 a.m., 9 newly elected and re-elected members took oath as members of the upper house. Anand Kumar, Akashwadi News, Delhi.
1: Union Minister Jagat Prakash Nadda today met the representatives of protesters in New Delhi. In a social media post, Mr. Nadda said that a proposal came from the protesters to hold talks with the government this morning. The minister said the meeting took place in a cordial atmosphere and initial verbal discussion was held in detail with their delegation and they submitted a written petition to the government at around 4 p.m. Mr. Nadda urged all the protesters to end their sit-in and assist the administration in restoring normalcy. President Draupadi Murmu today called for deeper economic engagement between India and Moldova, saying the two countries have immense potential to expand cooperation in several high-growth sectors. President was addressing the India-Moldova Business Forum in Chisinau today. Referring to the vision of Vikasit Bharat 2047, President Murmu said India seeks partnerships based on trust and shared prosperity, while Moldova's strategic location and skilled workforce offer promising opportunities for Indian businesses. Earlier, President Draupadi Murmu and her Moldovan counterpart

मीडियो में 208.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। शब के 11:10 हुए हैं। आज की मजलिस बर्खास्त करने से पहले एक नज़र कल हमारे यहाँ से नश्र होने वाले प्रोग्रामों पर।

रात 9:30 पर शोरा की बज़म सजेगी बज़्म शार। इस बज़म में जो शोरा शिरकत फरमा रहे हैं उनकी अस्माए गिरामी यूं हैं: अब्दुल हमीद मीर, मीर अफरोज, अली महमद भट्ट, नज़ीर अहमद वाज़ा, बशीर अहमद भट्ट और मनीबू रहमान। शब 10 बजे फिल्मी नगमों का फरमाशी फोन इन प्रोग्राम पेश होगा। हेलो, आपकी फरमाइश। प्रोग्राम पेश करेंगी सकीना राठर। प्रोग्राम सुबह गाई पेश खिदमत होगा सुबह 6:35 पर। सुबह 7:10 पर लाइव मॉर्निंग शो समाप्त करें पयामे सुबह हम सफर। ये स्पॉन्सर प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा सुबह 8:45 पर। प्रोग्राम का मौजू है आलम मलाइका अलैहिमुस्सलाम। कल आप इसकी 6 किस्त सुनेंगे। इस मौजू पर बात करेंगे हम सफर मैरिज काउंसलिंग इदारे शरीफ के सरबरा और इस प्रोग्राम के रूह रवा हजरत मौलाना फयाज अहमद जरूर साहब दामत बरकातहुम। ये पेशकशें सलीम एजाज कपड़ा की। सुनना ना भूलेगा प्रोग्राम हम सफर कल सुबह 8:45 पर।

पार्टी प्रोग्राम सपेर 4 बजे नष्ट होता है। पंजाबी प्रोग्राम सपेर 4:30 पर पेश होगा। गोजरी प्रोग्राम समाप्त करें शाम 5 बजे। दियाती भाई अपना प्रोग्राम सुनेंगे शाम 6:05 पर। हालात तो वाकत की जानकारी आपको मिलती है प्रोग्राम शेरविंद के जरिए शाम 7 बजे। प्रोग्राम वादी की आवाज का वक्त नशरिया है रात 8 बजे। समीन यह कल हमारे यहां से नश्र होने वाले प्रोग्राम। यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। शब के 11:14 हुए हैं। हमारी आज की मर्जी पर बर्खास्त होती है। कल सुबह 6:28 पर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।

0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 17 पैसे कमजोर होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 96 रुपए और 45 पैसे पर बंद हुआ। शशिर, हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर ने आज मार्केट में एक निराशा ला दी है और मार्केट अंततः ग्रीन जोन में बंद हुआ।
1: बाजार में देखिए, जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी बैंक है, उनके शेयरों में उछाल देखने को मिला। निजी बैंक जो थे उनके शेयरों में गिरावट देखने को मिली। ये बहुत ही कहते हैं कि रेयर सिचुएशन होते हैं जब ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही क्षेत्र में दो अलग अलग तरीके के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। सरकारी बैंकों के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। अगर अब बीते कुछ दिनों में जो हम प्रमुख बैंकों की बात करें, उन सभी में हमने दोहरे अंकों में मुनाफा बढ़ते हुए देखा है, और सालाना आधार पर एक बैंक का जो मुनाफा था वो लगभग 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। तो ऐसी सूरत में सरकारी बैंकों में एक उम्मीद बंधी है कि वहां पे नए सिरे से जो है वो खरीदारी की जा सकती है। निजी बैंकों के मुनाफे में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उस तरीके की नहीं हुई है जो हमने सरकारी बैंकों में देखा। तो शायद एक ये कारण हो सकता है कि हमने एक तरफ सरकारी बैंक में बढ़ोतरी देखी, लेकिन निजी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज जो थी उनमें हमने गिरावट देखी। और पूरा बाजार अगर आप देखेंगे, 400 पॉइंट के ऊपर जो गिरा, सेंसेक्स गिरा, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था
0: जी,
1: वो आप तेल, कच्चे तेल को लेकर के जो स्थिति है
0: जी,
1: उसका योगदान सबसे ज्यादा है। एक अनिश्चितता से बनी हुई है कि वहां पर क्या रहेगा
0: जी।
1: तो ये आज के बाजार में। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण हमने देखा कि दवा कंपनियों के शेयरों में भी आज अच्छी तेजी आई, और ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि चूंकि वो एक तरीके से डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता है, तो वहां पे हमने बढ़ोतरी देखी। तीसरा जो हमने चलन आज देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप, जो आम तौर पे कहते कि इसमें बहुत तेजी भी आती है और बहुत गिरावट भी आती है, आज के गिरावट के दौर में भी मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों आगे बढ़े।
2: राइट शशि जी, वी आर टॉकिंग ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स, पीएसयू बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स, ऑलमोस्ट 5% ऑफ अ डिफरेंस। इफ यू लुक एट द पीएसयू बैंक्स जंप 3% एंड द प्राइवेट बैंक्स ड्रॉप 2.1%, ऑलमोस्ट अ 5% कॉन्ट्रास्ट। What accounts for that?
1: Yeah, the most important reason is the result. I mean, if you go by the financial performance of Q1, that's April to June period, where we have seen all the public sector banks have recorded double digit or even more than double digit growth in the net profit. Even their net interest profit, net interest income has also gone up. Of course, the net interest margin is slightly on the lower side, but hopes are really good for the public sector bank, and that is why we are seeing this kind of increase in there. On the contrary, the private sector banks, we are not seeing the kind of growth in the net product.

0: profit. And at the same time, one of the big private sector bank is also riddled in the controversy. That is also giving some kind of negative impression about the private sector banks. Mm. And that is why you are seeing a difference of 5% between the public sector bank and the private sector bank.
1: Another point, Shishirji, you know, given the situation in West Asia, you know, now on, and before we discuss, here is the first caller from Delhi, Premjeet. Premjeet ji.
2: Namaskar, Shishir sahab.
0: Namaskar.
2: आप सिन्हा साहब, आपने पिछली बार मुझे बताया था और मैंने पूरी वर्ल्ड घूमकर जब मैं आया तो मैंने ये एक्सक्यूट किया. सर मेरा प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न इस बार कि सर ये जो रोबोटिक सिस्टम है वर्ल्ड वाइड या जिसको आप एआई कहते हैं, क्या ये हम पर हावी होगा, हमारे इंडियन यूथ जो इंटेलिजेंट हैं, या हम उन पे हावी रहेंगे? सर बड़ा छोटा सा प्रश्न है सर, पर विस्तार आप ही दे सकते हैं.
0: प्रेमजीत जी, प्रश्न छोटा नहीं है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है. और आज के दौर में कहें कि चाहे वो शेयर बाजार की बात करें या पूरे अर्थव्यवस्था की बात करें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसको लेकर के बहुत चर्चा चल रही है. और ये दो मुद्दे प्रमुख रूप से छाए हुए हैं. पहला कि क्या लोगों की नौकरियां जाएंगी, और दूसरा जो पारंपरिक सूचना तकनीक कंपनियां हैं, आईटी सेक्टर्स की जो कन्वेंशनल कंपनीज है, उनका क्या होगा. तो पहले प्रश्न का जवाब मेरे हिसाब से ये है, जो हमने 1991 में देखा था जब कंप्यूटर आया था, तो लोगों ने कहा कि नौकरियां जाएंगी क्योंकि अब कंप्यूटर आ गया है. लेकिन जिन लोगों ने कंप्यूटर के साथ चलना शुरू किया, उनके लिए कौशल्य बढ़ा और उनके लिए मौके ज्यादा बने. यही पक्ष जो है वो आप एआई के लिए भी कह सकते हैं कि एआई के साथ अगर हम चले तो हमारा कौशल्य बढ़ता है, हमारे लिए मौके बनते हैं. आपका ये है कि कौन हावी होगा, हम हावी होंगे या एआई हावी होगा. हम अगर हावी होने देंगे तो एआई हम पर हावी होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि तकनीक के को हम अपना मददगार बनाएं, तकनीक को अपना मालिक ना बनाएं. तो अगर मददगार अगर आप बनाते हैं, उनसे सहयोग लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा. और दूसरा जो प्रश्न जो मैंने खुद ही किया कि जो पारंपरिक आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं उनका क्या होगा, तो अभी मैं दो जो बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं आईटी सेक्टर के, जो इंफोसिस के चेयरमैन हैं नंदन निलेकनी या एनविद्या के जो सीईओ हैं, दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि पारंपरिक कंपनियों का महत्व बना रहेगा. तो मुझे लगता है कि एआई को लेकर के डरने की जरूरत नहीं, बल्कि एआई को साथ लेने की जरूरत है. इससे हमारा आपका कौशल्य बढ़ेगा और हम बाजार में एक बेहतर कर्मयोगी कह सकते हैं, आप कर्मवीर कह सकते हैं, उसके तौर पे हम आएंगे.
3: बिल्कुल श्रोताओं, जिस तरीके से प्रेमजीत ने हमसे सवाल पूछा, आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं. सवाल पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. आपके सवालों के जवाब लेकर के हमारे साथ शिशिर सिन्हा मौजूद है. और ये देखिए, कोलकाता से इस बीच हमारे पास कॉल आ रही है डी आर आचार्य की.
2: हाँ
3: जी, अपना सवाल पूछिए महोदय.
2: हाँ सर, मैडम, मेरा एनपीएस में कुछ पैसा लगा है, ठीक है, तो बीच में जो लड़ाई चल रहा था इसमें मेरे फंड के डाउन हो गया, पैसा लगाना ठीक होगा?
0: देखिए, नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो थोड़े समय की कोई बचत योजना नहीं है, वो आपके लिए एक भविष्य की सुरक्षा, एक सामाजिक सुरक्षा है. जब आप सेवानिवृत्त होंगे, वहां पर आपके लिए उससे जो भी पैसे आप जमा करेंगे उससे आपको एक पेंशन मिलेगा. आप यदि निजी क्षेत्र में काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत मददगार होगा. सरकारी क्षेत्र में भी 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी सरकारी क्षेत्र में आए हैं उनके लिए नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी. तो मुझे लगता है कि आपको ना ये रोज रोज के उतार चढ़ाव को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है. एक जब आपकी मेच्योरिटी जो 60 साल की उम्र में होती है और अब 85 साल तक के लिए ये सुविधा दी गई है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए. चूंकि फंड जो है वो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा शेयरों में लगाया जाता है, आप विकल्प देते हैं. और अगर आपने विकल्प दिया है कि नहीं मेरा ज्यादा पैसा लगना चाहिए, तब भी आपको मौका मिलता है कि आप उसमें किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं. तो मुझे लगता है आप घबराएं नहीं, इसके भविष्य को लेकर के बहुत चिंता अभी नहीं करनी चाहिए.
3: और दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं. केशव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: नमस्कार जी, नमस्कार, किसी हमें पैसा लगाना चाहिए. और दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि जो अभी जो लड़ाई चल रही है तो वहाँ काफी क्षति हो गई है कई देशों में, रूस, यूक्रेन, ईरान, अदर्स अरब देशों.

0: आने वाले समय में यहाँ काफी जो काफी दिल्ली के द्वारा से भरे थी तो इस क्षेत्र में काफी स्कोप हो जाएगा, तो इसमें क्या बेनिफिट अगर हम प्रसाद रास्ता है।
1: केशव जी, आपका जो पहला प्रश्न है कि एफडी का क्या भविष्य है, एफडी को लेकर के क्या करना चाहिए, मेरी हमेशा से राय रही है कि एफडी एक सुरक्षित निवेश है, चाहे वो आप सरकारी बैंक में करें या डाकघर में करें। सरकारी बैंक में ये होता है कि आपको अगर बैंक डूब जाता है तो भी 5 लाख रुपए तक की जो मूल रकम आपको मिलती है डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत। डाकघर में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, 1 रुपया भी आपका डूबने का खतरा नहीं होता है। तो फिक्स डिपॉजिट आपकी पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होना चाहिए, वो आपको एक सुरक्षा देता है। दूसरा प्रश्न था कि जगह जगह पर जो नुकसान हुए हैं, भवन नए सिरे से बनाने की जरूरत होगी। देखिए, ये बहुत ही दूर की सोच है, अभी की जो परिस्थिति है उसमें वहां पर उद्योगों की क्या स्थिति होगी, वहां किस तरीके से भवन निर्माण होगा, ये कहना भी बहुत ही मुश्किल है। उम्मीद करनी चाहिए कि ये जल्द से जल्द खत्म हो, युद्ध शांति की स्थिति बने, तो निश्चित तौर पर दुनिया भर की कंपनियों के लिए मौके जो है वो बन सकते हैं।
2: नेक्स्ट कॉलर इज राजीव फ्रॉम दिल्ली। राजीव,
3: लगता है हमारा संपर्क टूट गया है राजीव जी से, आगे बढ़ते हैं। निश्चित,
2: या मूविंग ऑन, द अल्ट्राटेक सीमेंट टुडे रिपोर्टेड इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स For the first quarter of the current financial year, the company's consolidated revenue from operations rose by 15.8% year-on-year to 24,648 crore rupees. However, on a quarter-on-quarter basis, revenue dropped by 4.5%. The company's consolidated net profit grew by 16.8% to 2,599 crore rupees compared with the corresponding quarter of the previous financial year. However, on a sequential basis, the net profit declined by 12.8%.
3: और अब आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और जानते हैं कि एशियाई शेयर बाजार में क्या हलचल है। आज अधिकांश एशियाई शेयर बाजार मिले जुले रुख के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 4.5%, ताइवान का ताइएक्स 0.5% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% लुढ़के। वहीं हांगकांग का हैंगसेंग लगभग 2.5% और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.8% बढ़ा। उधर छुट्टी के कारण जापान का बाजार बंद रहा। और रवि नारायण जी हमारे साथ श्रोताओं जुड़ रहे हैं भिलाई से। जी महोदय, अपना सवाल पूछिए कार्यक्रम में आपका।
4: नमस्ते मार्केट मंत्रा, जल्दी जल्दी पूछ रहा हूँ, दो छोटे छोटे सवाल हैं।
3: जी,
4: पहला तो ये कि आज एक वो पंजाब नेशनल बैंक का मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए कुछ फॉरेन किसी का उसको पार्टनर बनाने का प्लान के बारे में पढ़ा मैंने, तो इसमें पहली बात तो ये कि बाहर से क्यों जरूरत पड़ रही पार्टनर की, और दूसरा इसमें इनकी मंशा क्या है पंजाब नेशनल बैंक की, ये जानना चाह रहा था। और दूसरा ये कि ये अभी तो ये फिर से वार बढ़ने के बावजूद भी पेट्रोल मतलब ये पेट्रोलियम का जो प्राइस है वो कैसे गिर रहा है, ये जानना चाह रहा था। थैंक यू।
1: पहले अगर आपके दूसरे प्रश्न का हम जवाब दे दें, क्योंकि पहले प्रश्न का जवाब इसीलिए नहीं दे सकते क्योंकि वह खास कंपनी और बैंक से जुड़ा हुआ है जिसकी योजनाओं की हम चर्चा यहाँ पर नहीं करते हैं। आपका जो दूसरा प्रश्न है कि कच्चे तेल के भाव गिर रहे हैं, भाव गिरे नहीं, भाव तो बढ़े हैं, 80-85 के ऊपर चले गए हैं, तो वो तो हमारे लिए एक चिंता का विषय जरूर बन रहा है क्योंकि बीच में थोड़ी गिरावट आई थी तो एक राहत की उम्मीद बनी थी, अब फिर से बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उससे रुपए पर दबाव बन रहा है और आपने उसका रुपए का चाल भी देखा है। तो अभी के समय में लड़ाई जैसे जैसे बढ़ेगी कच्चे तेल के भाव में तेजी आने की आशंका है, और क्योंकि लड़ाई केवल एक देश तक सीमित नहीं है, वो पूरे क्षेत्र में है, और वो क्षेत्र ऐसा है जहां से 20% जो है पूरी दुनिया की आपूर्ति का जो है वहां से गुजरता है, तो जाहिर है उसका असर तो आपके पेट्रोल डीजल या यूं कहें पहले हम कहें कि कच्चे तेल के भाव पर पड़ेगा।
3: आगे बढ़ते हैं। प्रमुख उद्योग सूचकांक सालाना आधार पर जून में 5% बढ़ा, ये बढ़ोतरी पिछले 5 महीनों में सबसे अधिक है। इससे पहले मई में 3.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। जून के आंकड़ों के साथ ही संशोधित श्रृंखला भी पहली बार जारी की गई है जिसमें आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। नई श्रृंखला के अंतर्गत प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की संख्या 8 से बढ़ाकर 9 हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी शुरुआती आंकड़ों के अनुसार आयरन ओर के उत्पादन में लगभग 44% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली उत्पादन और सीमेंट उत्पादन में 9.8% की बढ़ोतरी हुई। वार्षिक आधार पर स्टील उत्पादन में 4.6% और कोयला उत्पादन में 1.4% की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि वार्षिक आधार पर

0: प्राकृतिक गैस उत्पादन में 7.4%, रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में 4.5% से अधिक, कच्चे तेल के उत्पादन में 4% से अधिक और उर्वरक उत्पादन में 3.3% की गिरावट आई। शिशिर जी, ये एक अच्छी बात है कि ये बढ़ोतरी हुई है, इसे आप कैसे देखते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी।
1: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जितने भी हमारे आर्थिक सूचकांक हैं, अगर हम बात करें जीडीपी, हम बात करें महंगाई दर की, और अब जो है ये प्रमुख उद्योगों की बात करें, इसके आधार वर्ष का बढ़ना, इसलिए आधार वर्ष का तय, नए सिरे से तय होना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो वास्तविकता के करीब होते हैं। अभी जैसा कि आपने कहा कि 2011-12 पहले आधार वर्ष था, अब 2022-23 है, तो अगर आप जीडीपी का भी देखेंगे तो 2022-23 हो गया है, डब्ल्यूपीआई का भी देखेंगे 2022-23 हो गया है, सीपीआई की हम बात करें वो 2024 हो गया है। तो आधार वर्ष का बढ़ना एक, दूसरा दायरा बढ़ गया है, पहले 8 होते थे अब 9 हुआ, और इस्पात का आना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस्पात जो है वो आर्थिक गतिविधियों में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एक छोटी सी बात इसमें और जोड़ना चाहेंगे कि ये जो प्रमुख उद्योग क्षेत्र है, ये जो आंकड़े आते हैं, ये हमारे पूरे औद्योगिक क्षेत्र का एक ट्रेलर है, यानी कि जब 28 तारीख को औद्योगिक क्षेत्र के आंकड़े आएंगे तो एक अनुमान आज हम लगा सकते हैं कि वहां पर स्थिति क्या होगी।
2: Right, and our next caller is Kanta from Gurugram. Kanta.
3: Ji, namaste, sir.
1: Namaste.
3: मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सीनियर सिटीजन स्कीम में मैंने बैंक में पैसे लगाए हुए हैं, हाँ सर?
1: जी जी।
3: तो इसको जैसे पीपीएफ का पैसा तो सरकार देती है, तो इसको बैंक देगा या सरकार देगी? और ज्यादा हो जाए तो बैंक डूब जाए तो फिर वो मर जाएगा पैसा, ज्यादा करवा दिया तो?
1: कांता जी, दो बातें हैं। जो आप बैंक में पैसा रखती हैं वो जाहिर सी बात है वो बैंक ही देता है, उस पर ब्याज भी बैंक ही आपको अदा करता है। यदि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अगर आप डाकघर में खोलती हैं, वो पैसा वो सरकार के जरिए आता है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि अगर बैंक डूब जाए, तो बैंक डूबने की सूरत में प्रति शाखा जो है वो आपको 5 लाख रुपए तक का जो है वो आप प्रति बैंक जो है वो 5 लाख रुपए तक आपको मिलता है एक समय में, और बाकी पैसा जो है वो बाद में उसके भुगतान की उम्मीद बनती है। तो बैंकों में जो ब्याज दर है उससे कहीं ज्यादा ब्याज दर डाकघर में है, और वहां पर फायदा ये भी है कि वो ब्याज और मूल दोनों ही भुगतान सरकार करती है।
0: शिशिर, दिल्ली से हमारे साथ दिनेश जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
4: हाँ सर जी, मेरे पास ये अपने फोलियो नंबर है खाली, हमारे पास शेयर नहीं है, तो वो हमारे को इशू हो जाएंगे जी उसके फिजिकल शेयर?
1: दिनेश जी, अब तो फिजिकल शेयर की तो बात होती नहीं है, आपके पास जिस किसी कंपनी के शेयर हैं वहाँ के रजिस्ट्रार से आप संपर्क करें, यहाँ उनके जो रजिस्ट्रार होते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपका जो पैन नंबर होगा या जो डीमैट अकाउंट नंबर होगा, इसमें से कोई भी एक जानकारी देकर के आप ये पता कर सकते हैं कि वो शेयर कहाँ है। फोलियो नंबर आम तौर पर म्यूचुअल फंड के लिए ज़्यादा यूज होता है, तो अगर म्यूचुअल फंड के उससे है तो आप जो संबंधित असेट मैनेजमेंट कंपनी है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं।
2: शिशिर जी, वन question which we were discussing earlier on, if you look at the market situation, domestic market situation, and also the results which have been pouring in over the past couple of days now, so given the situation the world over, especially in the context of the West Asian crisis, how do you see these numbers stacking up? Especially these numbers are so very encouraging.
1: See, I think we need to understand that the impact was starting in the month of February, from 28th of the February. So the first full month was March, and then we have the first full quarter of April to June. Now the big question we are is there that why there the number is so encouraging, why the numbers, I mean, not indicating the kind of stress which we were apprehending. Market means the consumer market. If you go by the consumption market, the consumption is good in the domestic sector, that is also helping you. You also need to understand what is happening on the export front. Just on 15th of this month, we were going through the export data, and there we found that both export and import both have gone up. Export has also given a very encouraging sign. That means the companies are able to sell their produce outside. Now the concern here is that the cost of production has slightly gone up, and that

0: is why the profitability is, of course, on a higher side, but it could have been much higher had the cost of production been the lower because of the fuel prices. And also, you need to remember that during that period of April to June, we have seen some curb on supply of fuel to various industries, various sectors. Now that supply has been I mean, has been normalized. So all these things are contributing in that. So the number one is export number and then the consumption number.
1: और इस बीच बिहार से हमारे साथ टिंकू जुड़ रहे हैं. टिंकू जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
2: नमस्ते मैम.
1: नमस्ते
2: मैम, मैं पोस्ट ऑफिस गए थे, बेगूसराय कोई गांव है, ठीक है, और मैं उससे पूछे थे संतोष पॉलिसी करना है इंश्योरेंस, तो वो पूछा क्या पोस्ट ऑफिस वाला अधिकारी पूछा
0: कौन सी पॉलिसी आपने, टिंकू जी कौन सी पॉलिसी आपने कही?
2: संतोष, संतोष,
0: संतोष पॉलिसी.
2: हाँ, पोस्ट ऑफिस का है, संतोष, संतोष, संतोष पॉलिसी इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस हो या.
0: अच्छा अच्छा, ठीक है.
2: तो मैं वो पूछा आपका उम्र क्या है, तो मैं बोले 41. तो बोला कि 19 साल का पॉलिसी होगा आपको, 60 साल में आपको पूरे रुपया मिल जाएगा. तो सर वो 2 लाख के इंश्योरेंस बता प्रति, मगर 1300 कुछ 1300 रुपया मंथली बोला था जमा करने के लिए.
0: Okay.
2: 2 लाख से तो ज्यादा पड़ रहा है क्या, जीएसटी वीएसटी वो तो कट रहा है क्या उसमें? पोस्ट ऑफिस में तो कोई एजेंट वगैरह तो है नहीं, उसमें एजेंट चार्ज तो लगता नहीं है, यही मैं जानकारी चाहते हैं. और एक और सवाल है
0: जी.
2: जैसे पीपीएस अकाउंट में पोस्ट ऑफिस में कराते हैं
0: जी,
2: उसको ब्याज दर में क्या फर्क है और बैंक में क्या फर्क है, दोनों में जानकारी चाहिए सर.
0: पहले अगर मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब दूं कि पीपीएफ आप कहीं भी खोलें, चाहे आप बैंक में खोलें या डाकघर में खोलें, ब्याज की दर एक होती है, क्योंकि पीपीएफ को बैंक नहीं चलाता. बैंक वहां पर एक तरीके से आपके लिए एक सुविधा मुहैया कराता है कि आप हमारे यहाँ आकर के अकाउंट खोल लीजिए, डाकघर में भी आप खोल सकते, तो उसको लेकर के आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. दूसरी बात है कि जो आपने जिस पॉलिसी की बात की, जीवन बीमा पॉलिसी की बात की, पहली बात की देखिए, व्यक्तिगत तौर पर जब आप जीवन बीमा पॉलिसी की बात करते हैं उस पर कोई जीएसटी नहीं होता है, तो उसमें जीएसटी को लेकर के अगर कोई कहता है तो वो गलत कहता है, व्यक्तिगत तौर पे नहीं है. हाँ, यदि एक सामूहिक आप किसी कंपनी की तरफ से ले रहे हैं तो वहां पर आपको देना पड़ता है. रहा सवाल कि कितने समय के लिए लेना है, वो हर पॉलिसी की अपनी शर्तें होती हैं, और डाकघर की जो जीवन बीमा पॉलिसीज हैं वो बहुत अच्छी पॉलिसी हैं, उनमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है और उसमें सुरक्षा भी काफी ज्यादा होती है.
3: Yeah, moving on to crude now. The global crude oil prices reversed their early gains today after Iran's foreign ministry said negotiations with the U.S. could be pursued based on national interest. Brent crude was trading 0.8% down at $87.35 per barrel in the intraday trade. The West Texas Intermediate crude was trading 1.5% down at $81.23 per barrel when reports last came in. Quick comment, Shishirji, on crude.
0: The problem we are facing at this moment is there is still a lot of uncertainty. Sometimes you are finding that the Iran is saying, okay, we are ready to negotiate, but only on the national interest. On the other side, when you hear US president, he has its own way of explaining the thing. So at this moment, today, you will see, I mean, as you just mentioned, that it was down by 8% and it was around 87 barrel.
3: 0.8%.
0: 0.8, yes. I'm sorry. 0.8% and it was $87 a barrel. For us, from the Indian perspective, it is coming down below 80. Then only there will be some relief. But anything above 80 is not good for rupee as well as for prices of petrol and diesel.
3: Right. And in the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 0.5% up at 1,42,390 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.2% up at 2,19,670 rupees per kilogram a short while ago.
1: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना आधे प्रतिशत से अधिक बढ़कर 1,41,754 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, और सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.3% की बढ़त के साथ 2,19,233 रुपए पर चल रही थी. शिशिर जी, संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी आपसे सोने और चांदी के भाव पर.
0: देखिए, एक दिलचस्प बात यह है कि लड़ाई के बीच में सोने चांदी के भाव में गिरावट आ रही है, ये कई बार लोगों को हैरान भी कर रहा है, लेकिन आप इसको सीधा जोड़िए

0: डॉलर से. जब जब डॉलर मजबूत होगा सोना उतना ही ज्यादा कमजोर होगा.
1: शशि जी, कार्यक्रम में आने और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारे तमाम कॉलर भी जुड़े हैं हमारे साथ में, उनके भी सवालों के आपने जवाब दिए, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद.
2: जी धन्यवाद. थैंक यू सो वेरी मच शशि जी. एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन. द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज डिक्लाइन, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 450 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,239. इंडियाज कोर इंडस्ट्रीज रजिस्टर ग्रोथ ऑफ 5% इन जून दिस ईयर एंड द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन एंड दैट्स ऑल वी हैव. In this edition of Market Mantra, I am Nishit Kumar along with my co-anchor Prachi Priya saying goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मन मीत में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से कार्यक्रम की, इस बेहतरीन से गीत के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र से पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित की गई और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री जावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। दोनों नेताओं ने व्यापार, समुद्री साझेदारी, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को बढ़ाने पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी के बारे में भी बात की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे।

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ।

कर्ज फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मोहब्बत से दूर रहने की हिदायतें तो सदियों से दी जाती रही हैं, मगर इश्क कब किसी नसीहत का मोहताज रहा है। दिल जब किसी की आहट को अपनी धड़कन बना ले, तब दुनिया की हर सलाह, हर दलील और हर रोक बस एक आवाज बनकर रह जाती है। आखिर इश्क के मामले में कौन किसी की सुनता है, या तो दिल ही फैसला करता है और वही अपना अंजाम भी लिखता है।

डिस्को डांसर फिल्म का गाना आपने सुना बप्पी लाहिड़ी की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत भी दिया बप्पी लाहिड़ी ने। वो लम्हे, वो बातें, वो एहसास जो कभी मेरी दुनिया थे। कुछ रिश्ते भले ही हो जाएं, मगर उनकी महक उम्र भर दिल में बसी रहती है। तेरे प्यार की वही खुशबू आज भी मेरी यादों में उतर आई है।

टूटे खिलौने फिल्म का गाना आपने सुना येसुदास की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार

वक्त हुआ है 12:35 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत

0: लगा
1: लगा
0: लगा के धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई
1: चांद की बिना तेरे सुने ही बात हो गई
0: ओ हो ओ हो ओ हो।

दो निगाहें मिलती हैं, दो दिल एक दूसरे की धड़कनों को सुन लेते हैं और बिना किसी इजहार के एक रिश्ता जन्म ले लेता है। यही तो प्रेम का सबसे खूबसूरत रूप है, जहां खामोशियां भी और बिना कहे सुने ही दिलों की बात हो जाती है।

बातों बातों में फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज में। योगेश ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। कभी कभी मोहब्बत अल्फाज की मोहताज नहीं होती।

दीदारे यार फिल्म से आपने ये गजल सुनी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। अमीर मीनाई ने इसे लिखा था और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आपने इस गजल में एक बात महसूस की, यहां आहिस्ता आहिस्ता इस शेर की जान है, यहां जल्दबाजी नहीं बल्कि उस पल को जीने की रवानी है जहां हर नजर हर मुस्कान और हर झलक अपने आप में एक मुकम्मल कहानी बन जाती है।

कभी कभी हिंदी फिल्मी गीत प्रेम की उस पहली हलचल को इतने खूबसूरत अंदाज में बयान कर जाते हैं कि शब्द सीधे दिल में उतर आते हैं। शायद यही वजह है कि ये गीत सुनते हुए महसूस होता है कि सच्चा प्यार जब दिल को छूता है तो उसकी खुशबू सिर्फ यादों में नहीं पूरे वजूद में उतर जाती है। दर्द फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसे नक्श ने लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

वक्त हुआ है 12:52 और ठीक 43 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर अरुआल्डो मार्टिनेज आचावास केस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को गहरा करने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, व्यवसाय, विकास, समुद्री, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित व्यापक चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी के बारे में भी बात की। भारत ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस दुखद घटना में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 की हालत गंभीर है। मंत्रालय ने बताया कि घटना के समय जहाज पर 5 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 17 सदस्य थे। मंत्रालय ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना, निर्दोष नागरिक चालक दल के सदस्यों पर हमला तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता में बाधा डालना निंदनीय है और इससे बचा जाना चाहिए। सरकार ने मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है।

सिक्किम के नामची जिले में एनएचपीसी द्वारा निर्माणाधीन एक सुरंग में कम से कम 25 लोग फंस गए हैं। उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं। नामची एसएसपी ने बताया कि एनडीआरएफ और स्थानीय एजेंसियां उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। हालांकि गैस रिसाव के कारण फंसे हुए लोगों को अभी तक निकाला नहीं जा सका है। सुरंग ढहने के बाद गैस रिसाव की सूचना मिली थी। यह घटना मिमरंग पुलिस चौकी के अंतर्गत हुई। और खेलों में पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 59 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

काला बाजार फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। इतने प्यारे गीतों का साथ हो तो नींद भला कैसे आए। हर नगमा किसी याद को छेड़ देता है, हर धुन किसी एहसास को जगा देती है। ऐसी रातों में आंखें भले ही जागती रहे मगर दिल सुरों की चादर ओढ़कर एक खूबसूरत सफर पर निकल पड़ता है।

और लता मंगेशकर की आवाज में पीएल संतोषी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया कल्याण जी वीर जी शाह ने। गीत सुनते सुनते जब नींद आंखों में उतरने लगे तो लगता है जैसे सुर लोरियां बन गए हों। हर धुन धीरे धीरे मन को सहलाती है और हर शब्द सपनों का रास्ता दिखाने लगता है।

मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है, क्या खूबसूरत एहसास है इस पंक्ति में। कभी किसी की याद, कभी किसी का ख्याल, तो कभी कोई प्यारा सा नगमा। कुछ तो है जो रात भर आंखों को जगाए रखता है। नींद आती भी है तो ठहरती नहीं, जैसे किसी ने चुपके से उसे अपनी हथेलियों में समेट लिया हो। पूजा के फूल फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। हर रात चांद तो अपने वक्त पर लौट आता है, मगर जिसका इंतजार हो उसके कदमों की आहट नहीं आती। फिर भी दिल उम्मीद का दिया बुझने नहीं देता, शायद अगली चांदनी रात के साथ वो भी लौट आए, जिसकी कभी हर उजाले को जिसने कभी हर उजाले को अधूरा बना दिया था।

पतिता फिल्म का गाना आपने सुना, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:35 और ठीक 1 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आपने सुना शबाब फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। इश्क की दुनिया में आशिक अपने महबूब से जुड़ी हर राह, हर गली, हर याद को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज मान लेता है। यही वजह है कि ऐसे गीत सुनते हुए हमें एहसास होता है कि मोहब्बत का असली रंग पाने में नहीं, बल्कि उसे पूरे दिल से महसूस करने में है।

कभी कभी रिश्तों में कोई गुनहगार नहीं होता, बस हालात ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां दोनों तरफ दर्द होता है, दोनों तरफ इंतजार होता है और दोनों तरफ अनकही बातें रह जाती हैं। ऐसे गीत हमें सिखाते हैं कि हर बिछड़ने वाली कहानी में एक ही दिल नहीं रोता, कई बार दोनों ही अपने अपने हिस्से का गम चुपचाप जी रहे होते हैं। आपने सुना कुंदन फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया गुलाम मोहम्मद ने।

रेलवे प्लेटफॉर्म फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

वक्त हुआ है 1:47 और ठीक 24 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

बेगाना फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया सपन जगमोहन ने। यादों की भी अपनी एक अजीब फितरत होती है। हम समझते हैं कि वक्त ने हमें उन्हें कहीं पीछे छोड़ दिया है, लेकिन फिर किसी शाम की खामोशी, किसी हवा के झोंके या किसी पुराने नगमे की धुन उन्हें फिर से हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है।

जब से तुम्हें देखा है इस फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया दत्ताराम ने।

वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 17 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य कुमार के साथ। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्किस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को गहरा करने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, व्यवसाय, विकास, समुद्री, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर और कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत में के आधिकारिक वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा को अधिक सुविधाजनक और यात्री अनुकूल बनाने के लिए डिजिटल लोकल पास और मार्ग मित्र सहायता केंद्र की शुरुआत के साथ राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप पर डिजिटल सेवाओं को आगे बढ़ाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि नए डिजिटल लोकल पास के पात्र यात्री टोल प्लाजा जाएं बिना राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मासिक टोल पास खरीद सकते हैं। प्राधिकरण ने मार्ग मित्र सहायता केंद्र भी शुरू किया है। यह राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप में एकीकृत डिजिटल सहायता मंच है। सिक्किम के नामची जिले में NHPC द्वारा निर्माणाधीन सुरंग में कम से कम 25 लोग फंस गए हैं, उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं। और खेलों में पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सहवाग और उन्नति हुडा भी

वक्त हुआ है 2:11 और ठीक 2 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

वो सात दिन फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और शबीर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कितनी सहज और गहरी बात है ये, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। प्रेम कोई फैसला नहीं, एक एहसास है। ये ना तो किसी योजना का हिस्सा हो सकता है, ना किसी तर्क का। कब कोई मुस्कान दिल में उतर जाए, कब किसकी आवाज अपनी लगने लगे, और कब किसी की मौजूदगी जिंदगी का सुकून बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता।

जुर्म फिल्म का गाना आपने सुना कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में। देव कोहली ने इसे लिखा और संगीत दिया आनंद राज आनंद ने। जिंदगी हर दिन एक सी नहीं होती, कभी खुशियों की धूप होती है तो कभी परेशानियों की छांव। ऐसे में सबसे बड़ी ताकत किसी का साथ होता है, एक ऐसा साथ जो हालात बदलने पर भी न बदले।

लहू के दो रंग फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। फारूक कैसर ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आशा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। जिंदगी हमें यही सिखाती है कि कुछ चीजें कितनी भी संभाल कर क्यों ना रखी जाएं, वक्त, हालात या लापरवाही की एक चोट उन्हें बिखेर सकती है, लेकिन संगीत की खासियत देखिए, वो टूटे हुए दिल की आवाज भी बन जाता है और बिखरे हुए एहसासों को फिर से समेटने का हौसला भी देता है।

कुछ एहसास उम्र के साथ फीके नहीं पड़ते। तेरे पहले प्यार की खुशबू आज भी मेरी सांसों को महका रही है और हर धड़कन जैसे उसी अनकहे मासूम से एहसास का गीत गुनगुना रही है। फिल्म बदलते रिश्ते का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

एक जान है हम। इस फिल्म का गाना आपने सुना, आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया अनु मलिक ने।

वक्त हुआ है 2:54 और ठीक 50 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही सुनेंगे कार्यक्रम आप पंकज गोस्वामी के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही रद्द स्थगित कर दी गई। ब्यौरा

0: हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के हिंसा में बदलने से 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी कल घायल हो गए। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आक्रामक और हिंसक बर्ताव किया। वे चेतावनी तथा कानूनी निर्देशों के बावजूद आगे बढ़े और रोक के आदेशों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले की SI जांच के बारे में जानकारी देगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में अपने पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा अवास्केस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को गहरा करने पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, व्यवसाय, विकास, समुद्री, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित व्यापक चर्चा की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। ओमान के मस्कट में कल FIH यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप 2026 में भारतीय जूनियर पुरुष और महिला टीमों ने अपने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। भारतीय टीमें पुरुष और महिला वर्ग के एलीट पूल में हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS रघु। Monsoon session of Parliament began on a stormy note yesterday. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues including the neat paper leak case. Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to six

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं पंकज हूं आपके साथ और रात के 3:10 हो चुके हैं और अब शुरू होता है कार्यक्रम हमराही और अब मैं आपसे मिलता हूं इन दो गानों के बाद और अजनबी मूवी के इस गाने से शुरुआत करते हैं और आप इन गानों का मजा लीजिए। दो गानों के बाद आपसे मुलाकात होती है।

कर रहा है और कोई जो है कुछ और काम कर रहा होगा, जैसे कि मैं यहाँ स्टूडियो में बैठ के आपके साथ, आपको जगाए रखने के लिए आपके साथ बातें कर रहा हूँ। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मैं पंकज हूँ आपके साथ, और पुराने डुएट्स गानों का कलेक्शन लेकर हमराही शो में मैं आपके साथ रहूँगा इस पूरे घंटे। और देखिए, एक चीज़ और भी मुझे बतानी है कि प्यार जो है ना, वो किसी से भी हो वो खुशी ही देता है, तो इन गानों से मोहब्बत करने वालों के लिए सुकून की रात है। मैं इन दो गानों के बाद आपसे दोबारा मिलता हूं। अभी के लिए दहलीज मूवी से महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में ये गाना।

समय के साथ पुरानी चीजों का स्वाद जो है वो कम हो जाता है, लेकिन इन पुराने गानों का टेस्ट तो हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आराधना मूवी से लता जी और किशोरदा की वॉइस में ये गाना था, एस टी बर्मन का म्यूजिक और आनंद बख्शी के बोल थे। आधी रात की इस खामोशी में जहां आधी दिल्ली सो रही है, वहीं कई लोग जो है वो अलग अलग कारणों से जाग कर कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। कोई अपनी जॉब

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात, इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

एक मैं और एक तू मूवी से ये वाला गाना था। और देखिए, अगर बेकार की बातों में हम उलझे रहेंगे ना तो जिएंगे कब? जिंदगी बीत रही है और अपने पसंदीदा इंसान के साथ जो है वो खुशनुमा लम्हे बनाइए और उनका मजा लीजिए, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आई नो ये एक फिल्म का मैंने डायलॉग मार दिया, लेकिन बातों से ये जिंदगी तो देखिए हर दिन बीत ही रही है। ये जो टाइम अभी जो हम जी रहे हैं, ये टाइम जो है सुबह के 6 बजे तक नहीं होगा, सुबह कुछ और चीज़ होंगी। तो और उसके अलावा एक और चीज़ मुझे ये बतानी है कि जब आपके साथ आपका पसंदीदा इंसान हुआ तो सच मानिए ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। मैं हूँ पंकज, आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। प्यार बांटिए, क्योंकि इससे ज़्यादा सुंदर कुछ नहीं है।

एंड मूवी के इस गाने में विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी की रोमांटिक केमिस्ट्री गजब की थी। और इस गाने में पता है एक लाइन आती है कि मैंने जिसे चाहा वही यार मिला रहे। आपको पता है कि इंसान ना तभी खुश रह पाता है जब जिंदगी जीने के लिए उसके पास उसकी ही पसंद का एक शख्स उसके साथ हो, और उसे पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश तो करनी ही चाहिए ताकि आगे जाके आपको इस बात का गिल्ट ना हो कि हमने कोशिश नहीं की। एटलीस्ट ट्राई करेंगे, मिल गए सो ठीक है, बाकी तो किस्मत की बात है ही। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर हमराही शो में मैं पंकज हूँ आपके साथ। समझौते वाले रिश्ते जो हैं उनको जोड़ने से बेहतर है कि पसंद के शख्स के साथ जिंदगी का हिस्सा बन जाना।

ये आधा साल बीत चुका है और समय तो मानो एकदम भाग रहा हो। वैसे हमराई शो का टाइम भी जो है वो पूरा होने वाला है और अब अगले घंटे नेक्स्ट शो अरुणिमा में मैं पंकज आपसे दोबारा मिलूंगा। तो इसी तरह सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। और अभी कुछ मिनट जो बचे हैं उसके लिए आप इस शो का ये गाना सुनिए और बस ऐसे ही इंजॉय करते रहिए।

0: संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्य

0: सभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में हिंसा में बदलने से 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आक्रामक और हिंसक बर्ताव किया। वे चेतावनी तथा कानूनी निर्देशों के बावजूद आगे बढ़े और रोक के आदेशों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने बताया कि घायल पुलिसकर्मियों की मेडिको लीगल जांच चल रही है। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम तथा सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परिवर्तन योजना को राजधानी में लागू करने और उसका समर्थन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार यह योजना पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों तथा बसों को हटाकर उनकी जगह BS6 कड़े प्रदूषण मानकों वाले या इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, जिससे वाहन से होने वाले वायु प्रदूषण और उत्सर्जन कम किया जा सके। और खेलों में ओमान के मस्कट में कल FIH यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप 2026 में भारतीय जूनियर पुरुष और महिला टीमों ने अपने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। भारतीय टीमें पुरुष और महिला वर्ग के एलीट पूल में हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by R.S. Raghu. Monsoon session of Parliament began on a stormy note yesterday. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues including the neat paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to 6 former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Emir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and the Samajwadi Party over the neat issue. Union Minister Jagat Prakash Nadda met the representatives of protesters

0: आशा जी की आवाज में गाए हुए गाने। अगर तुम ना होते मूवी का गाना आपने सुना था, गुलशन बावरा के बोल और आरडी बर्मन का म्यूजिक था। आज 21 जुलाई मंगलवार है और मैं पंकज अरुणिमा शो में आपके साथ हूँ। देखिए, समय को भी ना थोड़ा सा समय देना चाहिए ताकि वो हमारे लिए मंगल परिस्थितियां बना सके, यानी धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। तो जिंदगी को जी भर कर जीते रहिए और जो होना है वो तो होकर रहेगा ही। तो आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। खैर, अभी इन दो गानों के बाद मैं मिलता हूँ आपसे, तो ऐसे ही इन गानों का मजा लेते रहिए और फिर से आपसे मिलता हूँ।
1: धीरे धीरे

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दिल्ली में से मैं बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, अभी मैंने स्टूडियो की खिड़की से देखा, सच में बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। वाणी जयराम की आवाज़ में गुड्डी फिल्म से ये गाना था, गुलजार के बोल और बसंत देसाई का संगीत था। जब जिंदगी में अपने दम पर लाख जतन के बाद भी परिस्थितियां सही ना होना, और तब हमें ऐसा करना चाहिए, यानी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आपको पता है प्रार्थना में जो है वो बड़ा बल होता है जो असंभव को भी संभव कर देती है। बस प्रार्थना जो है वो सच्चे मन और अच्छी नीयत से होनी चाहिए, जिसमें किसी का भी बुरा ना हो। यकीन मानिए प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और पूरी भी की जाती हैं, इसलिए हर पल प्रार्थना करते रहिए, कुछ अपने लिए कुछ सबके लिए।

इस गाने की एक एक बात बहुत सच है। और पता है मेरे बड़ों ने हमेशा मुझे ये समझाया है कि कभी भी किसी भी चीज़ का ना अहंकार मत करो, क्योंकि जो अच्छा आपके पास है उसे हमें ज़रूरतमंदों को बांटनी चाहिए। और ये बात सच भी है कि अहंकार जो है वो मनुष्य के पतन का कारण बनता है। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर अरुणिमा शो में मैं पंकज हूँ आपके साथ। अहंकार ने न जाने कितने लोगों को नष्ट कर दिया, इसकी ढेरों कथा कहानियाँ जो हैं वो हमें असल जीवन में भी देखने सुनने को मिल ही जाती हैं। इसलिए विनम्र और प्रेम से भरकर सबको सिर्फ प्यार बांटिए, क्योंकि प्यार से ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं।

किशोरदा की आवाज में मशाल फिल्म से आपने ये वाला गाना सुना। और अब जो है अगले घंटे मैं पंकज भोर सुहानी शो में आपसे, यानी नेक्स्ट शो है ये, उसमें आपसे मिलूंगा, क्योंकि और बड़ी सुबह होने वाली है। वैसे तो अभी मैंने स्टूडियो की खिड़की से बाहर जाकर देखा तो अभी दिल्ली में जो है बूंदाबांदी हो रही है, यानी बाहर का नज़ारा तो बहुत ही अच्छा है और सुबह का नज़ारा तो होता ही हमेशा बहुत ही प्यारा, मन को खुशी देने वाला होता है। तो थोड़ी देर में सुबह 5 बजे से आप हिंदी और इंग्लिश में न्यूज़ सुनेंगे और फिर 5:10 पर मैं दोबारा आपसे मिलूंगा। अभी ये वाला गाना सुनिए येसुदास की आवाज़ में, इस टाइम के लिए एकदम परफेक्ट गाना है फ्रॉम द मूवी हैसियत।

0: सत्र की शुरुआत हंगामे में से हुई। विभिन्न मुद्दों पर सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बीच कल दो दिनों के सदन की कार्यवाही के कई बार बाधित हुई। हंगामे जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित कर दी गई और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र,

0: दोनों के सक्रिय रहने पे वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आक्रमण और हिंसक वार्ताओं किया, वे चेतावनी तथा कानूनी निर्देश के बावजूद आगे बढ़े और रोक के आदेशों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वाले में पुलिस कर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी के घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने में पुलिस के सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन के सहयोग करने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में जम्मू संभाग में 4 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के क्षेत्र में भी ऐसे अगले 2 दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 5:10 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है कार्यक्रम भोर सुहानी। मैं पंकज आपके साथ इस शो में रहूंगा। अभी के लिए शुरुआत करते हैं दो गानों से, रामलखन फिल्म से ये गाना आप सुनिए और उसके बाद दो गानों के बाद आपसे मिलता हूँ।